0: ये विविध भारती का मुंबई केंद्र है। सुबह के 6 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं चंद्रशेखर शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितता के बीच भारत की सकल घरेलू उत्पाद दर में 7.8% की तिमाही वृद्धि उसकी आर्थिक मजबूती को दिखाती है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स SRCC के शताब्दी समारोह में कहा कि दुनिया भारत को सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बनते हुए देख रही है।
2: दुनिया भारत को फ्रजाइल 5 बता रही थी, आज दुनिया भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनते हुए देख रही है। 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है और इसी बीच जापानीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की रेटिंग अपग्रेड कर दी है।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने SRCC के संस्थापक श्री राम को श्रद्धांजलि दी और उनकी दूरदर्शी सोच को नमन किया। इससे पहले शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डॉ दिनेश शर्मा को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उपराज्यपाल नियुक्त किया है। डॉ शर्मा अवकाश प्राप्त एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी की जगह लेंगे। डॉक्टर शर्मा अभी उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के संसद सदस्य हैं और राज्य के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह 4 दिन की यात्रा पर कल सऊदी अरब की राजधानी रियाद पहुंचे। श्री सिंह की ये सऊदी अरब की पहली यात्रा है। वे सऊदी अरब के मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्री, विदेश राज्य मंत्री और जलवायु पर्यावरण, जल तथा कृषि उप मंत्री से मुलाकात करेंगे। श्री सिंह सऊदी अरब में भारतीय मूल के लोगों, भारतीय व्यापार प्रमुखों, उद्यमियों तथा पेशेवरों से भी मिलेंगे। सऊदी में कार्यरत भारतीय कामगारों से भी वे बातचीत करेंगे। लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री जेवियर बेटेल भारत के 3 दिन के दौरे पर कल भारत आएंगे। इस दौरान वे दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। श्री बेटेल चेन्नई भी जाएंगे और IIT मद्रास के कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान परीक्षा बोर्ड NBEMS ने राजस्थान की राजधानी जयपुर में सीतापुरा स्थित आयन डिजिटल जोन परीक्षा केंद्र पर NEET PG की पुनर्परीक्षा सफलतापूर्वक आयोजित की है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार जयपुर के 5 केंद्रों पर परीक्षा सुचारू तरीके से संपन्न हुई। पिछले महीने की 30 तारीख को जयपुर के परीक्षा केंद्रों में बिजली की समस्या के कारण 2,445 अभ्यर्थियों की परीक्षा पूरी नहीं हो सकी थी। छत्तीसगढ़ में जगदलपुर के राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA की विशेष अदालत ने झीरम घाटी में हुए माओवादी हमले के मामले में सभी 10 आरोपियों को दोषी ठहराया है। इस मामले में कुल 11 आरोपी थे, जिनमें से एक की मृत्यु हो गई थी। अदालत ने 2 महिलाओं सहित सभी 10 आरोपियों को 29 लोगों की हत्या और 15 को हत्या के प्रयास का दोषी पाया। सजा पर फैसला 16 सितंबर को होगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक मंडल की सिफारिश के बाद 8 उच्च न्यायालयों में नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कर दी गई है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में इसकी जानकारी दी। महिला क्रिकेट में संयुक्त अरब अमीरात के दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए 2020 एशिया कप के ग्रुप ए मैच में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। पाकिस्तान ने भारत के सामने जीत के लिए 56 रन का लक्ष्य रखा था। भारत ने 8 ओवर 4 गेंद में 3 विकेट खोकर 57 रन बनाए और आसानी से लक्ष्य हासिल कर लिया। बाएं हाथ की स्पिनर श्री चंडी ने 7 रन देकर 3 विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स फाइनल में पहुंच गई है। भारतीय जोड़ी ने सेमीफाइनल मुकाबले में मलेशिया के नूर मोहम्मद अजरीन अयूब और टेन वी क्योंग को हराया। मौसम विभाग ने कल तक पूर्वोत्तर राज्यों, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, दिल्ली और मध्य प्रदेश में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी कल तक बिजली चमकने और तेज हवाओं के चलने की संभावना व्यक्त की गई है। पूर्वोत्तर राज्यों छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड में ऐसी स्थिति बने रहने का अनुमान है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: ये है विविध भारती।

चिंतन महर्षि वे महर्षि वेदव्यास का कथन है, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् एव वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। अर्थ है, मीठे या प्रिय वचन बोलने से सभी जीव जंतु प्रसन्न होते हैं, संतुष्ट होते हैं, इसलिए मनुष्य को सदैव मधुर वाणी ही बोलनी चाहिए। बोलने में क्या कंजूसी या बोलने में क्या दरिद्रता, क्या किफायत करना। ये था आज का चिंतन। अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। लीजिए सुनिए आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। अब से थोड़ी देर बाद यानी 6:35 पर सुनिए श्री रामचरित मानस गान भाग 303। सुबह 6:45 और शाम 6:45 पर संगीत सरिता कार्यक्रम सुनेगा श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना भाग 6। कलाकार हैं गायिका डॉक्टर शकुंतला भरने, प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। सुबह 7:00 भूले बिसरे गीत 7:30 पर हम हैं राही प्यार के। 8:15 पर सुनिए त्रिवेणी। 8:30 पर चित्रलोक कार्यक्रम, 9:30 पर आज के फनकार। आज का ये कार्यक्रम केंद्रित होगा अभिनेता राकेश रोशन पर। सुनिएगा सुबह 9:30 और रात 9:30 पर। सुबह 10:00 पिटारा के अंतर्गत बॉम्बे टॉकीज, इसके अंतर्गत सुनेगा गायिका दीपाली सहाय से यूनुस खान की बातचीत का दूसरा भाग, प्रस्तुति तेजश्री कामले की। 11:00 विविधा के अंतर्गत केंद्रित होगा ये कार्यक्रम मुकरी आदेश श्रीवास्तव और भूपेन हजारिका पर। 12:00 यादों की महफिल, 1:00 सुरीला सफर, 2:00 त्रिवेणी। पर 2:30 पर सदाबहार नगमा।

प्रोग्राम 3 बजे मनचाहे गीत, 3:30 पर नाट्य तरंग। में सुनिए आंख की किरकिरी भाग दो, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के बांग्ला उपन्यास चोखेर बाली का रेडियो नाट्य रूपांतरण। रूपांतरकार और निर्देशक हैं नंदलाल शर्मा। शाम 4 बजे पिटारा में उजाले उनकी यादों के, नाट्य निर्देशक शिक्षाविद और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय NST नई दिल्ली के पूर्व निदेशक पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्र से यूनुस खान की बातचीत का 4th भाग, प्रस्तुति तेजश्री कांबले की। शाम 5 बजे छाया गीत 5:30 पर तराने नए पुराने, 6:35 पर सुनिए संध्या रंजन। शाम 6:45 पर संगीत सरिता कार्यक्रम। फौजी साथियों का कार्यक्रम विशेष जयमाला होगा शाम 7 बजे से। महावीर चक्र से सम्मानित नायक दिगेंद्र कुमार की शौर्य गाथा सुनिएगा सैनिकों की शौर्य गाथा के अंतर्गत, प्रस्तुत करता है तेजश्री कांबले। 7:45 पर साज और आवाज। हवा महल में रात 8 बजे सुनिए प्रहसन मलाई वाला दही, मूल कन्नड़ लेखक M. गोविंद, निर्देशन पुरुषोत्तम दारव्हेकर का। 8:15 पर चित्रलोक, 9 बजे आपके लिए, 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित होगा अभिनेता राकेश रोशन पर। रात 10 बजे छाया गीत, 10:30 पर ढलती जाए रात, 11 बजे सुने विविधा। आप सुन रहे थे आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण झरोखा के अंतर्गत। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान भाग 303।

लंका में श्री राम के वानरदीज सेनानियों ने उत्पात मचा दिया है। मंदोदरी की अपने पति रावण से प्रार्थना है कि वो विषय भोग छोड़कर उन प्रभु की शरण में चला जाए, कौशलाधीश की दया उसे प्राप्त हो जाएगी।

0: आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान, आज आपने सुना भाग 303।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।

0: श्रोताओं नमस्कार। इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे, इनसे बातचीत की जयंत पात्रीकर ने। आइए अब सुनते हैं इस श्रृंखला की छठवीं कड़ी।
1: नमस्कार श्रोताओं, स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना इस श्रृंखला में आज की कड़ी में डॉक्टर शकुंतला भरणे जी से हम पूछते हैं कि किराना घराने की आज किस विशेषता की बात होने वाली है, ये जो गायकी है इसका निरालापन किस अंदाज में आप आज बताने वाली हैं?
2: इस किराना घराने की जो खासियत है
1: जी,
2: ये सब उनके जो गुण है इंटरकनेक्टेड है। आज हम सोचेंगे मिंड का सुंदर प्रयोग इस घराने में कैसे
1: मिंड का प्रयोग। वाह वाह।
2: मिंड आप जानते हैं, एक स्वर से दूसरे पर स्वर पर जाते हुए उसका जो बीच में विदाउट एनी गैप

0: ऐसा जो
1: एक सुर से दूसरे सुर पर जाते हुए बिना रुके जो ये निरंतरता बनी रहती
0: है। निरंतरता उसकी जो मेलोडी जो है
1: उसे मिंड कहते हैं।
0: वाह, इस घराने की गायकी में एक स्वर से दूसरे स्वर तक बिना टूटे अत्यंत सहज और मधुर ढंग से पहुंचने की एक शैली को विशेष महत्व दिया जाता है।

0: लगता है। स्वरों का कोमल और प्रवाहपूर्ण मेल ये भी इसकी खासियत है। मीन के माध्यम से स्वर आपस में इस प्रकार जुड़ते हैं कि गायन में निरंतरता और मधुरता बनी रहती है। यही किराना घराने की गायकी को अत्यंत और आकर्षक बनाता है। राग का भाव अधिक प्रभावी बनता है
1: जी।
0: मीन के प्रयोग से राग के सूक्ष्म भाव और स्वर सौंदर्य स्वाभाविक रूप से प्रकट होते हैं
1: जी।
0: श्रुति का सुंदर प्रदर्शन भी हम कर सकते हैं मीन के द्वारा। स्वरों के बीच जो स्थित सूक्ष्म श्रुतियों का भी प्रभावी प्रयोग हमारे घराने में किया जाता है
1: जी जी।
0: इसमें गायकी में नजाकतता और एक परिष्कार
1: अच्छा
0: आता है। विलंबित लय में मीन का विशेष प्रभाव जो होता है कि किराना घराने में विलंबित लय होने के कारण कलाकार को मिंड का विस्तार पूर्वक प्रयोग करने का अवसर मिलता है, इसलिए वो बहुत ही नजाकतदार लगती है। इससे प्रत्येक स्वर का सौंदर्य पूर्ण रूप से उभर कर सामने आता आ जाता है
1: जी।
0: सुंदर मिंड प्रस्तुत करने के लिए स्वर पर गहरा एकदम डीप ऐसा नियंत्रण, श्वास का संतुलन और नियमित रियाज तो हमें यहाँ आवश्यक है। इसलिए मींड इस घराने की उच्च कोटि की स्वर साधना का प्रमाण मानी जाती है
1: जी।
0: मेरे गुरुजी
1: जी
0: विदुषी डॉक्टर गंगूबाई हनगल मींड गायकी तो उनकी खासियत थी।
1: अच्छा,
0: जिन रागों में मींड है वही राग वो गाती थी ज्यादा। शुद्ध कल्याण, बागेश्री, दरबारी कानड़ा,
1: अच्छा
0: रागेश्री, ऐसे राग आज हम उन्हीं का गाया हुआ थोड़ा सा बागेश्री सुनेंगे। उनकी आवाज पहले बहुत पतली थी
1: जी।
0: और वो सब गाती थी, भावगीत गाती थी, गजल गाती थी, ठुमरी गाती थी।
1: अच्छा,
0: उसके बाद टॉन्सिल्स हो गए
1: जी जी।
0: और टॉन्सिल्स के वजह से उसका जो ट्रीटमेंट हुआ वो बोल नहीं पाती थी।
1: ओ।
0: बाद में उनकी जो आवाज हो गई वो एकदम थोड़ी पुरुषी
1: अच्छा
0: आवाज हो गई, वजन खरज अच्छा, वाली आवाज अच्छा। और वो गाना जो उनका हो गया वो और भी अच्छा हो गया अच्छा। लोगों को पसंद हुआ और क्लासिकल ही उनका ज्यादा लोगों को पसंद हो गया। और उसने सोचा कि अभी तो लाइट गाने में मतलब नहीं है
1: अच्छा।
0: इसीलिए वो क्लासिकल ही गाती थी।

0: बागेश्वरी राग में बहुत सारे गाने हैं
1: जी,
0: बहुत ही प्यारा राग है, लेकिन गंगूबाई जी बागेश्वरी में पंचम नहीं लगाती थी, बाकी सब लोग पंचम लगाते, और पंचम का जो सुरीलापन और ये जो नजाकत है, ये पंचम बिना लगाए भी उनकी जो गायकी है तो बहुत ही अच्छा दिखता था उन्हें।
1: तो ये किस तरह का प्रयोग है, एक्सपेरिमेंट है कि आरो आरो के जो स्वर है किसी राग के चलन में, उसमें से कोई एक स्वर न लगाए बिना भी उसको राग का जो है प्रस्तुतिकरण हो सकता है?
0: पंचम का महत्व बागेश्वरी में नहीं है वैसा भी।
1: अच्छा,
0: पंचम का महत्व म प ध म ग स रे सा ऐसा होता है
1: जी,
0: और ये राग का सौंदर्य बढ़ाता है इसीलिए लेते हैं, लेकिन पंचम का इतना इम्पोर्टेंस मध्यम लगा के ही वो बागेश्वरी ज्यादा गाते हैं।
1: अच्छा,
0: और वो बोलती थी पंचम का कुछ काम ही नहीं, इसीलिए मैं पंचम नहीं लेती और ये जगह नहीं लेती थी वो। ऐसा है
1: तो क्यों ना इस राग पर आधारित एक गीत सुन लिया जाए।
0: बहुत ही गाने है, लेकिन मेरा बहुत ही प्यारा गाना है वो अनारकली फिल्म का, जाग दर्द इश्क जाग।
1: बहुत सुंदर गीत है, आइए।

स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना। अभी आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की छठवीं कड़ी। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे, इनसे बातचीत की जयंत पात्रीकर ने, तबला संगत रोहिदास परब, हारमोनियम पर संगत दी ऋषित होनावरकर ने। श्रोताओं, इस श्रृंखला के लिए तकनीकी सहयोगी भावना सिंदल, संपादन सहयोगी झरना सोलंकी और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम सुनेगा थोड़ी ही देर में।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

प्रस्तुत है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी सुनने वालों को सविता सिंह का नमस्कार।

जो आओ तो प्यार आ जाए, जिंदगी में बहार आ जाए। सखी रॉबिन फिल्म का ये गाना आप सुन रहे थे मन्ना डे, सुमन कल्याणपुर की आवाजों में। रचना योगेश की थी, संगीतकार थे रॉबिन बैनर्जी। अब प्रस्तुत है जबक फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर मुकेश की आवाजों में। प्रेम धवन गीतकार हैं, संगीतकार हैं चित्रगुप्त।

0: लता मंगेशकर मुकेश की आवाजों में जबक फिल्म की ये रचना भी आपने सुनी। प्रेम धवन गीतकार थे, संगीतकार चित्रगुप्त थे। और इस गाने के पहले सखी रॉबिन फिल्म का गीत आपने सुना था, मन्ना डे सुमन कल्याणपुर की आवाजी थी। योगेश ने उस गीत को लिखा था और रॉबिन बैनर्जी ने धुन बनाई थी।
1: इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। 7:10 होने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। लीजिए अब सुनिए कांच की गुड़िया फिल्म का ये गाना, मुकेश और आशा भोसले के आवाजों में, शब्दकार हैं शैलेंद्र।

की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

ए मेरे दिल कहीं और चल। तलत महमूद की आवाज में आपने सुना शैलेंद्र का लिखा गीत दाग फिल्म से। संगीत निर्देशन शंकर जय किशन का था। इसी गीत के साथ ही आज का भूले बिसरे गीत कार्यक्रम यह

0: आज पार्श्व गायिका सुषमा श्रेष्ठ का जन्मदिन, जिन्हें बाद में पूर्णिमा के नाम से जाना गया। प्रसिद्ध पार्श्व गायिका सुषमा श्रेष्ठ ने बाल कलाकार से लेकर 90 के दशक के शीर्ष बॉलीवुड गायिका तक का सफर तय किया। उन्होंने सिर्फ 11 वर्ष की उम्र में फिल्म अंदाज के इस गाने को गाने में आवाज दी। अंदाज फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे। आवाजें मोहम्मद रफी, सुमन कल्याणपुर और सुषमा श्रेष्ठ की थीं। हसरत जयपुरी के बोल आपने सुने, शंकर जयकिशन का संगीत आपने अभी सुना।
1: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
2: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
1: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने। उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
2: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
1: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा, तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
2: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
1: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
2: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
4: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
3: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
5: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
3: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
5: तेरा जवाब नहीं,
3: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
5: प्यार का राग सुनो रे।
3: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
5: सदा रही है, सदा रहेगी।
3: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

0: मोहम्मद रफ़ी और सुषमा श्रेष्ठ के आवाज़ों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। फिल्म का नाम था हम किसी से कम नहीं। मजरूह सुल्तानपुरी गीतकार थे और संगीतकार थे आर डी वर्मन।
1: संगीत सरिता कार्यक्रम में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना।

0: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
1: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा।

कहते हैं। अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना सुबह और शाम 6:45 पर सिर्फ विविध भारती पर।

रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। हमें राही प्यार के इस कार्यक्रम में छोटा सा अंतराल लेते हैं।

नौशाद के संगीत निर्देशन में आपने सुना मोहम्मद रफी और आशा भोसले का गाया गीत। शकील बदायूनी के बोल थे, फिल्म का नाम राम और श्याम था। लीजिए अब सुनिए आंखों आंखों में ये गाना, किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में। हसरत जयपुरी के बोल हैं, शंकर जयकिशन की तर्ज है।

कल्याण जी आनंद जी के संगीत निर्देशन में अभी आपने सुना परिवार फिल्म का गाना। लता मंगेशकर और किशोर कुमार के गाए इस गीत को लिखा था गुलशन बाबरा ने। इसी गीत के साथ ही आज का हम है राही प्यार के कार्यक्रम समाप्त करने की सविता सिंह को इजाजत दीजिए। नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। 8 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील। भारतीय युवा परामर्श, लेखा, वित्त और कानून से जुड़ी ऐसी संस्थाओं का निर्माण करें जो वैश्विक स्तर के हों। भाजपा के राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया। एनआईए की विशेष अदालत ने 2013 में छत्तीसगढ़ के झीरम घाटी हत्याकांड में 10 माओवादियों को दोषी ठहराया। नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को पहले आई ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान 500 से अधिक संस्थागत निवेशक, वित्त मंत्री और उद्योगपति शामिल होंगे। भारत ने दुबई में महिला T20 क्रिकेट एशिया कप मैच में पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से बड़े सपने देखने तथा लेखा, वित्त, कानून और परामर्श से जुड़ी ऐसी संस्थाओं के निर्माण की अपील की है जो वैश्विक स्तर के हों। कल दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में उन्होंने कहा कि आज भारतीय मूल के कई लोग दुनिया की शीर्ष कंपनियों का नेतृत्व कर रहे हैं।
2: भारत की ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म्स क्यों नहीं हो सकती? हमारी अकाउंटिंग फर्म, हमारी लीगल फर्म, हमारी फाइनेंशियल फर्म, ये सब ग्लोबल लीडर्स क्यों नहीं बन सकती? हम गर्व से कहते हैं कि आज भारतीय दुनिया की टॉप कंपनीज को लीड कर रहे हैं। अगर भारतीय दुनिया

0: की टॉप कंपनियों को लीड कर रहे हैं तो भारतीयों की बनाई कंपनियां दुनिया को क्यों लीड न करें।
1: श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितता के बीच भी भारत की तिमाही वृद्धि दर 7.8% रही है, जो उसकी आर्थिक क्षमता को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि भारत ने नीतिगत मामलों में गतिरोध से गतिशीलता तक का लंबा सफर तय किया है और दुनिया देख रही है कि भारत सबसे तेजी से आर्थिक प्रगति कर रहा है। प्रधानमंत्री ने बताया कि अप्रैल से जून के बीच बिजली उत्पादन में 9% की वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि इस दौरान वाहनों की बिक्री 20% से अधिक बढ़ी है। उन्होंने बताया कि स्मार्टफोन का निर्यात अब 25 लाख करोड़ रुपए से अधिक का है और घरेलू रक्षा उत्पादन लगभग 2 लाख करोड़ रुपए के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है। श्री मोदी ने कहा कि 140 करोड़ भारतीय मिलकर देश को विकसित और आत्मनिर्भर बनाएंगे।
0: मुझे विश्वास है हम 140 करोड़ भारतीय मिलकर अपने देश को विकसित भी बनाएंगे, आत्मनिर्भर भी बनाएंगे। आने वाले समय में भारत मैन्युफैक्चरिंग का हब होगा। आने वाले समय में रिसर्च एंड इनोवेशन का हब हिंदुस्तान होगा। भारत एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट की सुपर पावर होगा।
1: गृह मंत्री अमित शाह आज गोवा में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री शाह आज गृह मंत्रालय की बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे।
2: अमित शाह का आज का दौरा कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों से जुड़ा है। गृह मंत्रालय की बैठक में गोवा से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। बाद में बीजेपी के नए राज्य कार्यालय अटल भवन का उद्घाटन किया जाएगा। दिन के अंत में पार्टी की राज्य कोर कमेटी की बैठक भी होगी। कल अमित शाह पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल होंगे और गोवा पुलिस को प्रेसिडेंट पुलिस कलर प्रदान करेंगे। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
1: डॉक्टर दिनेश शर्मा को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। वे अवकाश प्राप्त एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी का स्थान लेंगे। डॉक्टर शर्मा फिलहाल उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद हैं। वे राज्य के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में डॉक्टर शर्मा ने कहा कि वे अपनी नई जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी के साथ निभाएंगे।
3: जो निर्देश होगा जो भी प्रधानमंत्री जी का वो सबको स्वीकार है और हमेशा मैं एक कार्यकर्ता की तरह रहा हूँ, तो जो भी हमारे पार्टी का नेतृत्व आदेश देता है वो सिद्ध करना हमारा काम है। जो प्रधानमंत्री जी का विश्वास है उसको पूरा करूँ, यही मेरी इच्छा है।
1: विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह 4 दिन की यात्रा पर कल सऊदी अरब की राजधानी रियाद पहुंचे। श्री सिंह की ये सऊदी अरब की पहली यात्रा है। वे सऊदी अरब के मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्री, विदेश राज्य मंत्री और जलवायु पर्यावरण, जल तथा कृषि उप मंत्री से मुलाकात करेंगे। श्री सिंह सऊदी अरब में भारतीय मूल के लोगों, भारतीय व्यापार प्रमुखों, उद्यमियों तथा पेशेवरों से भी मिलेंगे। वे सऊदी में कार्यरत भारतीय कामगारों से भी बातचीत करेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
6: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: नई दिल्ली में इस महीने की 12 और 13 तारीख को आई ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में 500 से अधिक संस्थागत निवेशक, वित्त मंत्री और उद्योगपति शामिल होंगे। ये आयोजन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के समानांतर होगा। सम्मेलन का उद्देश्य ब्रिक्स के 21 सदस्य देशों और साझेदार देशों में संप्रभु पूंजी का उपयोग, भरोसेमंद बुनियादी ढांचे, ऊर्जा और डिजिटल क्षमता परियोजनाओं के लिए करना है। एक रिपोर्ट।
7: संप्रभु धन कोष, पेंशन कोष और परिवार कार्यालय कुल मिलाकर $1 ट्रिलियन मूल्य की संपत्ति का प्रबंधन करते हैं। सम्मेलन में सीमा पार निवेश, गैर डॉलर निपटान और भुगतान प्रणालियों पर चर्चा होगी। इसके अलावा भारत की UPI भुगतान प्रणाली और ब्राजील की पिक्स भुगतान प्रणालियों को जोड़ने तथा डिजिटल मुद्राओं में कारोबार पर भी चर्चा होने की संभावना है। ये शिखर सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा है जब ब्रिक्स देश व्यापार गतिशीलता, अमेरिकी शुल्क के दबाव और उच्च डॉलर लागत के समाधान के लिए स्वयं को अनुकूलित कर रहे हैं। भारत की अध्यक्षता में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगा। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: छत्तीसगढ़ में जगदलपुर की राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की विशेष अदालत ने झीरम घाटी में हुए माओवादी हमले के मामले में सभी 10 आरोपियों को दोषी ठहराया है। इस मामले में कुल 11 आरोपी थे, जिनमें से एक की मृत्यु हो गई थी। अदालत ने दो महिलाओं सहित सभी 10 आरोपियों को 29 लोगों की हत्या और 15 को हत्या के प्रयास का दोषी पाया। सजा पर फैसला 16 सितम्बर को होगा। दिल्ली में नकली दवा कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि दिल्ली पुलिस की अपराध नियंत्रण शाखा ऐसी आपराधिक गतिविधियों की पहचान के लिए लगातार निगरानी कर रही है, जिससे गलत लेबल वाली और नकली दवाओं के निर्माण और वितरण को रोका जा सके।
8: केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन CDSCO आपराधिक गतिविधियों से जुड़ी जानकारी मिलने पर दिल्ली पुलिस और अन्य जांच एजेंसियों के साथ मिलकर काम करता है। इसी लगातार निगरानी और कार्रवाई के तहत दिल्ली अपराध शाखा ने इस साल अप्रैल में दिल्ली में बिना लाइसेंस वाली जगह से गलत लेबल वाली और खराब गुणवत्ता की रेबीज वैक्सीन जब्त की थी। पिछले महीने की 27 तारीख को एक सूचना के जरिए ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI ने सभी राज्यों के ड्रग्स कंट्रोलर से कहा कि वे अपने इंस्पेक्टर स्टाफ को अलर्ट करें और दवा के गलत लेबल वाले बैच की आवाजाही, वितरण और उपलब्धता पर कड़ी नजर रखें। DCGI ने यह भी पुष्टि की है कि संबंधित बैच का कोई भी हिस्सा किसी दूसरे देश में निर्यात नहीं किया गया था। अस्पतालों, क्लिनिकों और सरकारी हेल्थ केयर सेंटरों में दी जाने वाली वैक्सीन सिर्फ लाइसेंस वाली फार्मेसियों के जरिए ही दी जाती है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
1: महाराष्ट्र के मेलाघाट और पेंच बाघ अभयारण्य गिद्धों के पुनर्वास मामले में देश के सबसे सफल स्थलों के रूप में उभरे हैं। इन केंद्रों में गिद्धों को पाला गया और उनके जीवित रहने की दर उत्साहजनक रही है। एक रिपोर्ट।
9: बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी BNHS के अनुसार दिसंबर 2025 से जनवरी 2026 के बीच दोनों अभयारण्यों में कुल 29 गिद्ध छोड़े गए थे। BNHS ने कहा है कि यह सफलता दर्शाती है कि गिद्धों को पर्याप्त शिकार और कम मानवीय हस्तक्षेप वाले बाघ अभयारण्यों में छोड़ना एक प्रभावी तरीका साबित हो सकता है। ये परिणाम देश में घटती गिद्ध आबादी के संरक्षण और पुनर्स्थापना के प्रयासों को महत्वपूर्ण प्रोत्साहन देते हैं। प्रार्थना के साथ माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: झारखंड सरकार के नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू का दिल का दौरा पड़ने से गिरिडीह के मर्सी अस्पताल में निधन हो गया है। देर रात तबीयत खराब होने के बाद उन्हें रात करीब 2 बजे अस्पताल लाया गया, जहां सुबह करीब 4 बजे उनका निधन हो गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सुदिव्य कुमार सोनू के निधन को अपनी व्यक्तिगत क्षति बताते हुए कहा कि उन्होंने अपना जीवन झारखंड की अस्मिता, अधिकार और स्वाभिमान की लड़ाई को समर्पित कर दिया। ईरान की नौसेना ने होर्मुज जल डबरू मध्य से गुजर रहे 3 तेल टैंकरों और अमरीका से जुड़े 3 जहाजों पर हमले का दावा किया है। इससे पहले अमरीका ने फारस की खाड़ी और ओमान सागर में 3 ईरानी तेल टैंकरों पर हमला किया था। महिला क्रिकेट में दुबई में T20 एशिया कप के ग्रुप ए मैच में भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया है। पाकिस्तान की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 18 ओवर और एक गेंद में महज 55 रन बनाकर आउट हो गई। ये T20 में उसका अब तक का सबसे कम स्कोर है। भारत ने 8 ओवर 4 गेंद में ये लक्ष्य हासिल कर लिया। भारत की ओर से स्पिनर श्रीचरणी और प्रेमा रावत ने 3-3 जबकि दीप्ति शर्मा ने 2 विकेट हासिल किए। ये मैच हरमनप्रीत का बतौर कप्तान 150वां T20 मैच था। वे पुरुष या महिला क्रिकेट में ये उपलब्धि हासिल करने वाली पहली कप्तान हैं। बैडमिंटन में भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी तीसरी बार चाइना मास्टर्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। फाइनल में उनका मुकाबला आज चीन के हे जीटिंग और रेन जियांग यू की जोड़ी से होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
10: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी एक्स पर @AIRNews हिंदी और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
11: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। हिंदुस्तान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रीराम कॉलेज में दिए गए वक्तव्य को प्रमुखता दी है। युवा ही विकसित भारत बनाएंगे, मुझे पूरा भरोसा। दैनिक जागरण ने प्रधानमंत्री की युवाओं को सलाह को सुर्खी बनाया है, बड़े सपने देखें और पूरा करने में जान लगा दें। जनसत्ता ने खतरा शीर्षक से IIT मंडी के शोध को प्रकाशित किया है। हिमाचल में आकार में तेजी से बढ़ रही 9 हिमनद झीलों की पहचान हुई। एक दशक में हिमालय क्षेत्र में हिमनद झीलें करीब 30% बढ़ी। 457 साल बाद बदलेगा दुनिया का नक्शा, लिखता है राजस्थान पत्रिका। संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव पारित, भारत सहित 164 देशों का इक्वल अर्थ मानचित्र के पक्ष में वोट। वर्ष 1569 में बने मर्केटर प्रोजेक्शन की जगह वर्ष 2018 के इक्वल अर्थ प्रोजेक्शन को बढ़ावा देने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। अमर उजाला ने न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर को प्रमुखता दी है। 1200 बेकाबू AI एजेंट्स ने इंटरनेट पर बना ली खुद की सरकार। पकड़े जाने के डर से मिटाए सबूत, ओपन AI और एंथ्रोपिक ने रोकी सबसे ताकतवर मॉडल की ट्रेनिंग। नवभारत टाइम्स ने परवरिश पृष्ठ पर AI की बढ़ती दखलंदाजी को प्रमुखता दी है। पेरेंट्स की जगह तो नहीं ले रहा AI, मम्मी पापा नहीं समझ पा रहे बच्चों को चैटबॉट से क्या हो रहे हैं नुकसान। पत्र ने बचाने के रास्ते भी दिए हैं। चैट हिस्ट्री जरूर देखें, अपना ज्यादा से ज्यादा समय दें, AI को दोस्त बनने से रोकें और हर जवाब तुरंत मत लेने दें।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील। भारतीय युवा परामर्श, लेखा, वित्त और कानून से जुड़ी ऐसी संस्थाओं का निर्माण करें जो वैश्विक स्तर की हों। भाजपा के राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया। NIA की विशेष अदालत ने 2013 में छत्तीसगढ़ के झीरम घाटी हत्याकांड में 10 माओवादियों को दोषी ठहराया। नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान आई ब्रिक्स सम्मेलन में 500 से अधिक संस्थागत निवेशक, वित्त मंत्री और उद्योगपति शामिल होंगे। और क्रिकेट में भारत ने दुबई में महिला T20 एशिया कप मैच में पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

त्रिवेणी तट पर मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह सभी को नमस्कार। दोस्तों, जीवन में खुशियां आसपास बिखरी होती हैं, हम खुशियों को अनदेखा कर देते हैं। चलिए आज छोटी छोटी बातों में तलाश करें खुशी का खजाना। सुबह सुबह जब चिड़िया मुंडेर पर बैठकर फुदकती है, जब आकाश में चिड़ियों का समूह सैर पर निकलता है, जब नदी के शीतल पानी को स्पर्श कर माथे से हम लगाते हैं, जब अदरक वाली खुशबूदार चाय की चुस्कियों के साथ सुबह सुबह रेडियो ट्यून करते हैं और रेडियो की सुई विविध भारती पर ठहरा देते हैं, तब होती है असली खुशी। तो चलिए आज रेडियो के साथ खुशी मनाते हैं। खुशी है।

दोस्तों, किसी विशेष तिथि पर जब हम जश्न मनाते हैं तब खुशी में डूब जाते हैं। जश्न के इंतजार में जो खुशी मिलती है वो अलौकिक होती है। खुशी हमें मिल जाती है किसी प्रिय व्यक्ति से मिलकर, कोई पसंदीदा कार्यक्रम सुनकर हम खुश हो लेते हैं, किसी की आवाज़ सुनकर हमारा दिन बन जाता है, कोई अपने पसंद का सुनहरा गीत सुनकर हम होठों पर मुस्कान सजा लेते हैं, खुशी से तरबतर हो सकते हैं। आइए आज दिन भर नहीं, शाम को रात तक बीने खुशियों की सीपियां।

दोस्तों, अगर हम खुश होना चाहते हैं तो लोगों की छोटी मोटी चालाकियों धूर्तताओं पर धूल डालकर आगे बढ़ जाएं और देखें कि कौन व्यक्ति अच्छा है, गुणी है। गुणी व्यक्तियों के साथ रहकर भी हम खुशी पा लेते हैं। किसी उत्सव पर्व त्योहार पर हम खुश हो लेते हैं। कुछ उत्सव आपको सिर्फ एक तिथि की याद नहीं दिलाते बल्कि आपको खुशियों की टोकरी सौंप देते हैं। छोटी छोटी खुशियां आपका मन समृद्ध कर देती हैं। हमारे चारों तरफ खुशियां बिखरी पड़ी हैं। जरूरत है उन्हें चुनकर सहेजने की, संवारने की। छोटे से बच्चे की किलकारी आपको खुशी से भर देती है। मासूम बच्चे को हंसाकर हम पाते हैं खुशी। कोई गीत गुनगुनाकर हम पा लेते हैं खुशी। तो चलिए गुनगुनाएं और बांटे सबको ढेर सारी खुशी।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: आपने ट्यून किया है विविध भारती का मुंबई केंद्र। 8:30 होने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे राष्ट्रीय मराठी समाचार।

0: भूल भुलैया 3 फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, श्रेया घोषाल की आवाज़ थी। अमाल मलिक और प्रीतम ने इस गीत को लिखा था, अमाल मलिक का संगीत आपने सुना। चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पर। चलिए इस कार्यक्रम में एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर से हम हाजिर होंगे।
1: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार
2: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सेल
3: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.

0: टाइगर जिंदा है फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। अतीफ असलम की आवाज में शाद कामिल के बोल थे, विशाल शेखर की धुन थी।
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर।

0: संगीतकार उत्तम सिंह, एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गड्डी ले
0: जो संगीत की साधना में बीता, एक विराट जीवन की कहानी।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
2: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
3: चिट्ठी ना कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।

0: जब से मोहब्बत हो गई है।
1: सोनू निगम और पलक मुछाल की आवाजों में बॉर्डर टू फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। जावेद अख्तर और मनोज मुंतशिर ने इस गीत को लिखा और अनु मलिक और मिथुन ने इस गीत की धुन बनाई थी।
2: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
3: अपनी आप रातों में चमन सरकती है।
2: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
4: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
2: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल।

0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
1: प्यार का राग सुनो रे,
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से,
1: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती से इस समय आप चित्रलोक कार्यक्रम सुन रहे हैं। इस कार्यक्रम में एक छोटा सा ब्रेक।
3: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
4: जी,
3: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
4: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
3: पर ये होगा कैसे?
4: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
3: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
4: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
3: बस
4: बस
3: समझ गया।
4: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
5: आरबीआई कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: एवरी ग्रेट जर्नी बिगिंस विद पीपल कमिंग टुगेदर टू लिसन, टू लर्न, टू इमेजिन व्हाट्स पॉसिबल। दिस इज द ब्रिक्स 2026, अ मोमेंट वेयर लीडर्स, इनोवेटर्स, बिजनेसेस एंड कम्युनिटीज फ्रॉम द ब्रिक्स नेशंस कम टुगेदर टू स्ट्रेंथन पार्टनरशिप्स। इंडिया वेलकम्स द ब्रिक्स कंट्रीज एज द ग्रुपिंग मार्क्स द 20 ईयर्स ऑफ इट्स एस्टैब्लिशमेंट इन 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.

0: सनम तेरी कसम फिल्म का गीत आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह की आवाज में। शब्बीर अहमद के बोलते हिमेश रेशमिया का संगीत था। चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पर।
1: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
2: नसीब इंसान का।
1: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हर साल 1-7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह चल रहा है। इसका उद्देश्य है लोगों को संतुलित आहार और सही पोषण के महत्व के बारे में बताना, मोटापा, मधुमेह जैसी बीमारियों से बचाव करना। आज के इस भागदौड़ में हम अक्सर स्वाद के चक्कर में सेहत को भूल जा रहे हैं और काम की व्यस्तता में पानी पीना भी भूल जाते हैं। तो आइए हम ये संकल्प लें कि हम स्वयं अच्छा और पोषक भोजन बनाएंगे, खाएंगे और अपने परिवार के साथ ही समाज को भी इसके लिए जागरूक करेंगे। और अब आपको सुनवा रहे हैं ये गाना जावेद अली, सुनिधि चौहान की आवाज़ों में। चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पर।

जावेद अली सुनिधि चौहान की आवाज़ों में कौसर मुनीर का लिखा ये गीत आप सुन रहे थे। साजिद वाजिद संगीतकार थे। फिल्म का नाम था दावते इश्क। आपको याद दिला दें कि आज शाम 4 बजे उजाले उनकी यादों के अंतर्गत सुनेगा नाट्य तरंग में यादों के अंतर्गत सुनेगा नाट्य निर्देशक शिक्षाविद और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय NST नई दिल्ली के पूर्व निदेशक पद्मश्री प्रोफेसर वामन से यूनुस खान की बातचीत का चौथा भाग प्रस्तुति तेजस्वी कांबले की।

श्रोताओं, आपको फिर से बता दें, शाम 4 बजे पिटारा में उजाले उनकी यादों के अंतर्गत सुनिएगा नाट्य निर्देशक, शिक्षाविद और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय NST नई दिल्ली के पूर्व निदेशक पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे से यूनुस खान की बातचीत का 4वां भाग, संपादन सहयोग योगिता जाधव का, प्रस्तुति तेजश्री कामले की। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय से।

0: युवा देश की सुरीली धड़कन। आइए लेते हैं छोटा सा ब्रेक।
1: सर्वांसाठी सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदीजींचा संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: आतापर्यंत या योजनेत 9,50,000 अधिक लाभार्थी सामील झाले आहेत। तुम्ही देखील 18-40 या वयोगटातील असाल तर मासिक अटल पेन्शन सहित योजनेच्या अन्य 3 हमी लाभांबद्दल माहिती मिळवण्यासाठी तुमच्या बँक शाखेशी संपर्क साधा।
3: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान। पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: यासिर देसाई की आवाज में आप सुन रहे थे गोल्ड फिल्म का गीत। गीतकार और संगीतकार थे आरको प्रभो मुखर्जी।
1: एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम संग।

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

0: सुनिए एक खुशखबरी।
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।

0: चिंगारी फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे हिमानी कपूर की आवाज़ में। समीर के बोल थे, आदेश श्रीवास्तव का संगीत था। इसी गीत के साथ ही आज का चित्रलोक कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
1: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार
2: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सेल

आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। आज के फनकार, ये प्रोग्राम आप सुनेंगे बस कुछ ही पलों में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: अक्सर मैंने अपने आप को घुटा घुटा ही पाया है, और या तो बिल्कुल बाकी।
0: नामचीन अभिनेत्री मीना कुमारी साहिब बीवी और गुलाम की छोटी बहू के बारे में।
1: साहब बीवी और गुलाम फिल्म की छोटी बहू मेरी हमजाद थी। मैंने इसे बहुत बहुत प्यार किया है। जब पहली बार मुझे मालूम हुआ कि पिक्चर फेल हो गई, तो मुझे महसूस हुआ मेरी कोई बहुत अजीज बहुत प्यारी सहेली सीढ़ियों से गिरकर जख्मी हो गई। और जब मुझे इसी फिल्म पर अवार्ड मिला, तो मेरी समझ में नहीं आया कि मैं इसे कहाँ संभालूं, किसे दिखाऊं।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका

6 सितंबर 1949 को मुंबई में जन्मे राकेश रोशन, संगीतकार रोशनलाल नागरथ के पुत्र और संगीतकार राजेश रोशन के भाई हैं और ऋतिक रोशन के पिता हैं। और अब तो राकेश रोशन का नाम फिल्म इंडस्ट्री के बड़े निर्माता निर्देशकों में शुमार होता है। लेकिन पिता संगीतकार रोशन के अचानक देहांत के बाद राकेश रोशन के लिए अपने करियर को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया। ऐसे में उनकी मदद के लिए आगे आए निर्माता निर्देशक मोहन कुमार। इन्होंने कई प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स को राकेश रोशन का नाम सजेस्ट किया एक्टिंग के लिए और आखिर 1970 में फिल्म घर घर की कहानी से राकेश रोशन की एक्टिंग की कहानी

ये गाना जो अभी आपने सुना अभिनेता जलाल आगा पर फिल्माया गया था। इस फिल्म घर घर की कहानी में राकेश रोशन सपोर्टिंग रोल में थे। बतौर अभिनेता उन्होंने अधिकतर सपोर्टिंग रोल्स ही किए। सोलो हीरो के रूप में उनकी कम ही फिल्में आईं, लेकिन जो भी आईं वो भी यादगार रहीं और उनका संगीत तो सुपर डुपर हिट रहा।

0: गिरा में अब तो रहा नहीं जाए रे हाय रे हाय रे हाय रे हाय रे हाय रे हाय रे।
1: इन दोनों ही फिल्मों में हालांकि मुख्य भूमिकाओं में देवता में संजीव कुमार थे और जख्मी में सुनील दत्त, लेकिन राकेश रोशन ने अपनी उपस्थिति बहुत ही पुरजोर तरीके से जाहिर की। उसके बाद फिल्म खट्टा मीठा में गोविंदिया गोस्वामी के साथ इनका ये गीत आज भी लोगों का दिल जीत लेता है।
2: ये सब तो ठीक है, लेकिन मैं एक बात पूछता हूँ,

ऐसी ही और भी फिल्में हैं। इनमें एक फिल्म याद आती है, फिल्म खूबसूरत। हालांकि फिल्म में टाइटल रोल रेखा का था, लेकिन राकेश रोशन और रेखा की जोड़ी ने बहुत ही कमाल अभिनय किया।

ऐसी ही और भी फिल्में हैं जिनमें राकेश रोशन अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहे, लेकिन इससे राकेश रोशन खुश नहीं थे। इसीलिए 1980 में राकेश रोशन ने स्थापित की अपनी फिल्म निर्माण संस्था फिल्म क्राफ्ट और फिल्म बनाई।

ये फिल्म कामचोर सुपर डुपर हिट रही। इस फिल्म को राकेश रोशन ने प्रोड्यूस किया था और यहीं से शुरू हुआ राकेश रोशन की फिल्मों में क शब्द का कमाल। यहां से आगे राकेश रोशन ने जो भी फिल्में बनाई उनका शुरुआती अक्षर क रहा और अब तो राकेश रोशन एक ब्रांड बन गए। राकेश रोशन ने 1987 में निर्देशन की कमान भी संभाल ली। फिल्म थी

अर्जुन, कोयला और इसके बाद कुछ वर्षों तक बतौर अभिनेता कुछ फिल्मों में कभी कभार नजर आए, लेकिन सन 2000 में बिग बैंग के साथ आए अपने बेटे को लेकर ऋतिक रोशन के साथ कहा, कहो ना प्यार है।

इस फिल्म कहो ना प्यार है की सफलता को तो सभी जानते हैं और ये भी जानते होंगे कि बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में इस फिल्म का नाम है क्योंकि इसे सबसे ज्यादा अवार्ड्स मिले। इसके बाद राकेश रोशन ने जितनी भी फिल्में बनाई सभी ने सफलता का एक नया मकाम हासिल किया। यहाँ ये भी बता दें आपको कि खूबसूरत फिल्म में रेखा के साथ अभिनय करने वाले राकेश रोशन ने अपनी दोस्ती को निभाया और रेखा को कोई मिल गया और क्रिश जैसी फिल्मों में बहुत ही दमदार भूमिका दी। तो अब वो फिल्में जिन्होंने सफलता का इतिहास रचा, कोई मिल गया।

0: फिल्मकार राकेश रोशन पर केंद्रित इस कार्यक्रम के लिए शोध आलेख और स्वर अमरकांत का और प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन।
1: आज के फनकार।

0: यूनुस खान की बातचीत। आप सुन रहे थे दीपाली इंडियन आइडल और अपने बचपन की बातें साझा कर रही थी और समय सीमा के तहत इस बातचीत को विराम देना पड़ा। तो आइए आज सुनते हैं इस बातचीत का दूसरा भाग।
1: ये जो भंवर वाला दौर था, झंझावात वाला दौर था, इससे निकलकर किसी फैसले पर दीपाली कैसे पहुंची?
2: हुआ ये कि जब हम वापस लैंड किए पटना एयरपोर्ट पे, तो काफी भीड़ आ गई थी एयरपोर्ट पे, मीडिया वाले सारे, पत्रकार और माइक्स और कैमरास। मेरे माता पिता पहली बार ऐसा देख रहे थे कुछ, क्योंकि अभी जो बेटी कुछ महीने पहले बंबई गई थी वो लौटी है, तो वो मेरी बेटी नहीं है, पूरे बिहार की बेटी के नाम से ये अब सिर्फ मेरी धरोहर नहीं है
1: जी।
2: और जब हम एयरपोर्ट पे उतरे तो मेरे पापा से सब पूछने लगे, अगला क्या, व्हाट नेक्स्ट, क्योंकि जीवन में यही सत्य है, जो आपने पा लिया हो गया, उसको एंजॉय करने का हक इंसानों के अंदर वो संस्कार ही नहीं डाला गया है कि जो है
1: अब आगे क्या,
2: आगे क्या,
1: खुद को भी अभी तक ये पूरा स्वीकार नहीं हो रहा है मन को।
2: करेक्ट। और ये इंसानों की फितरत है, मतलब हम इसको, ये नहीं बदली जा सकती है, ये किसी एजुकेशन सिस्टम से भी नहीं बदला जा सकता, किसी संस्कार से भी नहीं बदला जा सकता, इसको कई करोड़ों जन्म लगेंगे कि जो आया है उसको जीना पूरी तरह से, जो स्थिति है चाहे खुशी हो चाहे गम हो उसको पूरी तरह से जीने दो, अगला क्या जो सवाल है, ये बहुत मुश्किल है किसी के लिए भी इससे गुजरना। और तब उस वक्त जब अभी अभी किसी की मृत्यु हुई है और पूछे आप अगला क्या, वैसा महसूस होता है, क्या मतलब क्या अगला क्या। पर मेरे पिताजी, दीपाली बिहार से पहली लड़की थे हम जो इंडियन आइडल में गए थे, तो मेरे पिताजी को काफी प्रेशर आया, उनको ये पहले देख के वो बिल्कुल, हमको ऐसा हमको लगता है कि वो एकदम भौचक हो गए होंगे।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
2: क्योंकि ये पहली बार हो रहा था कि ऐसे मेरी बेटी एयरपोर्ट, एक तो फ्लाइट वाले हम थे नहीं, हम ट्रेन वाले लोग थे, हम फ्लाइट से उतर के, क्योंकि इंडियन आइडल वालों ने फ्लाइट से भेजा है, और मेरे पिताजी, इतनी मीडिया, इतने लोग, कुछ 200-250 लोग आ गए थे, फूल माला, और बच्चियां ऑटोग्राफ लेना चाहती थी, मेरे घर पे लड़के आते थे बाइक से और फूल फेंक के जाते थे, ये स्थिति जब हम मुंबई में चल रहा था तो ये स्थिति होने लगी थी पटना में। मेरे साइज का बुके आता था घर पे, मेरे साइज के सॉफ्ट टॉयज आने लगे थे, अखबार में छपने लगा कि दीपाली का फेवरेट मिठाई कौन सा है, तो वो लोग लेके घर आते थे इस उम्मीद पे कि दीपाली से मिलना हो जाएगा। तो इतना प्यार देख के, अब तक मेरे पापा जो थे वो बैकफुट पे खेल रहे थे जीवन में, क्योंकि बिहार में पापा मेरे पुलिस वाले थे, उनके पास ज्यादा समय नहीं था। और हमको जो असल में जो मेरे पिता का रोल प्ले करते थे वो थे मेरे चाचा, मेरे जिनको हम बाबूजी बोलते थे।
1: अच्छा।
2: बाबूजी ही हम लोगों को मेरा म्यूजिक स्कूल लेके जाना आना, बाबूजी ही सब कुछ करते। बट जब ये दौर हुआ जहां पर अब हम बाहर जा रहे हैं, तो मेरे पिताजी फ्रंट फुट पे आए एयरपोर्ट पे और बोले दीपाली कुछ ही महीने में अब मुंबई शिफ्ट हो जाएगी और वहां जाकर हिंदी फिल्मों में गाना गाने की कोशिश करेगी।
1: उन्होंने एकदम बोल दिया,
2: पब्लिक अनाउंस कर दिया। और घर आने के बाद मेरे पापा मम्मी की हो गई लड़ाई।
1: हाँ।
2: आपने ऐसा किस बेसिस पे बोल दिया? अब तो आ गई थी ना वापस, हम तो कभी नहीं चाहते थे कि ये मुंबई जाए, हमको बहुत डर लगता है उस जगह से, हम तो चाह रहे थे कि ये पढ़ लिख के आईपीएस बन जाएगी, अभी भी छोटी है, अब तो शुरू हुआ है इसका, अब हार गई तो चलिए इसका भी शौक पूरा हो गया, इसको इंडियन आइडल में जाना था, हो गया ना, पूरा कर ली ना, टॉप 7 में आ गई, हो गया अब पढ़ाई करो। लेकिन अब हमको भी तो चस्का लग गया था ना, ये दुनिया हमने देख ली थी आंख से, हमने महसूस कर लिया था यहाँ जी के, ये जीवन तो हमको कहीं नहीं मिलने वाला है। तो पापा बोले कि नहीं, हम लोग तो अब तो भेजना ही पड़ेगा इसको, मुंबई बहुत महंगा शहर है, ये तो मेरे माँ बाप को अंदाजा लग गया था। उस वक्त उन्होंने अपने जो भी जमा पूंजी थी थोड़ी सी, उसको तोड़ा। 2 महीने बाद मेरे साथ मेरे पापा मम्मी मुंबई आए, मेरे लिए एक जगह देखी गई जहाँ पे हम रह सके। क्योंकि तब क्या होता है, तब शोज होने शुरू हो जाते हैं, आप ट्रैवल करने लगते हैं, तो पटना से बहुत फ्लाइट्स नहीं होती थी तब बहुत कम फ्लाइट्स होती थी, तो मुंबई रहना जरूरी था, क्योंकि हर 10वें दिन या एक हफ्ते में एक बार आप फ्लाई कर रहे हैं, कहीं शो करने जा रहे हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
2: पर हम लोग इतने भोले थे कि हमें ये नहीं पता था कि ये जो शोज होते हैं इसके पैसे कमाते हैं हम लोग, ये नहीं जानते थे हम। बेचारे पापा मेरे अपना जमा पूंजी तोड़ के और उसमें से हमको लेके मुंबई पहुंचे, एक छोटी सी जगह ढूंढी, रखा वहां पे, और अकेले रह नहीं सकते थे, बहुत छोटी बच्ची थी वो, 18 साल की दीपाली, तो उसको एक पीजी में रखा गया जहाँ पे 2 और लड़कियां कमरा शेयर करती थी। बैंड्रा में एक पीजी में रहना शुरू किया। और एक दिन अचानक ऑफिस से फोन आया कि आप, और शोज होने लगे मुंबई में, शोज होने लगे, और एक दिन

0: बॉम्बे टॉकीज
1: साइंस लाइट साउंड कैमरा एक्शन।
2: दोस्तों नमस्कार, बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में पिछले हफ्ते आप सुन रहे थे दीपाली सहाय से

0: अचानक से ऑफिस से फोन आया कि आप आइए और अपना चेक लेके जाइए। तो हमें पता नहीं था चेक क्या, चेक तो गए तो पता चला जितने भी हमने स्टेज शोज किए थे अब तक उसके पैसे मिलते हैं,
1: और वो अच्छी रकम थी,
0: और वो बहुत अच्छी रकम थी।
1: आंखें एकदम,
0: खेल तो वहां से पलट गया सर।
1: हाँ।
0: ये रकम तो हम कैसे समझाएं कि
1: बिल्कुल
0: ये क्या हो गया था। कुछ समय के लिए जब पहली बार चेक मिला और हम बाहर ऑफिस के बाहर निकल के पापा को जब चेक बताए जो अमाउंट था उस पे जो अमाउंट लिखा था वो हम पढ़े भी नहीं क्योंकि हमको लगा वो तो पॉसिबल ही नहीं है। हमने कुछ हजारों में अमाउंट बताया पर वो कुछ लाखों में था। ये स्थिति थी, जीवन वहां से पलट गया मेरा। दैट फर्स्ट चेक गेव मी द कॉन्फिडेंस कि अब हमको मेरे माँ बाप के ऊपर जो प्रेशर है हमको बहुत हर हमको लगता है कि बेटियों को ऐसे ऐसे पाला जाता है कि समाज कर देता है, माँ बाप
1: थोड़े में खुश रहना,
0: वो संतोषी पैदा ही संतोषी होती है, पैदा होंगी और नहीं तो समाज बना देगा कि भाई तो बहुत बड़ी बात है कि तुम्हारे पापा तुमको पढ़ने भेज रहे हैं, इतने में ही खुश है बेटी। हाँ ये बात तो सही है, पापा पढ़ने तो भेज रहे हैं। तो मेरे अंदर एक बहुत गिल्ट फील होता था कि मेरे पापा को इतना, मेरे पापा मेहनत करते हैं हम और हमको मेरे पर सारा खर्चा कर देंगे, दीदी को भी पढ़ाना है तो कैसे होगा। लेकिन वो चेक वो जीवन में एक दूसरी दीपाली को लेकर आया बाहर,
1: और उसके बाद वो एक अलग उड़ान शुरू हुई,
0: एक अलग उड़ान शुरू हो गई।
1: लगातार शोज हो रहे थे और हर शोज में कॉन्फिडेंस बढ़ रहा था
0: और इंडियन आइडल ने तब तक अप्रोच कर दिया कि आप इसे होस्ट करिए।
1: हाँ हाँ।
0: तो जो पिछले साल जो लड़की कानपुर के एक लाइन में खड़ी थी जिस शो में एक हिस्सा बनने के लिए, इस साल वो लड़की उस शो को होस्ट करने जा रही थी।
1: बिल्कुल।
0: तो अब वो लड़की वो थी ही नहीं जो दीपाली पैदा हुई थी पटना में।
1: हाँ।
0: वहां से खेल बदलने लगा, कॉन्फिडेंस भी बदलने लगा।
1: बिल्कुल। यहाँ कामयाबी भी आ रही थी, काम भी आ रहा था और जिंदगी बहुत कुछ सिखा रही थी।
0: करेक्ट।
1: परिस्थितियों के मुताबिक बदलना, अपने आप को संभालना। यहाँ मैं आगे की बातचीत करने से पहले एक गाने का जिक्र करना चाहता हूँ, गंगा मैया तो है पीरी चढ़े हुए को गाना जो आप गाती हैं बहुत सारा, पहले वो गाना सुनते हैं उसके बाद आगे की यात्रा की बात करते हैं।
0: बिल्कुल। हाँ।

0: राम।
1: क्या बात है, ये गाना तो जैसे हमारी संस्कृति का हिस्सा बन चुका है, हमारे मानस का हिस्सा बन चुका है। मुझे याद है कि जब ये फिल्म रिलीज हुई थी तो ये कहा जाता था कि पहले बनारस जाओ, गंगा में डुबकी लगाओ, गंगा मैया देखो, फिर गांव वापस आओ।
0: वाह वाह वाह वाह।
1: तो ये एक पूरा एक दौर था जब इस फिल्म को लेके दीवानगी थी। ये गाना सुनते हैं।

0: तो ये गाना हमने सुना, गंगा मैया तो है पीरे चढ़ेबो, और बिहारी लड़की यहाँ आते आते अभिनय के मैदान में भी उतरने वाली थी, ये कैसे हुआ है?
1: ये गजेंद्र सिंह जो है, हाँ, जो सारेगामा
0: जो उसके प्रोड्यूसर थे,
1: डायरेक्टर थे, प्रोड्यूसर थे, उनका अचानक एक दिन फोन आया। उस समय भोजपुरी का एक नया चैनल लॉन्च हुआ था और उन लोगों को नए शोज बनाने थे और
0: बड़े धूमधाम धड़ाम तरीके से शुरू हुआ,
1: बहुत धड़ाम, मतलब बंबई में बहुत बड़ा ऑफिस था भोजपुरी चैनल होने के बाद भी, जितना बड़ा उनका ऑफिस था हिंदी वाले भी दंग रहते थे कि ये क्या चल रहा है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: वो उस वक्त का जो दौर था,
0: सीरियल बनने लगे, रियलिटी शो बनने लगे, जाने क्या क्या हो रहा था।
1: तो ये उन्होंने गजेंद्र सिंह ने ही एक दिन फोन किया, और ये वो गजेंद्र सिंह है जो दीपाली के दिमाग में सारे गामा के डायरेक्टर है, जो जिनको सोनू निगम एक जमाने में होस्ट करते थे और हम बचपन में देखा करते थे। तो फोन आया कि गजेंद्र सिंह बोल रहा हूँ, तो मेरा रिएक्शन ऐसा था, अच्छी बात है, ओके बाय, क्योंकि हमको विश्वास नहीं हुआ कि खुद गजेंद्र सिंह ने फोन किया फिर दोबारा कॉल आया, दीपाली मैं गजेंद्र सिंह बोल रहा हूँ, साईं बाबा प्रोडक्शन, सारे गामा। जब उन्होंने अपना परिचय दिया तब हमको समझ आया कि अरे ये तो असली वाले गजेंद्र सिंह है। तो हम बोले हाँ जी सर, हाँ जी जी सर बोलिए, तो हम एक शो बना रहे हैं भोजपुरी में है, तो हम चाहते हैं कि तुम उसमें एक्टिंग करो। बोले सर हमको एक्टिंग नहीं आती है। तो बोले वो तुम्हारा काम नहीं है डिसाइड करना, तुम्हारा काम है हाँ बोलना, तुमको आती है कि नहीं आती है ये तो डायरेक्टर बताएगा, हम बताएंगे, तुमसे कराएंगे, हम करा लेंगे, हमको पता है। एंड दैट्स हाउ दिस बड़की मलकाई नाम था इस सीरियल का, ये शुरू हुआ मेरे जीवन में। और एक्टिंग का हमको सच में, मतलब ठीक है कि मूड इंडिगो में हम लोगों को फर्स्ट प्राइज मिल गया था, बट ये कॉन्फिडेंस नहीं था कि हम बहुत अच्छा एक्टिंग कर लेंगे। बट क्योंकि उस जमाने में बहुत अच्छे पैसे थे, हमको ये भी नहीं पता था कि पर डे बेसिस पे सीरियल में पेमेंट होते हैं, सो आई थॉट कि इट्स अ वेरी गुड आइडिया। और हुआ क्या कि इंडियन आइडल में मेरे ना वोकल कॉर्ड्स फट गए चिल्लाने की वजह से। तो एक बहुत बड़े डॉक्टर थे यहाँ पे, उन्होंने बोला कि अब तुम जीवन भर कभी गा नहीं सको, तो तुम गाना तो भूल ही जाओ, ये तुम्हारा करियर यहाँ पे गाने का खत्म होता है। और मेरे वोकल कॉर्ड्स का जो उस समय जो एक वो लैरिंजियोग्राफी या कुछ कहते हैं उसको, उसके पिक्चर्स देखे उन्होंने, तो पिक्चर्स में वोकल कॉर्ड्स लिटरली फट चुके थे और खून बह चुका था, पूरा रेड सोर रेड था मेरा वोकल कॉर्ड। तो हम भी डर गए, हमको लगा कि, तो वो ही उन्होंने बोला कि कुछ दिन तक तो तुमको बिल्कुल साइलेंस पे रहना होगा क्योंकि उसको रेस्ट देना जरूरी है। और फिर उन्होंने बोला कि सिंगिंग एज अ करियर भूल जाओ, क्योंकि अब तुम अपने वोकल कॉर्ड्स को फाड़ चुकी हो चिल्ला चिल्ला के वो रियलिटी शो होस्ट करने के चक्कर में, तो गाना तो तुम गा नहीं सकती हो, और अगर बहुत बोलोगी तो जो बोलने वाली आवाज है वो भी चली जाएगी। तो हो सकता है वो उनका डराने का तरीका हो एक छोटे बच्चे को, इस बहाने शायद ठीक हो जाए, बट आई टुक इट वेरी सीरियसली। तो जब ये एक्टिंग का ऑफर आया तो हमको लगा ठीक है, करियर सिंगिंग में तो है नहीं जीवन, अब मेरा तो गला चला गया है गाने के हिसाब से, तो एक्टिंग

0: कर लेते हैं। तो एकदम शिद्दत से हम उसमें घुस गए एक्टिंग करने में, और फिर मतलब फिर बाकी जगह से भी ऑफर्स आने लगे और हम करने लगे। रियाज और गाना तो कहीं चला गया जीवन से।
1: और ये जो गले की समस्या थी, इसके बारे में पहले पता नहीं था कि ऐसा हो सकता है कि वोकल कॉर्ड्स पर इफेक्ट पड़ता
0: है? नहीं पता था। अगर पता होता तो शायद, पर अभी हम सोचते हैं कि अगर कोई बोले कि इतना बड़ा रियलिटी शो होस्ट करना है आपको, लेकिन आपके गले पे असर पड़ेगा, तो भी हम ना नहीं बोलते।
1: बिल्कुल
0: नहीं बोल पाते।
1: कैसे संभाला फिर अपना गला उन दिनों में, जबकि ये कहा गया कि पूरी तरह से साइलेंस रहना है वगैरह वगैरह?
0: वो कुछ दिन तो हम बहुत परेशान रहे क्योंकि बहुत दर्द होता था गले में, तो हम बहुत रोते भी थे। माँ थी मेरे पास यहीं पर अंदर ही अंदर अब समझ आ गया था कि मेरा करियर तो है ही नहीं म्यूजिक में, हम तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो मेरा दिमाग, क्योंकि हम आई वॉज अ डूअर होता है ना, कुछ लोग करने वाले होते हैं, तो हमको करना था कुछ। अब हम आ चुके थे मुंबई और शोज जो थे वो पैसा दे रहे थे, हमको नहीं पता था कि शोज से पैसे आएंगे, पर अब तो आ चुके थे। चस्का तो वहां से भी लग चुका था और यहाँ पे म्यूजिक करियर जाता रहा। तो ऐसे में एक एक्टिंग करियर शुरू हुआ, तो हमको लगा ठीक है, मतलब तो कुछ कला से रिलेटेड करने में है ना, तो ये भी तो
1: इसी
0: का आर्ट का ही एक रूप है ना एक्टिंग, और अच्छा है, डिसेंट है। भोजपुरी का जो उस समय इमेज था, मतलब वल्गर गानों का, ये शो उस इमेज को भी तोड़ रहा था, एक अच्छा डिसेंट पारिवारिक एंटरटेनिंग शो। तो हमको लगा सही है। तो पहले कुछ दिन कुछ ही, हमको लगता है कुछ ही महीने का डिप्रेशन रहा होगा, और उसके बाद फिर चीजें पलटने लगी। आई स्टार्टेड एंजॉयिंग दैट।
1: और उसके बाद फिर वो जो एक्टिंग का सिलसिला चल पड़ा,
0: करेक्ट,
1: उसमें कौन कौन से सीरियल्स आए वो भी हमारे सुनने वालों को बताइए।
0: सबसे पहले तो बड़की मलकाइन था, फिर उसके कुछ दिन बाद दूरदर्शन नेशनल पर अनुदामिनी करके एक शो आया, वो बहुत हिट हुआ, उसमें मेरा वैम्प का रोल था।
1: ये अलग चैलेंज हो गया।
0: सो मेरे लिए, बट ये चैलेंजेस बहुत काम कर रहे थे, क्योंकि वो चीजें जो आप सोच भी नहीं सकते, अगर आपको वो करनी पड़े तो आप अपने आप को फिर और बेहतर पहचानते हैं कि अच्छा ये भी सक्षमता है, ये भी करने में सक्षम होंगे हम, ये भी, ये सारी चीजें आप, सेल्फ एक्सप्लोरेशन की जर्नी है। जब आपने अपने ऊपर कोई कैप नहीं लगाया है कि हम यही करेंगे, तो फिर आप एक जर्नी पर निकल पड़ते हैं इंसानी तौर पे। तो वो मेरा शुरू हो गया था अनजाने में।
1: बिल्कुल बिल्कुल, जिंदगी अपनी तरह से
0: आई वॉज अलाउइंग कि जीवन को जैसे बहना है बहू, क्योंकि अब तो हम जो सोच के आए थे कि हम बहुत जल्द, मेरे पापा बोले थे कि अब ये मुंबई जाएगी और हिंदी फिल्मों में गाने का कोशिश करेगी, वो तो मेरा चूर हो गया 2 ही महीने में जब डॉक्टर ने बोला नहीं पॉसिबल है। तो फिर हमने एक्टिंग को एक्सेप्ट किया, और भारत की शान, दूरदर्शन पे ही एक रियलिटी शो होता था भारत की शान, उसको भी होस्ट किया। जय हनुमान एक सीरियल आता था सोनी एंटरटेनमेंट पे, उसमें एक्टिंग की, उसमें भी वैम्प का रोल था, स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी, महाराणा प्रताप, बस थोड़े से अनजाने, नीम नीम शहद शहद, बींद बनूंगा घोड़ी चढ़ूंगा, इस तरह के छोटे छोटे शोज में अच्छे इम्पोर्टेंट रोल्स कर करके आई थिंक मेरे कुछ 6 साल निकले।
1: और ये जो गायकी वाला मामला था,
0: वो तो बस महीने में जैसे 20 दिन की शूटिंग और 10 दिन जो बचा है उसमें कभी कोई शो मिला तो कर लिया।
1: और गला तब तक
0: संभल गया था, पर रियाजी गला नहीं था वो। वो तो उसके अंदर का चोट हील हो गया था, वो मेरे दिमाग का फितूर था कि वो चोट हील नहीं होगा, अब कभी कुछ नहीं होगा। बट एट द सेम टाइम शोज जो उस समय होते थे, उस समय शोज में प्रायोरिटी ये नहीं होता था कि सुरीला गाओ, ऑडियंस नाचनी चाहिए। तो गाने के ऊपर उतना प्रेशर है नहीं, कोई भी गाना चला दो ऑडियंस नाच रही है। तो शोज अच्छी मेरी अच्छी कट रही थी कि शोज भी चल रहे थे और एक्टिंग भी चल रहा था, और अब करियर तो है नहीं म्यूजिक में, सिंगिंग में, तो रियाज तो करने की जरूरत है नहीं, ऐसा जीवन चल रहा था मेरा।
1: और मम्मी पापा तब तक पटना में ही थे?
0: वो लोग पटना में ही थ्रू आउट रहे, मतलब पूरे टाइम वो लोग पटना, पापा क्योंकि सरकारी नौकर थे तो वो शहर तो नहीं छोड़ सकते थे, माँ आना जाना करती थी, ऑफकोर्स वो बेचारी बट गई थी अपने पति और अपने बच्चे के बीच, क्योंकि बड़ी बहन जो थी वो बैंगलोर में LLB कर रही थी, और वो प्रॉपर लाइफ जी रही थी जो एक उस उम्र का बच्चा जीता है, हॉस्टल लाइफ, क्लास जा रहे आ रहे, पर उनकी ये बेटी जो थी वो एक अद्भुत दुनिया में पहुंच गई थी। मतलब एक बंदा है उस रियलिटी शो के बाद, उसने बोला चलो बेटा मैं तुमको मोंटी शर्मा से मिलवाता हूँ। हम लोग पहुंच गए यशराज के स्टूडियोज में, मोंटी शर्मा उनके सामने बैठ,

0: के सांवरिया फिल्म आई थी तब आने वाली थी, आ गई थी, और उन्होंने गाना भी सुना, और हम लोग जब वापस लौट रहे थे तो रणबीर कपूर से भी मुलाकात हो गई, तो ऐसा लगा कि वाह अब तो बस प्लेबैक मिल ही जाएगा। और वो ही टाइम था जब जो रियलिटी शो उसको होस्ट करने के ठीक पहले का टाइम, जब मेरा गला बिल्कुल रेडी था, जब माँ बाप को लगा था कि ये प्लेबैक में कुछ करेगी। और हमने मुलाकात की, हम जब घर वापस आए तो उस बंदे ने जिसने हमें मिलवाया बिना मांगे, उसने हमारी जो मीटिंग करा दी उसके एवज में उसने बोला कि उसकी कोई विदेशी मित्र मेरे पास रहेगी 3 महीने के लिए।
1: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
2: सर्वांसाठी सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदीजींचा संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: आतापर्यंत या योजनेत 9,50,000 अधिक लाभार्थी सामील झाले आहेत। तुम्ही देखील 18 ते 40 या वयोगटातील असाल तर मासिक अटल पेन्शन सहित योजनेच्या अन्य 3 हमी लाभांबद्दल माहिती मिळवण्यासाठी तुमच्या बँक शाखेशी संपर्क साधा।

0: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: क्वेश्चन नहीं किया कि तुम क्या कर रही हो, तुम करना चाहती क्या हो. कभी कोई नहीं हमको ये सवाल पूछता था.
2: आपने एक दिन ये तय कर लिया कि आपको फिल्म इंस्टीट्यूट में जाकर डिप्लोमा लेना है.
1: हाँ, और इसके लिए एक्टिंग छोड़ के बाकायदा, और तब तक इधर पैरेलली, हाँ पैरेलली मेरा ग्रेजुएशन भी हुआ मुंबई में.
2: हाँ हाँ, अरे वो तो एडमिशन ले लिया यहाँ कॉलेज में, ये तो मैं भूल गया बात करना.
1: यहाँ हमने एडमिशन ले लिया और मेरा ग्रेजुएशन हुआ मास मीडिया में.
2: तो ये क्लासेस,
1: ये क्लासेस जो थे, ये प्रिंसिपल काफी दयावान थी. वो रियलिटी शो देखती थी और शी वॉज अ फैन, शी वॉज अ सपोर्टर. तो उन्होंने इतनी छूट दे दी कि तुम
2: रेगुलर क्लासेस नहीं आओगी
1: तो चलेगा. तो वो वहां पे आई थिंक मेरा लक फेवर्ड मी एंड ग्रेजुएशन, इट वाज ऑल बिकॉज ऑफ हर कि मेरा ग्रेजुएशन हो गया. क्योंकि माँ बाप का ये भी था कि बेटा डिग्री तो चाहिए, बिना डिग्री के बिहारी जीवित नहीं रह सकता है.
2: लेकिन ये बहुत बढ़िया बात है, ये बहुत जरूरी बात है. और उसमें आपने इस पर फोकस किया, ये भी उतनी ही बड़ी बात है कि एक तरफ जब एक्टिंग का मामला चल रहा है, प्रोफेशन सेट है, उसके बाद
1: प्रोफेशन सेट है, पैसे सेट है. मतलब एक 18-20 साल की लड़की के लिए जितने पैसे हम कमा रहे थे, अभी भी सोच के हमको ऐसा लगता है कि मतलब हम गलत रास्ते कैसे नहीं गए, ये कौन सी कृपा थी मेरे ऊपर.
2: ये सारे संस्कारों का खेल,
1: ये सारे संस्कारों का खेल है. ये मेरे माँ बाप के दिए हुए संस्कार थे. और 6 साल बाद जब हम सोचे कि हमको और पढ़ना है, FTII जाना है, तो वो मेरे पिताजी बोले बेटा तुम घर आ जाओ, कोई बात नहीं, अभी कोई कमाई नहीं, कोई काम नहीं, तुम घर आओ. मेरे पिताजी मेरे साथ बैठ के FTII की तैयारी शुरू कर एक

0: गजब। तो आपने तब एक्टिंग भी छोड़ दी?
1: छोड़ दिया, बिल्कुल छोड़ के, सब कुछ छोड़ के मुंबई से वापस घर पटना।
0: ये तो बहुत बड़ा टर्न था।
1: हाँ, ये काफी बड़ा टर्न था, बहुत बड़ा टर्न था।
0: एफटीआई की तैयारी किस तरह की?
1: एक तो पता नहीं था कि फिल्म देखा कैसे जाता है। फिल्म देखना हमें मसाला फिल्में देखने आती थी, मनमोहन देसाई जी की जो ग्रैंड सक्सेस फिल्म जो बिहार में चलती थी। हाँ। मेरे लिए फिल्म देखना मतलब एंटरटेनमेंट, बट एफटीआई वाज अ सीरियस बिजनेस। और वहां पे जब हम एक्टिंग कर रहे थे तो मेरे अंदर ये था कि डायरेक्टर जो बोल रहा है वही करना पड़ता है, तो भैया जो लीडर है हमको वही बनना है। जिस भी प्रोफेशन में हम काम करें, जो लीडर है हमको तो वही बनना है। ये छोटा जो क्या बोलते हैं बाल मन जिसको कहते हैं, वो अपना ही कुछ इन्फ्लुएंस निकालता रहता है। तो जैसे एज अ कैरेक्टर हमको ऐसा लगता था कि मेरे कैरेक्टर को ये लोग रुलाते बहुत है। इतना नहीं रो सकती है कोई। वो पलट के क्यों नहीं बोल रही है जब उसके साथ इतनी ज्यादती हो रही है। तो ये जो कहानी लिख रहा है ना, हमको वहां बैठना है, सो दैट आई कैन टेल माई ओन स्टोरी मे बी, यू नो, ये मेरे दिमाग में, ये
0: टू कंट्रोल द थिंग्स,
1: करेक्ट,
0: एंड टेल योर स्टोरी,
1: करेक्ट, टू टेल माई स्टोरी इन माई वेज। क्योंकि आप जो दिखाते चले जा रहे हैं ये सच नहीं है। इतनी प्रताड़ना कोई इंसान जीवित तो नहीं सह सकता है, वो कभी तो रिटेलिएट करेगा। तो वो रिटेलिएशन भी वो उस कैरेक्टर का बहुत सीमित दिखाते थे कि वो बस उसने एक बार ऐसे देख लिया चौंक के, बट मेरे नैरेटिव में वो फिट नहीं बैठ रहा था। तो हमको लगा ये कर कौन रहा है, ये खेल क्यों हो रहा है। और मेरी डायरेक्टर से बहस भी होती थी कि सर कभी तो आप पलट के मुझे जवाब देने दो इनको। तो डायरेक्टर ने बताया कि भैया जो राइटर लिखेगा और जो डायरेक्टर बोलेगा यही होगा। तो मेरे दिमाग में अच्छा तो हम अपनी कहानी बनाएंगे, तो हम जाएंगे डायरेक्टर बनने। तब पता भी नहीं था कि एफटीआई नाम का कुछ एग्जिस्ट करता है। इंटरनेट पे दुनिया खोल के पढ़ के पता चला हिंदुस्तान का सबसे बेहतरीन इंस्टीट्यूट है, लेकिन उसमें तैयारी लगेगी, रिटन होगा, अगर वो क्वालिफाई हुआ तो इंटरव्यू होगा, ये मतलब एक छोटा यूपीएससी का छोटा सा फॉर्मेट। तो
0: उसकी तैयारी के लिए दीपाली यहाँ से एक्टिंग वैक्टिंग सिंगिंग विंगिंग सब छोड़ के चली गई पटना और तैयारी शुरू कर दी।
1: बिल्कुल,
0: ये कहानी बहुत गजब की है भाई।
1: हाँ, हाँ।
0: इतने टर्न एंड ट्विस्ट हैं। पिताजी तैयारी करवा रहे हैं, फिल्में देखी जा रही हैं।
1: हाँ, फिल्में देखी नहीं, हमें तो ये भी नहीं पता था कि फिल्म इंस्टीट्यूट में जाने के लिए फिल्में देखी जाती हैं। आप सोचिए, हमको बहुत आश्चर्य होता है कि कितने कमाल के हैं ये लोग जिनके बीच हम पैदा हुए हैं। इनको कुछ नहीं पता है,
0: नहीं, ये एक
1: लेकिन
0: अलग
1: ये लगे हुए हैं।
0: हाँ।
1: हाँ, लगे हुए हैं। हमको भी नहीं पता है कि एफटीआई में घुसने के लिए फिल्में देखनी पड़ेंगी। हमको ये पता है क्रिएटिव होना जरूरी है, एंड आई एम क्रिएटिव। तो जब मेरा रिटर्न हुआ तो उसमें जो एंड जनरल नॉलेज मेरा अच्छा था, जनरल अवेयरनेस अच्छा था, तो वो चीजें तो सॉर्टेड थी। क्रिएटिव राइटिंग करना था जो डायरेक्शन के कोर्स के लिए था, वो सॉर्टेड थी। किसी एक फिल्म की समीक्षा अगर आ जाए, किसी स्पेसिफिक फिल्म का एक सीन डिस्क्रिप्शन आ जाए या एडिट पे बात आ जाए, वहां हम थोड़े अटकते, बट आई वॉज रेडी कि उसमें भी हम कुछ बात बना के लिख सकते हैं, इतने भी बेवकूफ नहीं है। वर्ल्ड सिनेमा तो पता भी नहीं था। सिनेमा देखना भी नहीं आता था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि हमेशा उसको एज अ एक्टिंग शूटिंग वही दिमाग में रहा। इसलिए शायद हम थोड़े डेड इमोशन थे, मतलब मेरे अंदर जो जज्बात थे ना वो काफी डेड थे। तो तैयारी शुरू की हमने वर्ल्ड सिनेमा के बारे में सिर्फ पढ़ के, क्योंकि फिल्में नहीं थी मेरे पास देखने को। मेरे लैपटॉप में वो सीडी प्लेयर नहीं था, मेरे पास वो कंप्यूटर नहीं था जिसमें हम सीडी लगा के वर्ल्ड सिनेमा की बात देख
0: लें या किसी अलग अलग जरिए से सिनेमा को डाउनलोड कर लें और जमा कर लें और
1: वो
0: शान
1: सब
0: बगा
1: कुछ भी नहीं आता था।
0: हाँ।
1: मेरे हाथ में बस इतना ही था कि वो रिटर्न क्लियर करना है जैसे भी, क्योंकि हमको पता था कि अगर हम इंटरव्यू तक पहुंच गए हमको उसमें से नहीं छाट सकता है। तो आई थिंक आई वॉज वेरी लकी। एक्चुअली मेरा विश्वास था कि हम कभी रिजेक्ट नहीं होंगे। वो रियलिटी शो हारने की वजह थी क्योंकि हम मन से हारे हुए थे। एक लड़की नहीं जीत सकती थी इसलिए वो लड़की नहीं जीती। एक लड़की सोच रही थी वो एफटीआई में निकाल लेगी इसलिए उसने निकाल लिया। यही है, मन के हारे हारे मन के जीते जीत, ये सत्य है।
0: यहाँ एक गाना सुनते हैं क्योंकि बहुत देर से हम बात कर रहे हैं। तो अब दीपाली कौन सा गाना सुनाएगी?
1: अब दीपाली के जीवन में जो मोड़ आया है वो है छोटी सी कहानी से।
2: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment.

0: establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी. स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़. सेल सिक्योर TMT बार,
2: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल.

0: इजाजत तक का सफर तय कर लिया। यहाँ से दीपाली चली आती है पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट, सिलेक्शन हो जाता है।
1: करेक्ट।
0: इंटरव्यू सब तोड़
1: सब सब सब सब
0: है ना,
1: सब सब।
0: तो मतलब
1: दीपाली, और जो लिस्ट निकलता है वो लिस्ट में सबसे नीचे का नाम है, क्योंकि वो रैंकिंग के बेसिस
0: सबसे नीचे का नाम है।
1: 12 सीट होते हैं, इनमें से 6 जनरल कैटेगरी और 6 रिजर्व्ड कैटेगरी। तो वो जो 6 सीट है उनमें सबसे नीचे मेरा नाम है, मतलब हमने जस्ट क्वालिफाई कर लिया,
0: बच गए। और कौन कौन लोग हैं हमारे साथ वहाँ पर
1: अलग अलग? अच्छा, ये एक अच्छी बात थी कि 12 स्टूडेंट्स में से हर स्टूडेंट अलग स्टेट का था।
0: बिल्कुल।
1: ये आई थिंक ये कॉन्शियस प्रोसेस है उनका सिलेक्शन का, क्योंकि मेरे बैच में केरलाइट भी था, कर्नाटका भी था, हम बिहारी, यूपी, दिल्ली, मध्य प्रदेश। इट वॉज ऑलमोस्ट लाइक अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियन स्टेट। तो अब क्या होता है, आप अपने प्रांत में, अपने स्टेट में अपने ही तरह के लोगों के साथ उठ बैठ रहे हैं। शायद इसलिए FTII जैसा इंस्टीट्यूट बनता है, बहुत बहुत सोच विचार के। अभी इस वक्त हम यहाँ बैठे हैं तो हमको FTII के मेरे दिन याद आ रहे हैं।
0: अच्छा,
1: वहाँ भी ऐसे ही स्टूडियोज है। बिल्कुल। यही है ही वो।
0: बिल्कुल।
1: वो प्रभात खबर स्टूडियो हुआ करता था, प्रभात स्टूडियोज शांताराम जी का। तो अभी जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बिल्कुल इस ऑफिस की तरह ही, हमारे ऐसे ही स्टूडियोज होते थे, हमारे ऐसे ही क्लासेस होते थे। तो बट द बेस्ट पार्ट वॉज कि सारे बच्चे अलग अलग स्टेट के थे, सारे ग्रेजुएट्स थे। तो आप एक उम्र, अब आप एक जीवन का एक नजरिया, एक एक्सपीरियंस, एक एहसास, आपका दिल टूट चुका है, अब तक आपको प्यार हो चुका है, आपका ब्रेकअप हो चुका है, आप जीवन में फिनेंशियल स्ट्रगल समझ चुके हैं, आपने वो सारी चीजें, क्योंकि अब आप ग्रेजुएट हैं तो आपने एक उम्र तो जी ली है, एक हिस्सा एक्सपीरियंस कर लिया है, और उसके बाद आप पहुंचते हैं एक ऐसी जगह जहां वर्ल्ड सिनेमा की बात हो रही है, और सिर्फ सिनेमा, सिर्फ टेक्निकल बातें नहीं हो रही है। ये देख के समझ आ रहा है कि जो मेरे अंदर जो एहसास चल रहा है, इटली में बैठा 100 साल पुराना डायरेक्टर भी उसी एहसास को दिखाने में कामयाब हो रहा है।
0: बिल्कुल।
1: ये समझ आया, सिनेमा इज केपेबल, व्हाट इज सिनेमा केपेबल ऑफ। ये FTII ने समझाया कि इंसान जीना कैसे है, पर्सपेक्टिव क्या होता है।
0: देयर इज नो बाउंड्री इन ह्यूमन इमोशंस।
1: देयर इज नो बाउंड्री। और आप अपने जीवन का कैमरा कहाँ रख रहे हैं, और अपने जीवन को किस पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं।
0: बहुत सही।
1: नॉट जस्ट लिटरली, फिजिकली आप कैमरा कहाँ रख के एक सीन लगाते हैं, उसके पीछे के जो कारण होते हैं ये तो हम सोचते ही नहीं है कि क्यों इस वक्त हम इस लड़ाई को छत से देखा जा रहा है, इस लड़ाई को डायरेक्टर ने नीचे से क्यों नहीं दिखाया। ये चीजें, ये जो पर्सपेक्टिव है, जो फिजिकली और नॉन फिजिकली, मेंटली ऑल्सो, हमको समझ आया कि अच्छा नजरिया होता क्या है एक्चुअली। ये FTII ने सिखाया हमको।
0: और यहाँ वर्ल्ड सिनेमा जो है वो पूरी तरह से अपने कब्जे में था, कुछ भी देख सकते थे, डिस्कस कर सकते थे।
1: बिल्कुल। हमारी जो फैकल्टी थी, जो विजिटिंग फैकल्टीज थे, जो टीचर्स थे, वो बड़े समझदार लोग थे, बहुत सहनशील समझदार लोग थे, क्योंकि ये सारे जो बच्चे आए थे ये सब अपने अपने घरों से लड़कर आए थे। मतलब कोई इंजीनियर है, इंजीनियरिंग के बाद पहुंच रहा है, किसी ने जो, ये वो बच्चे थे जिन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया है, और वो वेट कर रहे थे उस दिन का जब वो अपने माँ बाप को बोलेंगे अब तो मेरा चलेगा।
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: जब उन्होंने थोड़े से पैसे भी कमा लिए हैं कहीं से कैसे। तो ये एक ऐसा बाउंड्री था, जो फिजिकल बाउंड्री था FTII का, जिसके अंदर सिर्फ आजाद पंछी थे,
0: और ये सारे सिनेमा के जुनूनी लोग
1: ये
0: थे।
1: सब सिनेमा लवर्स। और इनकी बातें, इनके डिस्कशंस, इनके एक्सपीरियंसेस, इनका जीवन को महसूस करने का तरीका ही अलग था। ये देखते ही कुछ और थे, जो हम लोगों को नॉर्मल दिखता था ये उल्टा देखते थे उन चीजों को। और ऐसे लोगों के साथ मेरा सौभाग्य हुआ कि हम इन लोगों के बीच में गए, मेरे जैसा सीधा चलने, सीधे रास्ते चलने वाला इंसान एक बोले तो एक खुले पिंजरे में घुस गया था, और वहां पर लोगों को सिनेमा देखने का तरीका, उस पर डिस्कशंस, अपनी फिल्में बनाना है आपको, आपके अपने प्रोजेक्ट्स हैं। ये जो मेरा एक साल का जर्नी था FTII में, आई डिड टेलीविजन डायरेक्शन फ्रॉम देयर।

0: एक साल बाद जो नाम सबसे नीचे था वो वहां से टॉपर बन के निकलता है।
1: वाह वाह वाह।
0: और हमारे यहाँ जो टॉपर होता था उसको विधु विनोद चोपड़ा स्कॉलरशिप मिलती है। सो आई रिसीव्ड दैट स्कॉलरशिप इन एफटीआई। तो मेरे लिए आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा वो जर्नी होगा।
1: पूरा ट्रांसफॉर्मेशन,
0: पूरा पूरा मतलब दीपाली कई फेजेस में बनी और टूटी है। एफटीआई उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बहुत। दीपाली को अडल्ट बनाया एफटीआई ने इन टर्म्स ऑफ अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ एंड ह्यूमन इमोशंस। वहां पे हम पहली बार रोना सीखे पब्लिकली।
1: अच्छा।
0: दूसरों के सामने भी रोया जा सकता है, यह अभी तक नहीं हुआ था मेरे साथ, और एफटीआई के अंदर पहली बार हुआ जब हम किसी के साथ बैठकर कुछ बात करते हुए और हम रो पाए। और वो एक इतना कैथार्टिक फीलिंग था, वो इतना अच्छा है महसूस हुआ जब ये
1: हल्का
0: हुआ,
1: हो जाना।
0: इतना हल्का महसूस हुआ तो समझ आया कि जीवन कुछ और ही है। मतलब आप कुछ और ही समझ रहे थे अब तक।
1: तो ये एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन था। और वहां पूना में सिनेमा की दुनिया में रहकर एक तरह से खुद से मुलाकात हुई।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने।
1: यहाँ एक गाना सुन लें।
0: बिल्कुल।
1: उसके बाद मुंबई की तरफ आते हैं।
0: बिल्कुल।
1: कौन सा गाना होगा?
0: ले

0: एकदम सत्य है ये।
1: दीपाली के साथ बिल्कुल यही हो रहा था,
0: बिल्कुल यही हो रहा था।
1: ये जावेद साहब की भूल है।
0: हाँ,
1: मशाल फिल्म का गाना है और हृदयनाथ मंगेशकर का म्यूजिक है
0: जी,
1: है ना, सुनते हैं ये गाना।

0: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses, and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: एक अनोनिमिटी मिली और वो एक अज्ञातवास जो मेरे जीवन का बहुत सुंदर अज्ञातवास था, क्योंकि अब हम उस लेवल पे थे कि हम कुछ भी कर सकते थे, कोई नहीं पहचानता है हमको। वो इतना एम्पावरिंग होता है, क्योंकि जब आप जब जस्ट रियलिटी शो से निकले तो आपको सब जान रहे हैं। अगले 1-2 साल तो डेफिनेटली आपको लोग जान रहे हैं। आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप 5 स्टार्स में जा रहे हैं, आ रहे हैं, आप रोज फ्लाइट ले रहे हैं, आपका जीवन अलग चल रहा है। और अचानक से करियर जो है वो धीरे धीरे अपना मोड़ लेने लगता है और आप एक दिन डिसाइड करते हैं कि अब हम कुछ नहीं करेंगे। और जब आप FTI से निकलते हैं तो आपकी ट्रेनिंग ऐसी है कि आप यू आर रेडी टू बी अ स्पॉट बॉय टू अ डायरेक्टर। आप उस बीच में कुछ भी हो सकते हैं, आप
3: बहुत सही
2: खुल चुके हैं, आप बिल्कुल निर्लज्ज हो चुके हैं, आप हर काम करने को तैयार है, क्योंकि टारगेट ध्येय है कि आपकी फिल्म बननी चाहिए।
3: हाँ।
2: या जिसकी फिल्म बन रही है उसका पूरा सहयोग होना चाहिए।
3: बिल्कुल,
2: वो पैशनेट लोग ही कर सकते हैं,
3: टीम की तरह।
2: अब जो इंडिविजुअल दीपाली, इंडिविजुअलिस्टिक दीपाली थी, अब वो समाज के साथ जिसके कोई दोस्त नहीं होते थे, अब उसके दोस्त बनने शुरू हुए। अब दीपाली एक अलग आयाम में घुस रही थी अपने, और यहाँ पे दोस्ती आई मेरी लाइफ में। इसके पहले तक हम बहुत अकेले थे, बहुत अकेले थे। तो जब हम मुंबई वापस आए तो क्योंकि बैचमेट्स, और FTI का तो हम मशहूर हैं बैचमेट्स, और
3: अलुमनाई
2: हमारा काफी तगड़ा है।
3: वहाँ एक तरह का कनेक्शन जो है जोरदार होता है,
2: बहुत जोरदार होता है। और वो क्या है, वो बिल्कुल इतना गहरा है कि समय की सीमा उसमें मायने ही नहीं रखती। कम से कम समय में आप इतनी गहराई से, क्योंकि काम ही ऐसा है, आप एक काम ही ऐसा कर रहे हैं कि आप जुड़ेंगे ही उस लेवल पे। तो वहां से मेरी लाइफ में दोस्ती शुरू हुई, दोस्तों के साथ काम शुरू हुआ, कुछ ऐसे दोस्त बने जो मतलब मेरे जीवन से भी प्यारे, मेरे जान से भी प्यारे हैं मेरे दोस्त। वो लोगों के साथ मुंबई में मेरा असिस्टेंट बनने का सपना और स्ट्रगल और जो भी रास्ता है वो शुरू हो गया था, और 1 साल तक ये बड़ा अच्छा चला। इस बीच एक दिन कैफी आजमी साहब की बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं हर साल, शबाना आजमी जी और बाबा आजमी जी, दे वर लुकिंग फॉर सिंगर्स जो गाना गा सके उनके बर्थ एनिवर्सरी पे, और एक अच्छा मंच कई नए टैलेंट को भी जगह देने का, क्योंकि वो आंगन ऐसा है कि हर कोई वहां बैठना चाहता है। वो आप गए होंगे आई एम श्योर जानकी कुटीर में,
3: पृथ्वी हाउस में होता है,
2: पृथ्वी हाउस।

0: में, पर पृथ्वी उसके ये इधर जो जानकी कुटीर उसका नाम, हाँ, उस वो उन्हीं का आंगन है जहाँ कैथी साहब रहते थे, तो वहीं पे एक छोटा सा स्टेज लगा के और
1: वहां करते हैं।
0: उनकी मंशा भी यही है कि नए टैलेंट को, क्योंकि वो इतना प्योरिटी से और इतनी शिद्दत से और इतने बड़े लेवल का कार्यक्रम है कि इतने बड़े बड़े समझदार गुणी लोग वहां बैठते हैं कि वहां कोई भी गाने को तैयार हो जाएगा। बट ये देखिए, ये उनका बड़प्पन है कि उनको नए टैलेंट चाहिए, वो चाहते हैं कि वो भी अपना टैलेंट नए लोग भी दिखा सके। और मेरे एक दोस्त को, क्योंकि हम गाते थे तो उसको पता चला कि बाबा आजमी को असिस्ट करता था, तो उसने बोला चल तू भी चल, गाना चाहिए, उनको सिंगर्स चाहिए। तो हम बोले मेरा क्या काम है वहां पे, हम तो शोज वोज करते हैं, अब उनको अच्छे सिंगर चाहिए होंगे। नहीं नहीं तू चल। और हम पहुंचे और बाबा आजमी आए बाहर, एक तो वो दिखते भी कैफी साहब जैसे ही है तो काफी ऐसा फील हो रहा था, ओ माय गॉड, यू नो बाबा आजमी। एंड उन्होंने बोला आप सुनाइए, आप क्या सुना सकती हैं। तो हमने गाना गाया कैफी साहब का, वक्त ने किया क्या हंसी सितम। बाबा आजमी डिस्टर्ब हो गए, उन्होंने बोला आप करती क्या है, क्योंकि आप जिसके साथ आई है वो तो मेरा असिस्टेंट है, तो ये आपका दोस्त है, तो मतलब आप सिंगर तो नहीं है, तो आप करती क्या है। तो आई सेड कि सर हम अभी डायरेक्शन पास आउट हैं एफटीआई से और काम ढूंढ रहे हैं, तो आप अपना जीवन इसी में व्यर्थ कर देंगी, मतलब आप गाना क्यों नहीं गाती हैं। तो आई सेड सर वो एक डॉक्टर ने बोला था कि हम गाना नहीं गा सकते हैं जीवन भर। तो बोले वो पागल है, वो डॉक्टर पागल है जिसने ये बात आपको बोली है। अब हुआ ये कि वो इतने साल में ये दीपाली की आवाज हील कर चुकी थी, ये तो कॉमन सेंस की बात है जो दीपाली के पास नहीं था क्योंकि आवाज तो पैदा हुई है जिसके साथ आप, वो आवाज तो वैसी ही रहेगी ना, गला खराब हो सकता है, आवाज नहीं जा सकती छोड़ के, आप पैदा हुए उसके साथ, उस मशीन के साथ। तो जब बाबा आजमी ने ये बात बोली ना, तो उनके एक अनजान इंसान, आप उनको पर्सनली नहीं जानते हैं, लेकिन वो अगर आपके लिए इतनी शिद्दत से कुछ महसूस कर रहा है तो वो उनकी आंखों में दिखता है। तो बाबा आजमी की आंखों में दिखा कि उनको इस बात की छटपटाहट हो गई कि ये बच्ची अपना जीवन बाकी कामों में व्यर्थ कर क्यों रही है जब ये ऐसा गाती है। और ये बात मेरे साथ रह गई, और उन्होंने उस साल हमको वहां मौका भी दिया कैफी साहब के
1: महफिल
0: में ये गाना, उनका सबसे फेवरेट गाना है बाबा आजमी सर का, कुछ दिल ने कहा कुछ भी नहीं,
1: अनुपमा फिल्म का।
0: और वो उनको मेरी आवाज इतनी पसंद आ गई कि उन्होंने बोला कि इस गाने के लिए भैया मार्केट में बहुत बवाल होता है कि हम गाएंगे तो हम गाएंगे, सिंगर्स लूटने के लिए दौड़ते हैं, बट आई वॉन्ट टू गिव दिस सॉन्ग टू यू। ये कॉन्फिडेंस जब बाबा आजमी सर ने मेरे अंदर दिखाया तो हमको लगा कि यार ये हम सच में कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं।
1: फिर से एक दो रहा गया
0: फिर एक दो रहा गया
1: आगे बढ़ने से पहले वही गाना सुनना चाहिए।

कितनी सुंदर पंक्तियों को चुना आपने गाने के लिए, बहुत शानदार गाना है। और ये इस गाने के सबसे अच्छे अंतरों में से एक है, पलकों की ठंडी सेज पर। क्या बात है, क्या बात है।

0: ये गाना कहता है ऐसी भी बातें होती हैं और दीपाली की जिंदगी में ऐसी ही बातें हो रही थी। गाना वापस लौट गया था
1: बिल्कुल। बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे जानी मानी गायिका दीपाली सहाय से यूनुस खान की बातचीत। आज आप सुन रहे थे इस बातचीत का दूसरा भाग। इसका तीसरा भाग आपको सुनवाएंगे अगले हफ्ते बॉम्बे टॉकीज में। जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज। चलने से पहले आपको बता दें इस कार्यक्रम में संपादन सहयोग प्रभा भटनागर, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: विविधा विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।

0: द्विविधा के सभी सुनने वालों को जयंत पात्रीकर
1: और मनीषा जैन का नमस्कार।
0: मनीषा जी।
1: जी जयंत जी,
0: बस एक दिन पहले हमने शिक्षक दिवस मनाया।
1: जी हाँ, सभी शिक्षकों को हमारा प्रणाम।
0: और शिक्षक की बात होती है तो कबीर का एक दोहा बरबस याद आ जाता है
1: जी।
0: सब धरती कागज करूं, लेखनी सब वन राय, सात समंद की मसी करूं, गुरुगुन लिखा न जाए।
1: वाकई ये बात तो बहुत सच है कि गुरुगुन लिखा न जाए, इसीलिए तो गुरु को और शिक्षक को भी बहुत महत्व हमारे जीवन में दिया गया है। सबसे पहली शिक्षक तो माँ होती है जो उंगली पकड़कर चलना सिखाती है, और कई बार तो जो पहला अक्षर होता है वो भी बच्चा अपनी माँ से ही सीखता है।
0: और जैसे घर में माँ चलना सिखाती है, समाज में कैसे चलना है
1: जी हाँ,
0: ये गुरु से ही सीखा जा सकता।
1: और वहीं जो हमारे विद्यार्थी होते हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे, वो सब वहीं जाकर संस्कारित होते हैं और समाज में अपना स्थान प्राप्त कर सके इस योग्य बनते हैं। और उसका पूरा दायित्व शिक्षक का होता है, क्योंकि बच्चे अपना ज्यादातर वक्त तो स्कूल में ही बिताते हैं और बड़ा एक्टिव वक्त बिताते हैं। जयंत जी, एक बात और मैं कहना चाह रही थी कि 5 सितंबर को हमने शिक्षक दिवस मनाया और 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस भी है।
0: देखिए कितना अच्छा संयोग है।
1: जी हाँ, और विश्व साक्षरता दिवस आरंभ हुआ था 1967 में, तब से लेकर अब तक

0: हम निरंतर इस दिन को मनाते आ रहे हैं और आज भी कहते हुए कई बार अफसोस भी होता है कि हमारे देश का भी कुछ हिस्सा अभी तक साक्षर पूर्णतया हो नहीं पाया है, जिसके लिए निरंतर प्रयास जारी हैं।
1: अवश्य, और आज की तारीख में, आज के जमाने में जिस साक्षरता की बात की जाती है वो है डिजिटल लिटरेसी।
0: जी हाँ, अगर डिजिटली लिटरेट होंगे, यानी अगर आप कंप्यूटर और मोबाइल फोन्स के जरिए डिजिटल दुनिया में कदम रखेंगे तो वो भी बहुत ज़रूरी है। और कई बार तो घरों में हमने देखा है कि नन्हे मुन्ने बच्चे भी अपने दादा दादी नाना नानी को डिजिटली साक्षर कर रहे हैं, तो इस चीज़ का अवश्य ख्याल रखा जाए कि न केवल साक्षरता बल्कि डिजिटली साक्षर होना भी आज के युग में तो बहुत आवश्यक हो गया है,
1: बेहद आवश्यक है। और मनीषा जी, श्रोताओं को इंतजार है कि हम क्या लेकर के आए हैं इस सुंदर संयोग पर उनके लिए।
0: जी हाँ, ये एक संयोग है और मैं ये चाह रही थी कि हमने जब इतनी सारी बातें की साक्षरता पर और शिक्षकों पर, तो शिक्षकों के प्रति हमारा जो सम्मान है विविध भारती की ओर से, हम उनको जो सम्मान देना चाह रहे हैं वो होगा गीतों का एक छोटा सा पुष्प, क्योंकि कई फिल्मों में आपको याद होगा जैन जी, बहुत सुंदर कुछ गीत पिक्चराइज किए गए हैं कई अभिनेत्रियों पर, कई कलाकारों पर, जहां शिक्षक और विद्यार्थी के बीच में सीधे सीधे बातचीत है और वो गीत बहुत मीठे हैं।
1: तो चलिए गीतों का ये गुलदस्ता नजर करते हैं अपने श्रोताओं को
0: और आइए याद करते हैं उन पुराने गीतों को जिनमें शिक्षक और विद्यार्थी के बीच का प्यारा सा संबंध हमारे समक्ष प्रस्तुत होता है।

0: पंडित जी,
1: जी।
0: भारतीय मनीषा में अक्षर को ब्रह्म माना गया है और नाद को भी ब्रह्म माना गया है। नाद ब्रह्म की भी हम उपासना करते हैं, हम मानते हैं, लेकिन आज इन गीतों के जरिए और हमने अपने अक्षरों के जरिए जो आपके समक्ष ध्वनि के रूप में आए, हमने उसके जरिए सम्मान दिया है उन शिक्षकों को जिन्होंने अपना जीवन अहर्निश लगा दिया उन छात्रों को शिक्षित करने में।
1: जी, और इन शिक्षकों का सम्मान होता है हमारे देश के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर 5 सितंबर को, जो हमने मनाया
0: जी
1: शिक्षक दिवस के रूप में। और मनीषा जी, शिक्षा का ये तो एक चलन हुआ
0: जी,
1: मगर शिक्षा के और भी कई साधन है, बहुत से मार्ग है, माध्यम है जिनसे हमें शिक्षा मिलती है, और फिल्म भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण माध्यम है।
0: जी हाँ, बल्कि मैं तो

0: कहूंगी कि जिंदगी के पग पग पर हमें शिक्षा मिलती है, लेकिन जैसा जयंत जी ने कहा ना कि मनोरंजन के जो हमारे साधन हैं उनके जरिए भी हम निरंतर शिक्षित होते हैं। जीवन ही अपने आप में एक बहुत बड़ी शिक्षा है। किसी ने कहा है ना कि जीवन सिखाती बाद में है, पहले परीक्षा ले लेती है। तो ऐसी ही कुछ कहानियां हैं फिल्म इंडस्ट्री में, कई ऐसे किरदार हैं जिनको हमने पर्दों पर देखा है और उनके जीवन के बारे में जब हम सुनते हैं पढ़ते हैं तो वाकई बहुत एजुकेट होते हैं और बहुत इंस्पिरेशन, यानी उनसे बहुत ज्यादा हमें प्रेरणा भी मिलती है। फिल्मों में यूं तो नायक नायिका और निर्देशक निर्माता संगीत इन तमाम लोगों से बनकर तैयार होता है एक सुंदर सा गुलदस्ता और फिल्में हमारे सामने आती हैं, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण किरदार होता है कॉमेडियन का।
1: जी बिल्कुल, बहुत ही हल्के फुल्के तरीके से हंसते खेलते हुए हाँ। कुछ ना कुछ सिखा जाते हैं ये हास्य अभिनेता।
0: जी हाँ, और एक बात तो माननी पड़ेगी कि एक जमाने में हास्य अपने उच्चतम स्तर पर था। उस जमाने में जयंत जी जो फिल्में बना करती थी उसमें जो हास्य अभिनेता होता था वो बहुत महत्वपूर्ण किरदार होता था और उन पर कुछ डायलॉग्स तो ऐसे बने हैं जिन्होंने उन कलाकारों को अमर कर दिया। अब आप मेरा इशारा समझ रहे हैं मैं
1: बिल्कुल,
0: किस
1: बिल्कुल, और हम आज याद करने वाले हैं जाने माने अभिनेता मुकरी साहब को।
0: वाह,
1: और मुकरी साहब का जिक्र होते ही मनीषा जी बताइए कौन सा डायलॉग याद आता है।
0: अरे शराबी फिल्म का सदी के महानायक अमिताभ जी द्वारा कहा गया वो डायलॉग कौन भूल सकता है कि मुझे हो तो नथू लाल जैसी हो
1: वरना ना हो,
0: वरना ना हो। और देखिए हमारे चेहरों पर भी हंसी खिल गई।
1: और अपने श्रोताओं को बता दें मनीषा जी, उनका असली नाम था मोहम्मद उमर मुकरी
0: जी,
1: और उनका महाराष्ट्र का जो कोकण इलाका है वहाँ अलीबाग में 5 जनवरी 1922 को उनका जन्म हुआ था और 4 सितंबर है उनका स्मृति दिवस।
0: हम आज मुकरी जी को याद कर रहे हैं और श्रोताओं मुकरी जी के बारे में कुछ और भी हम आपको बताना चाहेंगे कि उन्हीं फिल्मों में जो पहला ब्रेक दिया था
1: जी।
0: वो ब्रेक दिया था देविका रानी जी ने और उनके बारे में जो सिफारिश की थी वो थे उनके स्कूलमेट दिलीप कुमार साहब। उन्होंने देविका रानी जी से कहा था कि इन्हें मौका मिले और उनकी पहली फिल्म आई थी प्रतिमा जिसमें उन्होंने दिलीप कुमार जी के साथ अभिनय भी किया था।
1: जी बिल्कुल, बॉम्बे टॉकीज की ये फिल्म थी और उसके बाद जो सिलसिला शुरू हुआ तो 600 फिल्मों में हमने उन्हें देखा।
0: बताइए हाँ। इतने बड़े कलाकार और तकरीबन 50 वर्ष तक का उनका जो फिल्म इंडस्ट्री को कॉन्ट्रीब्यूशन है उसे कौन भूल सकता है।
1: बिल्कुल, और जिस तरह से नथुलाल याद आते हैं वैसे एक और किरदार है, फिल्म का नाम है अमर अकबर एंथनी
0: तैयब अली। ऐसे बहुत ही अमर किरदारों को उन्होंने पर्दे पर उतारा जयंत जी।
1: तो मुकरी साहब की कौन सी नायाब रिकॉर्डिंग हमारे श्रोताओं के लिए आप लेकर आई हैं मनीषा जी?
0: एक रिकॉर्डिंग है हमारे पास जयंत जी और देखिए इस रिकॉर्डिंग में, बल्कि सुनिए इस रिकॉर्डिंग में मुकरी जी ने किस बेबाकी से और कितनी जिंदा दिली के साथ अपनी बात कही है कि सुनते सुनते आपको बहुत आनंद आएगा। तो पेश खिदमत है ये खास रिकॉर्डिंग मुकरी साहब की, आइए श्रोताओं सुनते हैं। ये हम आपके लिए खास तौर पर लाए हैं विविध भारती के संग्रहालय से चुनकर।
2: सुनने वालों को मेरा नमस्कार। आप तो मेरी आवाज से पहचान गए होंगे कि मैं कौन बोल रहा हूँ। मेरा नाम है मुकरी। आप तो समझ गए होंगे, कद वगैरह तो आपने पर्दे पे देख लिया है। वैसे मेरा जो गानों का टेस्ट है वो एक अजीब किस्म का है। मैं गानों में शायरी और धुन को बहुत ही नजाकत और उसके अंदर सही अल्फाज वगैरह चाहते हैं। मैं ये नहीं चाहता वो जैसे आजकल गाने हैं, तूने देखा मैंने देखा, मैंने सुना तूने सुना, आप पीपल के झाड़ के नीचे प्यार करेंगे, वो ये चीजें मुझे साहब बिल्कुल पसंद नहीं आती। क्योंकि गाना हो तो जरा मजे का, तबीयत खुश हो जाए, यानी एक मूड आ जाए, एक किसी चीज में खो जाए, ये वो गाने। जैसे मसलन एक गाना मैं आपको सुनाता हूँ, लेकिन गाना सुनाने से पहले मैं उसका जरा आपको उसकी स्टोरी सुनाऊं कि क्या हुआ। जब साहब मेरी शादी हुई, मतलब शादी हो रही थी, तो उसमें शादियों में जो रस्म रिवाज होते हैं तो हमने हमारी बीवी को कभी देखा ही नहीं। हमारे माँ बाप ने हमारी शादी हमारे फिल्म लाइन में होते हुए भी, मैं एक ऐसा शख्स हूँ जिसने अपनी बीवी को ही नहीं देखा और शादी कर दी। अब हमको ये फिक्र है उसके पता नहीं कितने लंबे दांत होंगे, कितनी ना बड़ी नाक होगी, क्या होगा, किस चेक के दाग होंगे, पता नहीं। ये इंसान अपने अपने ख्याल में कुछ न कुछ सोचता रहता है, लेकिन जब हमारे सामने उस रस्म में आईना ला के रखा तो हमने देखा वाह वाह हमारी बीवी गोरी चिट्टी है, मुझे बड़ी पसंद आई। लेकिन जब उसने मेरा मुँह देखा तो उसने ये गाना शुरू किया।

महमूद साहब ने एक पिक्चर का प्रोग्राम बनाया। महमूद साहब मुझे बड़ा तकदीर वाला समझते हैं। वैसे वाकई में मेरी कुछ कुदरत की बड़ी मुझ पर मेहरबानी है और मैं बड़ा खुदा से और भगवान से और जो ईश्वर से जिससे आपका आप हर एक के अपने अपने जो है उससे मैं बहुत डरता हूँ। और न किसी का दिल दुखाना, न किसी का गीबत करना, न किसी की बुराई करना, इन चीजों से अपने को कोई लेना देना नहीं। काम अपने को मिलता है, रोटी अपने को मिलती है, रहने को अच्छी तरह से मिलता है, तो फिर इन तमाम चीजों से मतलब क्या है। और सबसे बड़ी बात कि अपने को किसी किस्म की लालच भी नहीं है। तो महमूद साहब जब प्रोग्राम वो कहते हैं यार तू तो बड़ा लक्की है, मैं हर मेरी पिक्चर तेरी वजह से हिट हो जाती है क्योंकि मैंने उसके पड़ोसन में काम किया, कुंवारा बाप में काम किया। तो जब ये महमूद साहब पिक्चर बना रहे थे जनता हवलदार, तो बस बार बार मेरे आ रहे रोज खाने पीने खा रहे कहने लगे कि मैं और तू दोनों इस पिक्चर में क्या तेरा रोल होगा और ये होगा वो होगा। तो जो राजेश खन्ना साहब ने जो रोल किया था वो तो बोले मैं कर रहा हूँ और मेरा रोल तू कर रहा है। बाद में गोलियों के चक्कर में उन्होंने उनका रोल जो था वो राजेश खन्ना को दिया और मेरा रोल जो रोल था वो खुद ने कर दिया। उसके बाद पिक्चर हो गई फ्लॉप, पिक्चर की डिलीवरी भी नहीं गई। तो जिस दिन आए फिर मेरे यहाँ, तो मेरे उनका यहाँ फैमिली रिलेशन है, तो मेरी बीवी ने खाना भी ना लगा। मैंने कहा महमूद तू बड़ा उदास मालूम हो रहा है, तो कहने लगा यार वो मैं गाना लगाता हूँ, वो मुझसे क्या भूल हुई जिसकी सजा मुझको मिली। मैंने बोला वो सजा ये मिली कि तूने मेरे को नहीं लिया ना पिक्चर में, इसलिए वो तेरे को सजा मिली कि डिलीवरी नहीं गई।

0: जब मैंने
1: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
2: जी,
1: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
2: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
1: पर ये होगा कैसे?
2: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
1: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
2: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
1: बस
2: बस
1: समझ गया।
2: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
3: आरबीआई कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: मुझे बराबर इसकी रिहर्सल वगैरह करवा के मुझे तैयार किया और ये मैंने खुद अपने से गाया। वैसे मैं कोई गाना बिना गाने वाला तो मुझे आता नहीं है, ना मुझे ताल सुर का पता रहता है, लेकिन ये गाना गाया था और मैंने फिर ये गाना गाया जो हीरा के अंदर मैंने गाया, वो सुन लीजिए। मैंने मेरी अपनी

0: जयंत जी, मुकरी जी की आवाज सुनकर उनकी पूरी शख्सियत सामने आ गई और बहुत आनंद आया उनकी इस रिकॉर्डिंग को सुनकर। बहुत बेबाक और बहुत हंसते हुए उन्होंने अपनी बात कही थी, बहुत खुश मिजाज व्यक्ति।
1: मनीषा जी, हास्य अभिनेता जिस तरह से बहुत जरूरी हिस्सा होता है फिल्मों का, वैसे ही फिल्मों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष है फिल्म का संगीत।
0: वो तो मैं कहती हूँ फिल्मों की आत्मा है।
1: बिल्कुल, और भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की जहाँ बात हो रही है, आज के दिन याद आ रहे हैं विशेष रूप से संगीतकार आदेश श्रीवास्तव।
0: बहुत कम उम्र में एक बहुत महत्वपूर्ण संगीतकार जो हमारे दौर के थे, आदेश श्रीवास्तव जी, उन्हें हमने खो दिया। ये भी एक बहुत दुखद पहलू रहा कि 4 सितंबर को उनका जन्मदिन होता है और 5 सितंबर उनका स्मृति दिवस। बहुत कम उम्र में, मैंने कहा ना, जैसे 51 वर्ष की उम्र में वो हमारे बीच से चले गए। कुछ एक बार विविध भारती को ये मौका मिला था इस युवा संगीतकार से मिलने का, और आदेश श्रीवास्तव साहब एक ऐसे परिवार से जुड़े हुए थे जिनका संगीत में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा।
1: जी, जानी मानी गायिका और अभिनेत्री सुलक्षणा पंडित की छोटी बहन विजेता पंडित से उनका विवाह हुआ था।
0: जी हाँ, और सुलक्षणा पंडित जी और विजेता पंडित जी पंडित प्रताप नारायण की पुत्रियां हैं, तो पूरा जो परिवार है उनका वो संगीत में रचा बसा है। इसके अलावा उनके जो भाई हैं सुलक्षणा पंडित जी के, जतिन ललित, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण संगीतकार जोड़ी के रूप में प्रसिद्ध हुए। बाद में जतिन पंडित जी ने भी बहुत सी फिल्मों में संगीत दिया। आदेश श्रीवास्तव जी उसी परिवार से थे, जन्म उनका हुआ था मध्य प्रदेश के जबलपुर में।
1: जी, और उन्होंने एक शॉर्ट फिल्म का प्रोडक्शन भी किया था, सना नाम की ये शॉर्ट फिल्म थी। और आपको बता दें कि सबसे पहली बार उन्हें जो ब्रेक मिला था फिल्म संगीत के लिए, वो थी फिल्म कन्यादान 1993 में, और उसमें लता जी और उदित नारायण का गाया हुआ एक गीत बड़ा मशहूर हुआ था, आगे आओ प्यार करें। इस फिल्म से सिलसिला शुरू हुआ और फिर बहुत सी फिल्में हमें मालूम है, चलते चलते, बागवान, कभी खुशी कभी गम, आंखें, रहना है तेरे दिल में भी एक गीत उनका था।
0: फिल्मों में उनके गीत बहुत ज्यादा लोकप्रिय हुए और आज हम श्रोताओं उनकी वो रिकॉर्डिंग आपके लिए लेकर आए हैं जो हमने बहुत पहले रिकॉर्ड की थी। विविध भारती तशरीफ लाए थे आदेश जी और उनसे बातचीत की थी कमल शर्मा जी ने। उनकी स्मृतियां हमारे पास हैं और वो हमारी धरोहर हैं।
1: तो चलिए सुनते हैं ये नायाब रिकॉर्डिंग।
2: फिल्म लाइन में आने से पहले मैं बता दूं श्रोताओं को कि मैं जबलपुर का रहने वाला

0: और जबलपुर में मैं मॉडल हाई स्कूल में पढ़ता था, तो हमारे एमपी के पूरे स्कूलों का कंपटीशन था म्यूजिक, तो उसमें मैं एक ही गाने में ड्रम्स बजा रहा था और एक कोंगा पर होता है वो बजा रहा था, और उसमें जज आए थे श्री सपन जगमोहन जी, तो उन्होंने मुझको वहाँ पे देखा, देखा कि एक ही गाने में एक दो इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है, कभी टर्न वो चेयर होती थी रिवॉल्विंग चेयर, उसमें पलट के ड्रम्स बजा रहा हूँ, फिर टीचर बेचारे मेरे स्टिक लिए खड़े रहते थे, वो स्टिक पकड़ाते फिर मैं ऐसा सब चेंज होता था। तो मेरे को जगमोहन अंकल ने बुलाया, बोला कि आर यू प्रोफेशनल, आई सेड नो मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, मैं तो स्कूल का स्टूडेंट हूँ, बस स्कूल की तरफ से आया हुआ।
1: क्या उम्र रही होगी?
0: आई वॉज आई थिंक 13 साल का हुआ मैं। तो बाद में जब सपन अंकल से भी मुलाकात हुई तो उन्होंने बोला तुम बॉम्बे आना चाहोगे, तो मैं ऐसा सब बोलते हैं बट कोई बुलाता नहीं है, बोले नहीं एक शर्त पे तुम जब फर्स्ट क्लास फर्स्ट आओगे उसके बाद तुम बॉम्बे में आ जाना, मैं तुमको रखूंगा अपने साथ। तो अब उन्होंने एक जो थी एक लालच तो दे दी थी बॉम्बे की, और मुझको अपने सपने आने लगे बॉम्बे के कम उम्र में ही, तो मुंबई के मुझको समय सपने आने लगे, और मैं भी सोचने लगा कि क्या ऐसा हो सकता है, क्या वो वाकई में मुझको यहाँ बुलाएंगे। और मैं मेहनत पढ़ाई में मैंने चालू कर दी, और वो दिन आ गया जब मैंने 11th का एग्जाम दिया, तो मैं सीधा बॉम्बे आया, वाकई मैं रिजल्ट के लिए वेट नहीं किया, मैंने एग्जाम्स दिए और आ गए। मेरे को जब आया तो मैं यहाँ अंकल के पास आया, तो बोले अरे तुम तो सचमुच में आ गए, तो मैं कहा आपने बोला था इसलिए आ गया मैं।
1: रिजल्ट के बारे में नहीं पूछा आपसे?
0: पूछा उन्होंने कि रिजल्ट, मैं कहा रिजल्ट तो अभी नहीं, मैं एग्जाम दे के आया हूँ, तो 2 महीने अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो फिर चला जाऊंगा। तो बोले अच्छा, फिर उन्होंने काफी समझाया, और इधर के हिसाब से ट्रेनिंग फिल्म इंडस्ट्री के हिसाब से ट्रेनिंग वगैरह चालू हुई। बहुत स्ट्रगल किया मैंने, इतनी स्ट्रगल की है इस लाइन में, जो आज मेरे सीनियर म्यूजिशियन है जो आज मेरे साथ बजाते हैं एज ए म्यूजिशियन, वो हमेशा उनकी हर किसी की मैंने दुआएं लेके और आशीर्वाद लेके इस लाइन में कदम रखा।
1: पहली फिल्म कौन सी मिली आपको?
0: सबसे पहली फिल्म मैंने की एक कन्यादान, जो सुधाकर बोकाडे जी ने फर्स्ट ब्रेक दिया मुझको, और जैसा कि हर इंटरव्यू में मैं बोलता हूँ एक आदमी का नाम इसमें हमेशा लेता हूँ जिसने मेरे को ये फिल्म दिलाई थी, वो थे जैकी श्रॉफ। फिर सुधाकर बोकाडे जी आए एंड सिटिंग की, और एक ही दिन की सिटिंग में उन्होंने कुछ 32 सॉन्ग्स निकाले मेरे से, उसमें से फिर हमने सेलेक्ट किए, तब जाकर उनकी लगातार मैं तीन फिल्म उनकी कर चुका हूँ, अभी चौथी फिर उनकी लॉन्च होने वाली। सेकंड फिल्म थी फिल्म आओ प्यार करें, रिलीज पहले वो हो गई, तो उसका गाना था बहुत पॉपुलर हुआ था हाथों में आ गया जो कल रुमाल आपका, ये काफी हिट हुआ उस, बट एक और गाना था चांद से पर्दा कीजिए कहीं चुरा ना ले चेहरे का नूर, और क्योंकि एक गाना और था जिसमें पूरी पोएट्री थी क्यों फूल खिलते हैं, स्पेशली वो गाना इसलिए अच्छा था लगा मुझको क्योंकि बहुत अच्छा लिखा था श्याम राज जी ने और गाया था इसको कुमार शानू और विजेता ने।
1: आपकी बहुत सारे जो गीत उनमें विजेता जी का बहुत नाम आया, और आपकी वो जीवन संगिनी है, और ये माना जाता है कि हर सफल आदमी के पीछे एक स्त्री का भी हाथ होता है, ऐसी जीवन संगिनी पा करके आपको अपने जीवन में क्या बदलाव, रचनात्मक बदलाव महसूस हुआ?
0: विजेता का जैसे आपको बताऊं मैं कि विजेता से शादी करने के बाद मेरा मेरी लाइफ पूरी चेंज हो गई, मेरा करियर चेंज हो गया, और कई लोग उससे इस मामले में चिढ़ते भी हैं कि इसने जो है इसको चेंज कर दिया, अच्छा था म्यूजिशियन था हमारे साथ काम करता था अब म्यूजिक डायरेक्टर बन गया। तो म्यूजिक डायरेक्टर बनाने में उसका हाथ नहीं है, लेकिन मेरे को चार्जअप करने के लिए कि तुम जिंदगी भर म्यूजिशियन बन के क्या करोगे। और जब अच्छा मेरा क्या था कि मैं गाने आपको बताऊं, मैं एज ऑफ व्हेन आई वाज जस्ट 10 years old और मैंने 20 सूत्री कार्यक्रम चले थे तब गाना बनाया था मैंने इंदिरा जी के लिए जबलपुर में, तो मेरे को एक था कंपोजिशन का एक शुरू से शौक था। फिर बॉम्बे आके मैं 79-80 से मैं गाने बना के रखता जा रहा था, मेरे पास स्टॉक में कम से कम 2000 गाने थे उस समय,
1: अपना एक बैंक
0: बना के रखता। मेरी मम्मी पूछती थी तू बुला किसी को सुनाता तो है नहीं, तू बनाता ही रहता ऐसा क्यों, मैं कहा अभी नहीं जब होगा तब सुनाऊंगा मैं। तो ये ऐसा होता था शादी के पहले, माँ मेरे को काफी वो करती थी
1: कंट्रोल करती थी,
0: शादी के बाद विजेता आ गई तो विजेता ने बोला कि ना, तो फिर मैंने फिर डिसाइड किया कि क्योंकि मैंने सोचा था कि जब मैं म्यूजिक डायरेक्टर बनूंगा फिर मैं एज ए म्यूजिशियन कहीं पे भी काम नहीं करूंगा। बड़े भाई हैं उनने भी काफी मुझको इसमें सपोर्ट किया, मेरे स्ट्रगल पीरियड में जब मैं बॉम्बे आया तो वो मेरे साथ थे यहाँ पे, और आज भी उनका आशीर्वाद है मेरे साथ, बट वो जबलपुर में है मैं बॉम्बे में हूँ। आज भी मैं जैसे बनारस अभी गया था मैं बीच में, तो बनारस में इतना प्यार वहाँ पे एक इंटीरियर में इतना प्यार मिलता है, जब उनको पता चलता है तो कि फिल्म लाइन से जुड़े हैं गाना सुनते हैं लोग, तो इतना लोग इज्जत और इतना मान सम्मान देते हैं और उससे ज्यादा प्यार देते हैं।
1: आदेश जी आपकी यादों में कहीं बचपन के किसी उम्र के हिस्से में रेडियो किसी रूप में जुड़ा रहा?

0: जबलपुर में था तो एक शाम को 6 बजे प्रोग्राम होता था युववाणी का। वो युववाणी में होता था कि एमपी के सब कलाकारों को मौका मिलता था, फिर उसमें मैंने भी गाया था। लेकिन जब तक गाया नहीं था तो मैं शाम को 6 बजे वो बैंड वाला रेडियो होता था, वो धागा रखता था उसमें, और मेरे मोहल्ले में भाई के बगीचे में सबसे बड़ा रेडियो मेरे घर में ही था। सब आ जाते थे सुनने के लिए, फिर मैं उसको लाउड करके तमाम उसमें एम्पलीफायर वगैरह लगा के मैंने और स्पीकर एक्स्ट्रा लगा के लगाता था। इंटीरियर में आज भी हमारे जो देहाती खुशबू है जिसको बोलते हैं, जो गाँव में, आज भी रेडियो को ही ज्यादा महत्व देते हैं और आज भी विविध भारती ही सुनते हैं, क्योंकि मैं हमेशा चाहता हूँ कि मैं अपने चाहने वालों से बात करूँ और उसका जरिया है विविध भारती का ये प्रोग्राम।
1: मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अपने बचपन के और कॉलेज के जमाने में वो कौन से गीत खास उससे आप गुनगुनाया करते थे?
0: मेरा एक फेवरेट गाना था, मैं बहुत गाता था वो, कांटों से खींच के आंचल।
1: अच्छा, क्या वजह थी इसकी?
0: ये उसका अरेंजमेंट बहुत अच्छा लगता था मुझको, और फिर उसके बाद मेरे को मदन मोहन जी के गाने बहुत अच्छे लगते थे। मुझको सबसे ज्यादा पसंद थे किशोर दा।
1: अच्छा,
0: किशोर दा के गाने बहुत गाता था मैं, स्टेज पे भी गाता था और फिर रफी साहब के गाता था। किशोर दा के मैं एक्सप्रेशन का बहुत, वो जो एक उनमें कला थी, जिस आर्टिस्ट के लिए गाते थे ऐसा लगता था वो वही आर्टिस्ट गा रहा है।
1: मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि संगीत के सुरों के लिए वो जो एक लगाव होता है वो आपके अंदर पहले से था, और घर में ऐसा कोई माहौल था जिससे आपको और ज्यादा प्रेरणा मिली?
0: ये क्या था कि बचपन से ही घर में ऐसा था कि म्यूजिकल माहौल था मेरे, बट शौकिया तौर पे था। और उसके बाद फिर वहाँ जब जबलपुर से यहाँ आया तो यहाँ पे मैंने जो गुणी जनों के साथ जो काम करने का मुझको मौका मिला, मैं सोचता हूँ मैं बहुत लकी था। बिगनी में साल दो साल भर पंचम दा के साथ भी था मैं, और मैंने काम किया शंकर जी के साथ भी एज ए म्यूजिशियन, ओपन डेयर साहब के साथ, सलील दा के साथ भी मैंने ये मौका मिला मुझको। और उसके बाद भी मैंने 1982 में ज्वाइन किया था अपना श्री लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी को, जो कि लक्ष्मीकांत जी और प्यारेलाल जी का जो काम करने का जो एक तरीका, एक जो ढंग, वो एक ऐसा लगता था कि ये स्कूल है, और वहाँ इतनी सारी चीजें सीखने को मिली, और मैं सोचता हूँ कि उसी के कारण आज वही प्लस पॉइंट है मेरे लिए। और आज लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी जो जितनी लंबी इनिंग उन लोग ने खेली है और आज भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं सोचता हूँ कि आज के जितने भी नए संगीतकार हैं वो कोई भी सोच भी नहीं सकता उनके बारे में। जब मैंने ज्वाइन किया था उनको तो उत्सव की रिकॉर्डिंग, बेला महका रे महका,
1: बहुत खूबसूरत।
0: फिर बैकग्राउंड म्यूजिक था उत्सव का, उसमें मैं जब बजा रहा था तो उसमें लयकारी थी पूरी, और जो प्यारे जी ने किया था अरेंजमेंट उसमें 9 मात्रा 6 मात्रा ये सब कुछ आवर्तनों के बाद आके एक साथ सम आता था, और मुझको जो सौंपा गया था वो था सम देना। तो अगर मैं किसी कोई आड़े को सुन रहा हूँ, अगर कान मैंने ध्यान दिया तो मेरा सम गया। और फिर पंचम दा की जो मैं मजा आया, उनके एक रिदम का एक अलग था क्लियरिटी, उनकी हर रिकॉर्डिंग में क्लीननेस बहुत, कि अगर एक खंजरी टैम्बरिन बज रही है तो एक उसका कुछ अगर बीट रखी उन्होंने तो उसकी एक अहमियत है उस बीट की, है दिखने में छोटा इंस्ट्रूमेंट है बट वो आपको रजिस्टर हो जाएगा, कभी बोल ना बोल के साथ वो आएगा ही आएगा। जैसे ट्रायंगल एक था, ट्रायंगल का यूज बहुत किया पंचम दा ने अपना हम किसी से कम नहीं के गानों में भी किया था, और पहाड़ी तो खैर बहुत उन्होंने यूज किया पहाड़ी राग में।
1: आपके म्यूजिक की जो विशेषता क्या है जिसमें आदेश श्रीवास्तव एक मौलिक संगीतकार के रूप में नजर आता है?
0: देखिए,
2: एवरी ग्रेट जर्नी बिगिंस विद पीपल कमिंग टुगेदर टू लिसन, टू लर्न, टू इमेजिन व्हाट्स पॉसिबल। दिस इज द ब्रिक्स 2026, अ मोमेंट वेयर लीडर्स, इनोवेटर्स, बिजनेसेस एंड कम्युनिटीज फ्रॉम द ब्रिक्स नेशंस कम टुगेदर टू स्ट्रेंथन पार्टनरशिप्स। इंडिया वेलकम्स द ब्रिक्स कंट्रीज as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
3: सर्वांसाठी सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जींचा संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: आतापर्यंत या योजनेत 9,50,00,000 अधिक लाभार्थी सामील झाले आहेत। तुम्ही देखील 18 ते 40 या वयोगटातील असाल तर मासिक अटल पेन्शन सहित योजनेच्या अन्य 3 हमी लाभांबद्दल माहिती मिळवण्यासाठी तुमच्या बँक शाखेशी संपर्क साधा।
5: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible.

0: इस अमर गीत के गायक
1: जी
0: असम के डॉक्टर भूपेन हजारिका, बल्कि मैं कहूंगी असम ही क्यों, पूरे भारत वर्ष के हमारे डॉक्टर भूपेन हजारिका, पूर्वोत्तर के संगीत को पूरे भारत वर्ष में प्रतिष्ठित करने और लोकप्रिय करने का महत्वपूर्ण दायित्व डॉक्टर भूपेन हजारिका ने संभाला था।
1: जी, इस महान कलाकार का जन्म 8 सितंबर 1926 को हुआ था असम के सदियां ग्राम में।
0: हाँ।
1: और हम उन्हें इसी उपलक्ष में आज याद कर रहे हैं। मूलतः इन्होंने असमी भाषा में बहुत से गीत तैयार किए और ये बाद में अनुवादित हुए बांग्ला और हिंदी में।
0: वैसे कई भाषाओं में उनका रचना संसार अनुदित हुआ, लेकिन बांग्ला में बहुत अधिक पाया जाता है और बांग्ला के बहुत अच्छे जानकार थे डॉक्टर भूपेन हजारिका।
1: और इनके गीतों में विश्व बंधुत्व और एकात्मिकता की बात हमेशा ये करते रहे।
0: जी हाँ, संगीत तो वैसे सार्वभौमिक सार्वकालिक होता है और जब ऐसे सुदूर पूर्वोत्तर के अंचल से आई हुई खुशबू हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में महकने लगी, तब हमारा हिंदी का जो सिने संसार है वो और अधिक समृद्ध हुआ। डॉक्टर भूपेन हजारिका की एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिकॉर्डिंग हमारे पास है जिसे हम अपने श्रोताओं को सुनवाएंगे। वैसे इस रिकॉर्डिंग की एक खासियत है, इसमें भूपेन जी ने बहुत सारी बातें की लेकिन हम उसका

0: चूंकि कुछ अंश अपने श्रोताओं को सुनवाएंगे, उन्होंने उसमें संगीत के, खासतौर पर लोक संगीत के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं। और ये जो रिकॉर्डिंग है, इसके लिए हम हमेशा याद करते हैं छाया गांगुली जी को, जिन्होंने डॉक्टर भूपेन हजारिका जी की ये इम्पोर्टेंट रिकॉर्डिंग हमें दी है, विविध भारती के लिए की है। तो उन्हें भी धन्यवाद देते हैं। और आइए सुनते हैं इस अमर रिकॉर्डिंग को। ये हमारे पास एक बहुत बड़ी धरोहर है। डॉक्टर भूपेन हजारिका जी से बातचीत की है राम सिंह पवार ने।
1: भूपेन जी, अपने उभरते बाल्यकाली के बारे में कुछ कहेंगे?
2: मैं एक साधारण सांस्कृतिक मजदूर हूँ और हमारा सदिया गांव जो है उत्तर पूर्व भारत सीमांत में है
1: जी।
2: अभी अरुणाचल और आसाम के बॉर्डर में है
1: जी।
2: तो वहाँ, यहाँ नदी, वहाँ पहाड़, सबके बीच हम कूद के खेल के बड़े हुए थे। हमारे माता जी बहुत अच्छा गाते थे, वो बंगाली रविंद्र संगीत गाती थी
1: जी
2: माँ। पिताजी वैष्णव संगीत गाते थे, स्कूल टीचर थे
1: जी।
2: पिताजी स्कूल टीचर थे
1: जी।
2: तो वातावरण संगीत का था घर में, तो इसलिए यहाँ पारिपार्श्विक जितना छंद है, जितना सूर है, वो तो आया उसी के,
1: ये तो विरासत में
2: जी। हाँ, अभी भी याद है माँ गाती थी लले बाई, हमारे मोए ना हुआ

0: মোর ময়নাই বুটলি খাব, আমারে ময়না খুব। श्री कृष्णा के बारे में जसोदा कह रहे हैं कि भाई सो जाओ ओ कृष्णा, श्रीगाल आके तुम्हारा कान ली जाएगा, नहीं तो सो जाओ, जल्दी सो जाओ। गोरे काने खुआया खे सकल शिशुर कान खाई खाई ओ आखय तुम्हार पाखे। ये सब ट्यून के ऊपर उसके बाद ओ बिहुरन बिरिना ओ आयता केर मणि थुरिया, ओ बिहुरन बिरिना ओ आयता केर मणि थुरिया। ये सब छंद में ब्रह्मपुत्र के किनारे खेल कूद के बड़े हुए।
1: इस बाल्यकाल के दौरान आपके शिक्षा संस्कार, आपकी पढ़ाई लिखाई के बारे में?
0: कैलकटा यूनिवर्सिटी के अंदर तेजपुर गवर्नमेंट हाई स्कूल से मैट्रिक पास किया 14 साल उम्र में। अच्छा, इंटरमीडिएट गुवाहाटी के कॉटन कॉलेज में किए। उसके बाद लड़ाई आया, महायुद्ध आया, अंधेरा हो गया आसाम, तो हम आके कलकत्ता में चले आए थे। उसके बाद बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आए थे। बीए एमए पॉलिटिकल साइंस में एमए किए थे हम
1: जी
0: बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से 1946 में। उसके बाद हम जाके थोड़ा राजनीति पढ़ाया एक छोटा कॉलेज में गुवाहाटी में। उसके बाद ऑल इंडिया रेडियो ज्वाइन किया।
1: अच्छा।
0: ऑल इंडिया रेडियो ज्वाइन करके पिक्स हो गए थे, शिलोंग गुवाहाटी स्टेशन ओपन किया हम लोगों ने। उसके बाद दिल्ली आए थे। उसके बाद भारत सरकार हमें एक मास कम्युनिकेशन में मास्टर्स डिग्री करने के लिए न्यूयॉर्क भेजा
1: जी,
0: कोलंबिया विश्वविद्यालय।
1: मास कम्युनिकेशन में पीएचडी करने तक और इस बीच पढ़ाई के दौरान निश्चय आप संगीत से तो जुड़े रहे।
0: हाँ।
1: तो क्या हम आपसे आपका अपना क्रिएशन जनगीत थोड़ा सा हमें गुनगुना?
0: मैं सुनाना चाहता हूँ मेरा बहुत मशहूर दोला, दोला वाला
1: जी।
0: उसमें हम सोशल कॉन्शियसनेस देना चाहते थे
1: जी,
0: दायबद्धता जो है एक सॉन्ग राइटर का वही देना चाहते थे हम। दोला प्रतीक है शोषण के। दोला राजा महाराजा लोग जाते हैं, तो यहाँ भी जब क्रिएट करने लगे हम
1: जी,
0: आधुनिक गीत बोलने समय हमें दुख होता है क्योंकि आजकल आधुनिक गाना सुन के कभी डर जाता हूँ। दोला के बारे में कहना चाहता हूँ कि हमारा इसमें

0: जिसको सब मिला, प्राचुर्य और अभाव का जो संघात होता है उसी को हम गतिशील करके सतर्क कर देना चाहते थे।
1: बहुत
0: दोला या दोला उदोला।

0: भूपेन जी, स्वतंत्रता के पहले कुछ अपने जीवन की अनुभूतियाँ।
1: गांधी जी जी हमारा आसाम में कभी कभी आते थे जब, तब मेरे पिताजी का नाम है नीलकंठ हजारिका, तो गांधी जी आके कहते कि वो हजारिका का दो बच्चा है, भूपेन और बहन का नाम था सुदक्षिणा, ये दोनों का भजन सुनना चाहते हैं। तो पहले हमें आशीर्वाद मिला था महात्मा गांधी दोनों, वो क्या गाए थे वो भी एक ब्रजावली भाषा में, आसाम के पुराना असमिया में थे।

0: आजादी से पहले स्वतंत्रता के लिए चहुमुखी प्रयास किए जा रहे थे। गीत, संगीत, अभिनय, फिल्म और रंगमंच ने भी इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट भूमिका निभाई है। और आप भी उस समय इप्टा इंडियन पीपल्स थिएटर ग्रुप से जुड़े हुए थे, तो उस समय के कुछ संस्मरण और उस दिशा में आपके प्रयास।
1: अमेरिका में हम जब डॉक्टरेट कर रहे थे
0: जी,
1: तब सौभाग्य हुआ था पॉल रॉबसन से मिलने का। उसके बाद उनके पीपल सॉन्ग जो थे
0: जी,
1: सारा दुनिया जैसा ओल्ड मैन रिवर, यू डोंट से नथिंग, यू जस्ट कीप रोलिंग अलोंग, ये सब जब सुना वहाँ, सारे चार साल के बाद जब ब्रह्मपुत्र के किनारे फिर चले आए, तब इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन बहुत बड़ा काम कर रहे थे, यूनिफिकेशन ऑफ कल्चर। उसमें कैफी आजमी साहब थे, सलील चौधरी थे गाने में, हम लोग क्रिएट कर रहे थे, भूपेन हजारिका आसाम में, सुरेंद्र कौर पंजाब में, जसवंत ठाकुर बड़ौदा में, इसके बाद थिएटर में शंभु मित्र, उत्पल दत्त, बलराज सहनी यहाँ बॉम्बे में। तो उसमें हम लोग एक नया कंटेंट देना चाहते थे, लोक संगीत वगैरह को फिर उद्धार करके, पुनरुद्धार करके उसको ठीक से फिर नया क्रिएशन में लोक संगीत के ऊपर रचनाएं करके हम लोग स्टेज, फिल्म, माइक्रोफोन, मोशन पिक्चर, स्टेज,
0: तो आजादी के आंदोलन में सबके द्वारा आपने
1: वो तो स्वाधीनता के बाद इप्टा ज्यादा ये हुआ था
0: जी।
1: और हम आके ज्वाइन किए थे अमेरिका में, अमेरिका से लौट के आए थे 52 साल में, आफ्टर माय पीएचडी इन मास कम्युनिकेशन। तो यहाँ आके जब गाना लिखना शुरू किया, चाय बगान है हमारा असम में
0: जी, हाँ,
1: हाईएस्ट बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इन द होल वर्ल्ड इज असम। तो वहाँ उन लोगों के बात कह के कि टू लिप्स एंड ए बड, आदमी आज टू लिप्स और एक बड हो गया, और कौन इनको डिस्ट्रॉय करने आए हैं, ऐसा एक रिवोल्यूशनरी नहीं है लेकिन सोशल कंटेंट स्ट्रांग था। तो उसी वो एक एटी कोली दुटी पाट रतनपुर बागीसात लह पहिया हाते रे कोने नो सिंगीले ओ कोने नो सिंगीले, इसे को हमारा गुलजार भाई,
0: अच्छा,
1: मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और हमें समझते भी है
0: जी,
1: तो हिंदी में रूपांतर करके ये प्रचार कर रहे हैं अभी भी। एक कली दो पत्तियां, और गुलजार भाई खुद प्रेजेंट किए हैं और कमेंट्री देके।
2: एक तो ये कि भूपेंद्र के गीतों में वहां के आवाम की तस्वीर नजर आती है, वो तस्वीर

मजमूई भी है, इनफरादी भी, यानी कलेक्टिव भी है, इंडिविजुअल भी। एक पूरा लैंडस्केप है और उसमें एक अकेला रिप्रेजेंटेटिव मजदूर, नुमाइंदा मजदूर, चाहे वो माहीगीर हो, रमैया मछेरा और उसकी रमणी हो, या पालकी उठाने वाला अपने साथियों के साथ डोला उठाया जा रहा हो, या रतनपुर के बागीचे में चाय की पत्तियां तोड़ती हुई लक्ष्मी और उसका जुगनू। क्या ऐसा नहीं लगता कि भूपेन हजारिका सिर्फ कविता नहीं गा रहे, आसाम का कल्चर गुनगुना रहे हैं?

0: भूपेन जी, विद्या अध्ययन के दौरान और वैसे भी आप तो सारी दुनिया घूमे हैं, तो विश्व एकात्मता अथवा यानी विश्व बंधुत्व के बारे में भी आपने निश्चय ही कुछ सोचा और लिखा होगा।
1: जी, हम जो जब दुनिया देखे थे तो ऐसे देखे थे कि ड्रम मुंबसा से लेकर बेल्जियम कांगो तक
0: जी,
1: अफ्रीकन लोग कैसे ड्रम को यूज करते हैं, ये अध्ययन करने के लिए भी हम गए थे। इसलिए सारा दुनिया घूम के जब देखा कि ऐसे जैसे मिसिसिपी में सुना, डोंट क्राई माय मेलंकोली बेब, डोंट क्राई, मत रोना मेरा बेटा मत रोना। और इसके बाद ब्रह्मपुत्र का में आके सुना, ओ बिहुरेनो बिरी ना ओ आयता बिहुरेनो बिरी ना पार। सो आई वांटेड टू बी ऑलवेज एन इटर्नल ट्रैवलर, तो इसलिए एक गाना लिखा था, आमी एक जाजाबर, আমি এক যাযাবর, পৃথিবী আমাকে আপন করেছে, ভুলেছি নিজের ঘর, ঘরই ভুল গে, সারা দুনিয়া হামারা ঘর হো গয়া। তো গুলজার জি নে বহুত আচ্ছি তরহ সে ইসকো রূপান্তর কিয়ে থে, যাযাবর ট্রান্সলেশন কিয়ে হ্যায় আওয়ারা
0: জি,
1: হ্যাঁ আওয়ারা।

0: संगीतकार उत्तम सिंह, एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गडले
0: जो संगीत की साधना में बीता, एक विराट जीवन की कहानी।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
2: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती है।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
3: चिट्ठी ना कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से बड़े सपने देखने तथा लेखा, वित्त, कानून और परामर्श से जुड़ी ऐसी संस्थाओं के निर्माण की अपील की है जो वैश्विक स्तर की हों। वे कल दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारतीय मूल के कई लोग दुनिया की शीर्ष कंपनियों का नेतृत्व कर रहे हैं।
1: भारत की ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म्स क्यों नहीं हो सकती? हमारी अकाउंटिंग फर्म, हमारी लीगल फर्म, हमारी फाइनेंशियल फर्म, ये सब ग्लोबल लीडर्स क्यों नहीं बन सकती? हम गर्व से कहते हैं कि आज भारतीय दुनिया की टॉप कंपनीज को लीड कर रहे हैं। अगर भारतीय दुनिया की टॉप कंपनियों को लीड कर रहे हैं तो भारतीयों की बनाई कंपनियां दुनिया को क्यों लीड न करें?
0: श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितता के बावजूद भारत की तिमाही वृद्धि दर 7.8% रही है, जो इसकी बढ़ती आर्थिक क्षमताओं को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि भारत ने नीतिगत मामलों में गतिरोध से गतिशीलता तक का लंबा सफर तय किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आज सबसे तेजी से आर्थिक प्रगति करता हुआ देश है।
1: दुनिया भारत को फ्रेजाइल फाइव बता रही थी, आज दुनिया भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनते हुए देख रही। 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है। और इसी बीच जापानीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की रेटिंग अपग्रेड कर दी है।
0: गृहमंत्री अमित शाह आज गोवा में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। वे गृह मंत्रालय की बैठक का नेतृत्व करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश कार्यालय का उद्घाटन भी करेंगे। गृहमंत्री 3 दिन के दौरे पर कल गोवा पहुंचे। डॉक्टर दिनेश शर्मा को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। वे अवकाश प्राप्त एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी का स्थान ग्रहण करेंगे। डॉक्टर शर्मा फिलहाल उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के सांसद हैं और वे राज्य के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। छत्तीसगढ़ में जगदलपुर की राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की विशेष अदालत ने झीरम घाटी में माओवादी हमले के मामले में सभी 10 आरोपियों को दोषी ठहराया है। अदालत ने आरोपियों को 29 लोगों की हत्या और 15 अन्य की हत्या के प्रयास का दोषी पाया है। इनकी सजा पर अंतिम फैसला 16 सितंबर को होगा। मई 2023

0: 2013 में झीरम घाटी में कांग्रेस नेताओं के काफिले पर हमला किया गया था। इसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं सहित 29 लोग मारे गए थे। नेपाल में बाढ़ में मृतकों की संख्या 1344 हो गई है। 590 विदेशी नागरिकों सहित लगभग 5000 लोग अभी भी लापता हैं। अब तक 13100 से अधिक लोगों को बचाया जा चुका है। मृतकों की पहचान के लिए डीएनए परीक्षण का सहारा भी लिया जा रहा है। चीन के चियांगशी प्रांत में तेज बारिश के बाद भूस्खलन में 2 लोगों की मौत हो गई है। तूफान सॉडेल से कई दिनों की मूसलाधार बारिश के कारण ये आपदा हुई है। मिस्र की एक अदालत ने टीवी एंकर सारा खलीफा समेत 12 लोगों को ड्रग्स तस्करी के मामले में मौत की सजा सुनाई है। अदालत ने माना कि आरोपी एक आपराधिक गिरोह चला रहे थे जो मादक पदार्थों के निर्माण और बिक्री के लिए कच्चा माल आयात करता था। आरोपियों के पास अवैध हथियार होने की भी बात सामने आई है। सारा खलीफा ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इनकार किया है। नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को आयोजित होने वाली ब्रिक्स शिखर सम्मेलन सहित आई ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का भी आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में वित्त मंत्री और 500 से अधिक संस्थागत निवेशक तथा उद्योगपति शामिल होंगे। आई ब्रिक्स का उद्देश्य ब्रिक्स के 21 सदस्य देशों और साझेदार देशों में संप्रभु पूंजी का उपयोग, विश्वसनीय बुनियादी ढांचे, ऊर्जा तथा डिजिटल क्षमता परियोजनाओं के लिए कार्य करना है। भारत की अध्यक्षता में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन दिल्ली के भारत मंडपम में संपन्न होगा। सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी तीसरी बार चाइना मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंच गए हैं। विश्व की 5वें नंबर की जोड़ी ने सेमीफाइनल में मलेशिया के नूर मोहम्मद अजरियन अयूब और टेन वी क्योंग को हराया। उधर दुबई में 2020 महिला क्रिकेट एशिया कप के ग्रुप ए के मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया है। पाकिस्तान की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 55 रन बनाए थे। जवाब में भारतीय टीम ने 8 ओवर और 4 गेंद में ये लक्ष्य हासिल कर लिया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये विविध भारती है देश की सुरीली धड़कन। यादों की महफिल इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज यादों की महफिल सजी है राकेश रोशन के सदाबहार गीतों की माला से। आज राकेश रोशन का जन्मदिन है, उनको विविध भारती परिवार की ओर से, आपकी तरफ से, हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। कार्यक्रम का पहला गीत है लता मंगेशकर, किशोर कुमार, बिंदिया गोस्वामी और राकेश रोशन की आवाजों में। गीतकार हैं गुलजार, धुन है राजेश रोशन की, फिल्म का नाम है खट्टा मीठा।
2: तुमसे मिला था प्यार, कुछ अच्छे नसीब थे,

साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत है आशा भोसले, कार्यक्रम का अगला गीत है किशोर कुमार और अलका याग्निक की आवाजों में। गीत रचना इंदिवर की, संगीत रचना राजेश रोशन की, फिल्म का नाम है काम चोर।

साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत आप सुनेंगे आशा भोसले की आवाज में। गीत लिखा है इंदिवर ने, संगीत है राजेश रोशन का, फिल्म का नाम है खून भरी मांग।

0: टेलीविजन के जाने माने नाम जिनके लिए अभिनय एक काम नहीं समर्पण है।
1: जब मैं तैयारी करना शुरू करता हूँ वहीं से मेरे अंदर एक नया इंसान जन्म लेता है, वो एक एक्टर विनीत रैना है। जैसे ही वो मेकअप अपने ऊपर चढ़ाता है तो वो किरदार बन जाता है जो आज पूरा दिन उसको प्ले करना है। उसका विनीत रैना से कोई लेना देना नहीं है।
0: कभी चॉकलेटी हीरो, कभी खूंखार विलेन, तो कभी परम दिव्य साईं।
1: साईं बाबा तक पहुंचना मेरे ख्याल से किसी के बस में नहीं है।
0: विविध भारती पर आ रहे हैं अपने अभिनय और जीवन की कहानी लेकर जाने माने अभिनेता विनीत रैना। जरूर सुनिए सेल्यूलॉइड के सितारे मंगलवार 8 सितंबर शाम 4 बजे और 9 सितंबर सुबह 10 बजे देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: साथियों लीजिए सुनिए लता मंगेशकर और मोहम्मद अजीज को। गीतकार हैं जावेद अख्तर, संगीतकार हैं राजेश रोशन। फिल्म का नाम है खेल।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: साथियों, कार्यक्रम यादों की महफिल में अगला गीत सुनेंगे हम नितिन मुकेश और लता मंगेशकर की आवाजों में। इस गीत को लिखा है इंदिवर ने, संगीत है राजेश रोशन का, फिल्म का नाम है किंग अंकल।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा
1: जी।
0: तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम का अगला गीत आप सुनेंगे येसुदास और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में। गीत रचना राजेंद्र वर्मा की, संगीतकार है विजय बटालवीकर, फिल्म का नाम है बहू की आवाज।

0: संगीतकार उत्तम सिंह, एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गडले
0: जो संगीत की साधना में बीता, एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी ना कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए आशा भोसले किशोर कुमार की आवाजों में। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं राहुल देव बर्मन, फिल्म का नाम है ढोंगी।

यादों की महफिल कार्यक्रम में अगला गीत है मोहम्मद अजीज और साधना सरगम की आवाजों में। गीत के बोल हैं इंदीवर के, तर्ज है राजेश रोशन की, फिल्म का नाम है खुदगर्ज।

0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल लगवे।
1: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
1: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से,
1: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
2: साथियों, यादों की महफिल कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

0: ठाकरे पक्षातर्फे मराठवाड्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये आजपासून जनआंदोलन सुरू करण्यात आलं आहे. आगामी 17 सप्टेंबर रोजी असलेल्या हैदराबाद मुक्तीसंग्राम दिनाच्या पार्श्वभूमीवर हे आंदोलन होत आहे. त्यानुसार छत्रपती संभाजीनगर इथं आज सकाळी केम्ब्रिज चौक ते नगर नाका प्रस्तावित उड्डाणपुलाच्या रखडलेल्या कामांकडे सरकारचं लक्ष वेधण्यासाठी पक्षातर्फे गाजराचा हार घालून प्रतिकात्मक आंदोलन करण्यात आलं. तसंच नारळ फोडून आणि तत्कालीन संबंधित कार्यक्रमाच्या अनावरण पत्रिकेला गाजराचा हार घालून निषेध व्यक्त करण्यात आला. यावेळी विधान परिषद माजी विरोधी पक्षनेते आमदार अंबादास दानवे यांनी युती सरकारवर टीका केली. दरम्यान या अनुषंगानं येत्या 17 सप्टेंबर रोजी पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली छत्रपती संभाजीनगर इथं सरकारविरोधात आंदोलन करण्यात येणार असल्याची माहिती आमदार कैलास पाटील यांनी धाराशिव इथं आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली. धाराशिव इथं परवा 8 सप्टेंबरला पक्षातर्फे एक दिवसीय धरणे आंदोलन करण्यात येणार असल्याचंही ते म्हणाले. मराठवाड्यात दुष्काळ जाहीर करणं, कृष्णा मराठवाडा जलसिंचन प्रकल्प, धाराशिवचा विकास आणि स्वतंत्र विद्यापीठ आदी मुद्दे यावेळी पाटील यांनी उपस्थित केले. चायना मास्टर्स बॅडमिंटन स्पर्धेच्या अंतिम फेरीचा सामना भारतीय प्रमाण वेळेनुसार आज दुपारी 1:50 सुरू होत आहे. या अंतिम सामन्यात भारताच्या सात्विक साईराज रँकी रेड्डी आणि चिराग शेट्टी यांची लढत चीनच्या जेथिंग आणि रेन शियांग यू या जोडीशी होणार आहे. हवामान. येत्या 2 दिवसात कोकणात बहुतांश ठिकाणी, विदर्भात काही ठिकाणी तर मध्य महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यात तुरळक ठिकाणी हलक्या स्वरूपाचा पाऊस पडण्याची शक्यता हवामान विभागानं वर्तवली आहे. याबरोबरच हे बातमीपत्र संपलं. आमचं यानंतरचं बातमीपत्र 6:10. नमस्कार.
1: नहीं पाते वही बात गीत बड़ी आसानी से हमारे दिल की आवाज बनकर कह देते हैं. शायद इसीलिए गाने सुनते हुए हमें सिर्फ संगीत हम सिर्फ संगीत नहीं सुनते बल्कि अपना ही कोई बीता हुआ पल, कोई रिश्ता और अपने मन की अनकही कहानी सुनते हैं. गीत ख़त्म हो जाता है लेकिन उसका एहसास देर तक दिल में गुनगुनाता रहता है. बिल्कुल सच बात है ये. मन में कुछ चीज़ें समय बीतने के साथ खुद ब खुद स्पष्ट हो जाती हैं. ज़िंदगी में खुशी आएगी तो दुख भी आएगा, असुरक्षा आएगी तो डर भी आएगा. सो जो है वो आज इसी पल में है, शोला हो या फिर चमकती बिजुरिया. ज़िंदगी में कुछ ना कुछ हमेशा झेलना पड़ता ही है. तो इन चमकते गीतों के सहारे हम तय करेंगे आज का सुरीला सफ़र. जी हाँ, बिल्कुल. कुछ मुलाकातें उम्र नहीं पूछती, बस दिल में उतर जाती हैं और फिर बरसों बाद भी यादों की खिड़की खोलो तो वही रंगीन शाम, वही हाथ और वही अधूरा सा सफ़र सामने बैठा मिलता है. मन के खाली नगर में किसी की तस्वीर उभरने के खूबसूरत रूहानी एहसास को बयां करती है. ये वो तस्वीर एक ठंडी हवा के झोंके की तरह पूरे वजूद को महका देती है और सालों का खालीपन को रूहानी एहसास से भर देती है. आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, फिल्मों में मुख्य अभिनेता का कार, टैक्सी, ट्रक ड्राइवर का किरदार निभाना भारतीय सिनेमा में काफ़ी लोकप्रिय रहा है. ऐसी फिल्मों में अक्सर एक्शन, इमोशन और सफ़र का बेहतरीन तालमेल देखने को मिलता है. तो ऐसी ही कुछ मशहूर फिल्मों के गीत हमने लिए हैं आज के सुरीला सफ़र के लिए, जिसमें हीरो मुख्य रूप से किसी गाड़ी को चलाने का काम करते हैं. '71 की क्लासिक बॉलीवुड फिल्मों में से एक थी कारवां. धोखे से कराई गई शादी से घर से भागी लड़की सुनीता और बंजारों के दल के साथ ट्रक चलाने वाले मोहन, सफ़र के दौरान दोनों को हुआ एक दूसरे से प्यार और दूसरी तरफ सुनीता की तलाश में उस कारवां के पीछे ओंडे. रोमांचक मोड़, एक्शन और गानों के दरमियान साजिश का पर्दाफाश होता है. खलनायक अपने अंजाम तक पहुंचते हैं और मोहन सुनीता की प्रेम कहानी होती है पूरी। तो बताइए कौन थे मोहन सुनीता और खलनायक, और इस फिल्म के निर्देशक का नाम भी बताएं हमें। तब तक आइए सुनते हैं इस गीत को, यानी कि आइए शुरुआत करते हैं इस गीत के साथ कार्यक्रम की, जिसमें आवाजें हैं मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की, गीतकार हैं मजरू सुल्तानपुरी, संगीतकार हैं

साथियों, अपने विचार, अपनी बातें, अपने पैगाम और संदेश आपने भेज दिए हैं जो हम तक पहुंच गए हैं और लगातार आप भेज रहे हैं, तो उन सारी बातों को, संदेशों को हम इस कार्यक्रम में पढ़ने की पूरी कोशिश करेंगे और सुरीला सफर में आगे बढ़ते जाएंगे। फिल्म का नाम था कारवा। जीतेंद्र, आशा पारेख, रूना ईरानी, मदन पुरी और जूनियर महमूद ने इस फिल्म में भूमिका निभाई थी और निर्देशक थे नासिर हुसैन। हमारे साथियों ने लिखा है कि राजेश खन्ना और देव आनंद के बिना कोई सफर सफर नहीं होता जिंदगी का। एक वक्त था जब जिंदगी बेरंग थी, फिर तुम आए और सब कुछ बदल गया। हम एक दूसरे की बातों में ऐसे खोए कि दुनिया को भूल गए। तुम किसी हसीन ख्वाब जैसी हो और तुम्हें अपना बनाने की चाहत इस दिल में है। तुम्हारे साथ से जिंदगी मुकम्मल लगती है, इसलिए अब हर हाल में मेरा साथ निभाना। तुम एक खूबसूरत लत की तरह हो, चलो आज के इस हसीन पल को पूरी शिद्दत से जी लेते हैं, क्योंकि ये वक्त दोबारा नहीं आने वाला। मन भी अजीब सा मुसाफिर है, कभी खुद में ही सफ़र करता है, कभी खामोश रहकर कह देता है सब कुछ, कभी कहकर भी कुछ नहीं कहता। मुकद्दर आजमाना चाहता हूँ, तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। मेरी कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद और जॉब लगने के बाद मेरे मन का नगर था खाली, सूखी पड़ी थी डाली। मैं बताना चाहूँगा कि मेरे मन के नगर को भरा और सूखी डाली में हरियाली भी आई जब मेरे जीवन में आई मेरी पत्नी, यानी के मेरी घरवाली। साथियों, टैक्सी, कार या बसों से आपने कोई सुहाना सफर किया तो होगा, तो कहाँ कहाँ की सैर की, उन खूबसूरत यादों को, बातों को हमारे साथ बांटिए और लिख दीजिए हमारे FB पेज पर। टैक्सी चोर इस एक्शन थ्रिलर मूवी में मिथुन चक्रवर्ती ने मुख्य भूमिका निभाई थी, पर हम बात करेंगे खुद्दार। इस सुपरहिट फिल्म में महानायक ने एक ईमानदार टैक्सी चालक का रोल प्ले किया था जो अपने उसूलों के लिए लड़ता है। तो बताइए गोविंदा, यानी कि उस महानायक का नाम और इस गीत में कौन सी अभिनेत्री उनके साथ है उसका भी नाम बताएं। और इस गीत में आवाजें हैं किशोर कुमार, लता मंगेशकर की, गीतकार हैं मजरू सुल्तानपुरी, संगीतकार हैं राजेश रोशन।

के लोगों से जितेंद्र उसमें ट्रक चलाते हैं। अगला मैसेज है कि सफर जीवन का हो, किसी मंजिल तक जाने का हो, किसी के दिल तक पहुंचने का हो, या सुरीला सफर विवेक भारती के साथ हो, हम तो हर सफर को एंजॉय करते हैं क्योंकि असली मजा और सुनहरी यादें सफर की होती हैं। मंजिल या मकाम पर पहुंचने के बाद भी वही हमारे जहन में रहती हैं। सबसे लंबी सड़क मार्ग का सफर मेरा कटक से पुणे का था। काफ़ी रोमांचक था। चिल्का झील, घने जंगलों, पहाड़ों से गुजरते हुए पहली रात, विशाखापट्टनम समुद्र किनारे दूसरी रात, और हैदराबाद में गुजरने के बाद सोलापुर होते पुणे पहुँचे। मैं, मेरी पत्नी, बेटा बेटी के संग सफ़र के हमने खूब मज़े लिए। आवाज़ की दुनिया के हमारे दोस्त हमारी ही तरह इबारत लिखना सीख गए हैं। गीतों के इस सफ़र में बढ़ते हैं अब आगे। बेहतरीन लोकेशन और रोमांटिक फिल्म कश्मीर की कली, जिसमें एक अमीर बिजनेसमैन राजीव लाल को एक सीधी साधी फूल बेचने वाली लड़की चंपा से प्यार हो जाता है, और पेशे से ट्रक ड्राइवर मोहन चंपा पर बुरी नज़र रखता है और उसके गरीब पिता दीनू को ब्लैकमेल करता है। कहानी कई उतार चढ़ाव, गलत पहचान का नाटक, खलनायकों की चालें, और अंत में सभी गलत फहमियाँ दूर होकर एक सुखद मिलन होता है। तो किस खूबसूरत लोकेशन पर यह फिल्म बनाई गई थी। वैसे तो उसमें फिल्म के नाम में ही वो बात छुपी है। और राजीव, चंपा, मोहन की भूमिकाओं में कौन से कलाकार थे और निर्देशक का नाम भी बताएं। वैसे ये जो गाना अभी आप सुनेंगे, इस ट्रक में भेस बदल कर गाना कौन से अभिनेता गा रहे हैं, और गीत में आवाज़ है मोहम्मद रफ़ी की, गीतकार हैं SH बिहारी, संगीतकार हैं OP नैयर, फिल्म का नाम है कश्मीर की कली।

साथियों आपके जवाब हमें मिले हैं, पूजा भट्ट, संजय दत्त, दीपक तिजोरी, नीलिमा आजम, सदाशिव अमरापुर का जो महारानी के किरदार में नजर आए थे, अवतार गिल, जावेद खान, पंकज धीर और निर्देशक थे महेश भट्ट। साथियों आपने कभी ट्रक की सवारी की है या उसमें बैठकर किसी शादी में गए हैं या ट्रक से जुड़ी कोई बात हो तो वो भी हमें बताएं। खेती करने में ट्रक का कितना और कैसा योगदान होता है वो भी बताएं। और अब बात उस ब्लॉकबस्टर मूवी की जिसमें सनी देओल पेशे से एक देसी ट्रक ड्राइवर के रोल में नजर आते हैं और इस फिल्म में ट्रक सिर्फ एक गाड़ी नहीं बल्कि कहानी का एक अहम हिस्सा भी है। तो उस फिल्म का नाम और सनी देओल की भूमिका का नाम, निर्देशक का नाम भी बताएं। वैसे इस फिल्म में सनी देओल ने एक चीज़ उखाड़ ली थी, क्या थी वो चीज़, उसका भी नाम लिख दे। तब तक आइए सुनते हैं ये गीत जिसमें आवाज़ें हैं उदित नारायण और साथियों की, गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं उत्तम सिंह।

हमारे साथियों ने जवाब लिख दिए हैं हमारे पेज पर। सनी देओल की भूमिका वाले किरदार का नाम था तारा सिंह, साथ में थे अमीषा पटेल, अमरीश पुरी, विवेक शौक, सुरेश ओबराय और गदर। एक प्रेम कथा में तारा सिंह ने जमीन से सीधे एक लोहे का हैंडपंप उखाड़ लिया था, जिसे हिंदी फिल्मों के इतिहास के सबसे लोकप्रिय सीन्स में गिना जाता है। और इस फिल्म के निर्देशक हैं अनिल शर्मा। राजा हिंदुस्तानी इस फिल्म को देखकर जब जब फूल खिले वाले शशि कपूर और नंदा याद आ जाते हैं हमें। साथी ने लिखा है कि मज़ेदार मनोरंजक कार्यक्रम चल रहा है और मेरी सात गीतों की लिखी हुई इबारत में से छठे नंबर पर लिखा हुआ गीत भी शामिल हो गया है। और एक साथी ने लिखा है कि सड़कों के सफ़र में हम कई बार ट्रक्स और सामान ले जाने वाली गाड़ियों के पीछे लिखी हुई लाइनें जो लिखी होती हैं उसे पढ़ते हैं, जैसे कि अनारकली अरे बढ़कर चली, जो सफर प्यार से कट जाए वो प्यारा है सफर, नहीं तो गर्दिशों के दौर का मारा है सफर, और बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, वगैरह वगैरह। अब बात करते हैं हाईवे की। इस फिल्म में रणदीप हुड्डा महावीर भाई नाम के एक ट्रक ड्राइवर और किडनैपर की भूमिका में नजर आए थे और नायिका के साथ भारत के अलग अलग रास्तों पर ट्रक के जरिए वो सफर करते हैं। तो बताइए उन इलाकों के लोकेशन के नाम और फिल्म के निर्देशक का भी नाम बताएं, साथ ही उन जगहों के बारे में आप कोई खास जानकारी रखते हो तो वो भी हमारे साथ आप साझा कर सकते हैं। और आलिया भट्ट की पहली फिल्म का नाम क्या था वो भी लिख दें, और इस गीत में आवाजें किसकी हैं वो भी बताएं। गीतकार हैं इरशाद कामिल, संगीतकार हैं AR रहमान।

साथियों आपके जवाब हम पढ़ देते हैं। निर्देशक हैं इम्तियाज अली और उनकी ये जो फिल्म हाईवे है भारत के अलग अलग इलाकों में फिल्माई गई थी जिनके नाम है दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर। आलिया भट्ट की पहली फिल्म थी स्टूडेंट ऑफ द ईयर और संघर्ष में उन्होंने बाल कलाकार के रूप में काम किया था और इस गीत में आवाजें थी सुल्ताना और ज्योति नूरानी की। साथियों अब हम आपको सुनवा रहे हैं टैक्सी ड्राइवर का इस फिल्म का गीत और इस गीत का एक जवाब हमें जल्दी से लिखकर भेज दीजिए कि ये गीत किस पर फिल्माया गया है।

फिल्म का नाम था टैक्सी ड्राइवर, आवाज थी लता मंगेशकर की, गीत को लिखा था साहिर ने, संगीत था सचिन देव बर्मन का, और इस फिल्म में नजर आए थे देव आनंद, कल्पना कार्तिक, जॉनी वॉकर, और ये जो गीत फिल्माया गया था अभिनेत्री का नाम था शीला रमानी।

साथियों, सुरीला सफ़र के हम सफ़र बनकर आप हमारे साथ चले और अपने विचार, बातें, संदेश आपने हमारे साथ साझा किए, आप सभी को हम देते हैं धन्यवाद। और आज की तरह कल भी हमारे साथ तय कीजिए संगीत का ये सुरीला सफ़र देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।

त्रिवेणी तट पर मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह सभी को नमस्कार। दोस्तों, जीवन में खुशियां आसपास बिखरी होती हैं, हम खुशियों को अनदेखा कर देते हैं। चलिए आज छोटी छोटी बातों में तलाश करें खुशी का खजाना। सुबह सुबह जब चिड़िया मुंडेर पर बैठकर फुदकती है, जब आकाश में चिड़ियों का समूह सैर पर निकलता है, जब नदी के शीतल पानी को स्पर्श कर माथे से हम लगाते हैं, जब अदरक वाली खुशबूदार चाय की चुस्कियों के साथ सुबह सुबह रेडियो ट्यून करते हैं और रेडियो की सुई विविध भारती पर ठहरा देते हैं, तब होती है असली खुशी। तो चलिए आज रेडियो के साथ खुशी मनाते हैं। खुशियाँ

दोस्तों, किसी विशेष तिथि पर जब हम जश्न मनाते हैं तब खुशी में डूब जाते हैं। जश्न के इंतजार में जो खुशी मिलती है वो अलौकिक होती है। खुशी हमें मिल जाती है किसी प्रिय व्यक्ति से मिलकर, कोई पसंदीदा कार्यक्रम सुनकर हम खुश हो लेते हैं, किसी की आवाज सुनकर हमारा दिन बन जाता है, कोई अपनी पसंद का सुनहरा गीत सुनकर हम होठों पर मुस्कान सजा लेते हैं, खुशी से तरबतर हो सकते हैं। आइए आज दिन भर नहीं, शाम को रात तक बीने खुशियों की सीपियां। इतनी सी

दोस्तों, अगर हम खुश होना चाहते हैं तो लोगों की छोटी मोटी चालाकियों धूर्तताओं पर धूल डालकर आगे बढ़ जाएं और देखें कि कौन व्यक्ति अच्छा है, गुणी है। गुणी व्यक्तियों के साथ रहकर भी हम खुशी पा लेते हैं। किसी उत्सव, पर्व, त्योहार पर हम खुश हो लेते हैं। कुछ उत्सव आपको सिर्फ एक तिथि की याद नहीं दिलाते बल्कि आपको खुशियों की टोकरी सौंप देते हैं। छोटी छोटी खुशियां आपका मन समृद्ध कर देती हैं। हमारे चारों तरफ खुशियां बिखरी पड़ी हैं। जरूरत है उन्हें चुनकर सहेजने की, संवारने की। छोटे से बच्चे की किलकारी आपको खुशी से भर देती है। मासूम बच्चे को हंसाकर हम पाते हैं खुशी। कोई गीत गुनगुनाकर हम पा लेते हैं खुशी। तो चलिए गुनगुनाएं और बांटे सबको ढेर सारी खुशी।

0: एक विराट जीवन की कहानी।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
2: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती थी।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
3: चिट्ठी ना कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: ये विविध भारती है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे दोपहर समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की आर्थिक क्षमता और नीतिगत गतिशीलता देश को विकसित राष्ट्र की ओर ले जा रही है। भारतीय कंपनियों से वैश्विक नेतृत्व का आह्वान किया। भारत ने समान क्षेत्रफल वाले विश्व मानचित्र को अपनाने के संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव का समर्थन किया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भारतीय मानचित्र के अनुसार दर्शाने की बात दोहराई। कहा, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता से कोई समझौता नहीं। मध्य प्रदेश के सागर जिले में जहरीली शराब से 10 लोगों की मौत, कई अस्पताल में भर्ती। ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य में अमरीका के 3 टैंकरों और जहाजों पर हमला किया। तेज बारिश के बाद बिहार और उत्तर प्रदेश में बाढ़ की स्थिति गंभीर हुई। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब तथा उत्तर प्रदेश में मूसलाधार बारिश का अनुमान। और चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के खिताबी मुकाबले में आज सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का सामना चीन के हे जी टिंग और रेन यांग यू से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से बड़े सपने देखने और दुनिया का नेतृत्व करने का आह्वान किया है। वे कल दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब भारत के लोग दुनिया की बड़ी कंपनियों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, तो भारतीय कंपनियां भी दुनिया का नेतृत्व कर सकती हैं। उन्होंने युवाओं से यूनिकॉर्न बनाने, ड्रोन तकनीक में नवाचार करने और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में आगे बढ़ने का आह्वान किया।
1: भारत की ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म्स क्यों नहीं हो सकती? हमारी अकाउंटिंग फर्म, हमारी लीगल फर्म, हमारी फाइनेंशियल फर्म, ये सब ग्लोबल लीडर्स क्यों नहीं बन सकती? हम गर्व से कहते हैं कि आज भारतीय दुनिया की टॉप कंपनीज को लीड कर रहे हैं। अगर भारतीय दुनिया की टॉप कंपनियों को लीड कर रहे हैं, तो भारतीयों की बनाई कंपनियां दुनिया को क्यों लीड न करें?
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज दुनिया भारत की तेज आर्थिक वृद्धि और नीतिगत बदलावों की सराहना कर रही है। उन्होंने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की 7.8% की तिमाही आर्थिक वृद्धि देश की क्षमताओं को दर्शाती है।
1: जो दुनिया तब भारत में पॉलिसी पैरालिसिस से चिंतित थी, वो दुनिया आज भारत के पॉलिसी डायनामिज्म की चर्चा कर रही है। तब दुनिया भारत को फ्रेजाइल 5 बता रही थी, आज दुनिया भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनते हुए देख रही है। अभी हफ्ते भर में ही भारत की इकोनॉमी को लेकर कई सारी पॉजिटिव खबरें आई। 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है।
0: श्री मोदी ने मेक इन इंडिया की सफलता का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि भारत अब प्रमुख निर्यातक राष्ट्र बन रहा है। स्मार्टफोन का निर्यात 2,50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया है, जबकि देश का रक्षा उत्पादन करीब 2,00,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है। प्रधानमंत्री ने देश में तेजी से हो रहे बुनियादी ढांचे के विकास का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि जिन परियोजनाओं को पूरा होने में पहले दशकों लगते थे, वे अब कुछ ही वर्षों में पूरी हो रही हैं। उन्होंने रेलवे के विद्युतीकरण का उदाहरण देते हुए कहा कि वर्ष 2014 तक 30% से भी कम रेल लाइनों का विद्युतीकरण हुआ था, जबकि पिछले 12 वर्षों में लगभग 100% रेलवे

0: विद्युतीकरण किया गया है। गृहमंत्री अमित शाह 3 दिवसीय गोवा दौरे पर हैं। वे कल रात गोवा पहुंचे। हमारे संवाददाता ने बताया कि श्री शाह आज कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे।
1: अमित शाह ने आज मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत के साथ गोवा से जुड़े अहम मुद्दों पर समीक्षा बैठक की। इसके बाद वे जल्द ही मीडिया से बातचीत करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। अमित शाह आज बीजेपी के नए प्रदेश कार्यालय अटल भवन का उद्घाटन भी करेंगे। वे पार्टी की स्टेट कोर कमेटी के सदस्यों से भी मुलाकात करेंगे। कल 28वें वेस्टर्न जोनल काउंसिल मीटिंग की बैठक में शामिल होंगे और गोवा पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस कलर प्रदान करेंगे। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
0: मध्य प्रदेश के सागर जिले में जहरीली शराब पीने से 10 लोगों की मौत हो गई है, जबकि करीब 35 लोगों का अस्पताल में उपचार चल रहा है। इनमें कुछ की हालत गंभीर है। यह मामला बांदा थाना क्षेत्र के नौरोजा और घुगरा खुर्द गांवों का है। शुरुआती जांच में शराब में मिथाइल अल्कोहल होने की आशंका जताई गई है। कुछ लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मामले की जाँच के आदेश दिए हैं और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही है। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
2: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@airnewshindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्रालय ने समान क्षेत्रफल वाले विश्व मानचित्र को लेकर भारत का रुख स्पष्ट किया है। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में समान क्षेत्रफल वाले मानचित्र से जुड़े प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया है। उन्होंने कहा कि भारत के संप्रभु क्षेत्र, जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख भी शामिल हैं, उन्हें भारत के आधिकारिक मानचित्र के अनुसार ही दिखाया जाना चाहिए। किसी भी गलत या भ्रामक चित्रण को भारत स्वीकार नहीं करेगा। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को लेकर सरकार का रुख स्पष्ट तथा अडिग है। उन्होंने ये भी कहा कि ये प्रस्ताव किसी खास मानचित्र, प्रक्षेपण या किसी देश की सीमा के चित्रण का समर्थन नहीं करता। होर्मुज जल डमरू मध्य के आसपास अमेरिका ईरान संघर्ष में इस सप्ताह एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। दोनों पक्षों ने होर्मुज जल डमरू मध्य और उसके आसपास जहाजों पर हमले किए हैं। कल के ताजा घटनाक्रम में अमेरिका की केंद्रीय कमान सेंटकॉम ने कहा कि उसने ईरान के 3 तेल टैंकरों को निष्क्रिय कर दिया है। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने भी दावा किया है कि उसकी नौसेना ने होर्मुज जल डमरू मध्य के संरक्षित क्षेत्र में घुसने का प्रयास कर रही रिमोट से संचालित अमेरिका की एक नाव को निशाना बनाया है। अमेरिका के दूत आज यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचेंगे। शांति प्रक्रिया के तहत अमेरिकी दूतों की यह यूक्रेन की पहली यात्रा है। इससे पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कल क्रेमलिन में अमेरिकी दूतों स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर से मुलाकात की थी। बातचीत के बाद राष्ट्रपति पुतिन ने कीव पर रूसी हमलों को 3 दिन के लिए रोकने का आदेश दिया। उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन भी सोमवार तक मॉस्को पर हमले रोकने के लिए तैयार है। नेपाल में अचानक आई विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या 1,344 हो गई है। 590 विदेशी नागरिकों सहित लगभग 5,000 लोग अभी भी लापता हैं। अब तक 13,100 से अधिक लोगों को बचाया जा चुका है। मृतकों की पहचान के लिए DNA परीक्षण की सहायता ली जा रही है। 1,270 अज्ञात शवों का विवरण नेपाल पुलिस की वेबसाइट पर दिया गया है। भारत और चीन की टीमों की सहायता से कई पनबिजली परियोजनाओं में बचाव अभियान अब भी जारी है। उधर चीन के चियांगशी प्रांत में तेज बारिश के बाद भूस्खलन में 2 लोगों की मौत हो गई। तूफान सॉडेल से कई दिन की मूसलाधार बारिश के कारण यह दुर्घटना हुई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@airnewshindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: ये आकाशवाणी है। उत्तर प्रदेश में तेज बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण 24 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज चित्रकूट जिले में स्थिति और राहत बचाव कार्यों का जायजा लिया।
3: राज्य की कई नदियां अभी भी उफान पर हैं। बदायूं, गाजीपुर और बलिया में गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और फर्रुखाबाद में खतरे के निशान के नजदीक

0: पहुंच गई है। वहीं लखीमपुर खीरी और बाराबंकी में शारदा तथा अयोध्या और तुर्तीपार बलिया में घाघरा नदी का जलस्तर भी खतरे के निशान के पार पहुंच गया है। चित्रकूट के राजापुर में यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल वाराणसी में वरुणा नदी के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बाढ़ राहत शिविर में पहुंचकर पीड़ितों से मुलाकात की और राहत सामग्री बांटी। उधर मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक प्रदेश के पूर्वी हिस्से और आगामी 2 दिनों तक पश्चिमी जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: बिहार के कई हिस्सों में भी बाढ़ के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त है। इस बीच मौसम विभाग ने आज हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में कल तक बारिश की आशंका है। वहीं दिल्ली में भी लगातार दूसरे दिन बारिश हो रही है। इसके चलते कई इलाकों में जलभराव और ट्रैफिक की रफ्तार धीमी हो गई है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, झारखंड और छत्तीसगढ़ में कल बिजली गिरने की भी संभावना है। नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की तैयारियां तेज हो गई हैं। ये विशेष सम्मेलन 12 और 13 सितंबर को भारत मंडपम में आयोजित होगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि आयोजन की सुरक्षा तैयारियों के अंतर्गत आज सुबह दिल्ली पुलिस ने मोटर काफिले की रिहर्सल की और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया।
2: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मद्देनजर NDMC क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को और भी मजबूत किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस के अनुसार यमुना नदी के किनारे सुरक्षा उपायों की भी समीक्षा की गई है। इस बीच NDMC नई दिल्ली के प्रमुख इलाकों में सौंदर्यकरण और सड़कों के स्वरूप में सुधार से जुड़े कार्य कर रही है। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ब्रिक्स के सदस्य और साझेदार देशों के नेताओं, आउटरीच देशों तथा विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों को एक मंच पर एकत्रित करेगा। समर्थ के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: हमारे संवाददाता ने बताया कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर आईब्रिक्स शिखर सम्मेलन का भी आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में वित्त मंत्री और 500 से अधिक संस्थागत निवेशक तथा उद्योगपति शामिल होंगे। आईब्रिक्स का उद्देश्य ब्रिक्स के 21 सदस्य और साझेदार देशों में संप्रभु पूंजी का उपयोग, विश्वसनीय बुनियादी ढांचे, ऊर्जा तथा डिजिटल क्षमता परियोजनाओं के लिए करना है।
3: सम्मेलन में सीमा पार निवेश, गैर डॉलर निपटान और भुगतान प्रणालियों पर चर्चा होगी। इसके अलावा भारत की UPI भुगतान प्रणाली और ब्राजील की पिक्स भुगतान प्रणालियों को जोड़ने तथा डिजिटल मुद्राओं में कारोबार पर भी चर्चा होने की संभावना है। ये शिखर सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा है जब ब्रिक्स देश व्यापार गतिशीलता, अमेरिकी शुल्क के दबाव और उच्च डॉलर लागत के समाधान के लिए स्वयं को अनुकूलित कर रहे हैं। भारत की अध्यक्षता में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगा। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: भारतीय वायुसेना की सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम दूसरे अल अलामीन अंतरराष्ट्रीय एयर शो में भाग लेने के लिए मिस्र पहुंच चुकी है। ये एयर शो 8 से 10 सितंबर तक अल अलामीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आयोजित किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि टीम सुनियोजित प्रदर्शनों की श्रृंखला के माध्यम से सटीकता, पेशेवर अंदाज और उड़ान कौशल का प्रदर्शन करेगी। मंत्रालय ने यह भी बताया कि सारंग टीम देश में ही डिजाइन और निर्मित उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर ध्रुव का संचालन करेगी। डॉक्टर दिनेश शर्मा को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। डॉक्टर शर्मा फिलहाल उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के सांसद हैं और वे राज्य के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि वे अपनी नई जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी के साथ निभाएंगे।
4: जो निर्देश होगा, जो भी प्रधानमंत्री जी का, वो सबको स्वीकार है और हमेशा मैं एक कार्यकर्ता की तरह रहा हूँ, तो जो भी हमारे पार्टी का नेतृत्व आदेश देता है वो सिद्ध करना हमारा काम है। जो प्रधानमंत्री जी का विश्वास है उसको पूरा करूँ, यही मेरी इच्छा है।
1: आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में शहरी स्थानीय निकायों के साधारण चुनाव कराने के लिए सांविधिक नियम जारी किए हैं। ये नियम महापौर, अध्यक्षों और वार्ड सदस्यों के प्रत्यक्ष चुनाव के साथ साथ उपमहापौर और उपाध्यक्षों के अप्रत्यक्ष चुनाव के लिए बनाए गए हैं। संशोधित कानूनों के तहत नगर निगमों के महापौर और नगर पालिकाओं तथा नगर पंचायतों के अध्यक्षों का चुनाव मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष तौर पर किया जाएगा। सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी तीसरी बार चाइना मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंच गए हैं। भारतीय जोड़ी का मुकाबला चीन के हे जी टिंग और रेन जियांग यू से होगा। विश्व के 5वें नंबर की भारतीय जोड़ी ने सेमीफाइनल में मलेशिया के नूर मोहम्मद, अजरियन अयूब और टेन वी कियोंग को पराजित किया था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की आर्थिक क्षमता और नीतिगत गतिशीलता

क्षमता देश को विकसित राष्ट्र की ओर ले जा रही है। भारतीय कंपनियों से वैश्विक नेतृत्व करने का आह्वान किया। भारत ने समान क्षेत्रफल वाले विश्व मानचित्र को अपनाने के संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव का समर्थन किया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भारतीय मानचित्र के अनुसार दर्शाने की बात दोहराई। कहा, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता से कोई समझौता नहीं। मध्य प्रदेश के सागर जिले में जहरीली शराब से 10 लोगों की मौत, कई अस्पताल में भर्ती। ईरान ने होर्मुज जलडमरों मध्य में अमरीका के 3 टैंकरों और जहाजों पर हमला किया। और चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के खिताबी मुकाबले में आज सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का सामना चीन के हे जी टिंग और रेन जियांग यू से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। पेश है कार्यक्रम सदाबहार नखमे। कार्यक्रम सुनने वाले सभी दोस्तों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। साथियों, कार्यक्रम का पहला गीत है मोहम्मद रफी और सुषमा श्रेष्ठ की आवाजों में। इस गीत को लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने। संगीत है राहुल देव बर्मन का। फिल्म का नाम है हम किसी से कम नहीं।

0: टेलीविजन के जाने माने नाम, जिनके लिए अभिनय एक काम नहीं समर्पण है।
1: जब मैं तैयारी करना शुरू करता हूँ, वहीं से मेरे अंदर एक नया इंसान जन्म लेता है। वो एक एक्टर विनीत रैना है। जैसे ही वो मेकअप अपने ऊपर चढ़ाता है तो वो किरदार बन जाता है जो आज पूरा दिन उसको प्ले करना है। उसका विनीत रैना से कोई लेना देना नहीं है।
0: कभी चॉकलेटी हीरो, कभी खूंखार विलेन, तो कभी परम दिव्य साईं।
1: साईं बाबा तक पहुंचना मेरे ख्याल से किसी के बस में नहीं है।
0: विविध भारती पर आ रहे हैं अपने अभिनय और जीवन की कहानी लेकर जाने माने अभिनेता विनीत रैना। जरूर सुनिए सेलुलॉइड के सितारे मंगलवार 8 सितंबर शाम 4 बजे और 9 सितंबर सुबह 10 बजे देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार और सुषमा श्रेष्ठ की आवाजों में। गीतकार हैं साहिर लुधियानवी, संगीतकार हैं राहुल देव बर्मन। फिल्म का नाम है आ गले लग जा।

साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत है लता मंगेशकर और सुषमा श्रेष्ठ की आवाजों में। गीतकार हैं गौहर कानपुरी, संगीत है बप्पी लहरी का, फिल्म का नाम है जख्मी।

0: संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गडले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
2: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी हुई थी।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
3: चिट्ठी ना कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। और इस वक्त आप सुन रहे हैं सदाबहार नख्मों का कार्यक्रम सदाबहार नख्मे। आइए सुनते हैं अगला गीत किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में। गीत रचना नीरज की, संगीत रचना सचिन देव बर्मन की। फिल्म का नाम है तेरे मेरे सपने।

साथियों लीजिए सुनिए आनंद बख्शी का लिखा गीत मोहम्मद रफी की आवाज में। धुन है राहुल देव बर्मन के, फिल्म का नाम है द ट्रेन।

साथियों, कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश है लता मंगेशकर की आवाज में। गीतकार हैं अमित खन्ना, संगीतकार हैं राजेश रोशन, फिल्म का नाम है स्वामी।

ये विविध भारती है और इस समय आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम मन चाहे गीत। कार्यक्रम का अगला गीत सुनने के ख्वाहिशमंद है आप सभी। कस्बा हरदुआ गंज अलीगढ़ से मुन्ने मियां अंसारी, अयान अंसारी, नफीस अंसारी, शाहिद अहमद अंसारी और विंस टेलर। सदर नागपुर से कमल गोल्दा, अंकित गोल्दा, अभिषेक गोल्दा, प्रेम लता गोल्दा और समस्त गोल्दा परिवार। आमला ग्राम अंधारिया बैतूल एमपी से वीरेश झारे, योगेश झारे, त्रिवेश झारे और नवदीप। नेरदे वर्धा छिंदवाड़ा से पूजा देवी, बलराम पटेल, जानवी रामा और देव। मुक्तसर पंजाब से बाबू सिंह धीमान।

बलविंदर कौर धीमान, रोनित नीशु और भूपेंद्र, शाहू नगर यवतमाल से राहुल मनवर, सरला मनवर, विशाल, चेतन, रोशनी और स्वीट बेबी प्रियांशी। तो लीजिए सुनिए अपनी पसंद का ये गीत। आवाज़ है मोहम्मद रफ़ी की, गीत को लिखा है निदा फाजली ने, संगीत है उषा खन्ना का और फिल्म का नाम है आप तो ऐसे ना थे।

साथियों, कार्यक्रम का अगला फरमाइशी गीत है और इसे सुनने के ख्वाहिशमंद है आप सभी दोस्त। मालेगांव जिला वाशिम महाराष्ट्र से अरविंद साखरकर।

सुनीता, रोहित, निखिल और दीपमाला साखरकर रणपिसे नगर अकोला महाराष्ट्र से, शिवराज भारती, कुमारी टीना भारती, तनीषा वेनो संगेफर, रीना रोहित, मनु गयालकर और राज भारती कोपर गांव से, पेंटर दारूवाला, मतिन दारूवाला, मसूदा दारूवाला, दिया और दानिश खान बाला चौक यवतमाल से पत्र लिखा है, मीना ताई, गायत्री भूमि, नितिन, तनिश, मुकेश, दीपिका, लवीसा, शौर्य, शुभम, कल्याणी, कुकू और सुनीता श्रीवास ने, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा इस गीत को सुनना चाहते हैं। तो लीजिए सुनिए अपनी पसंद का ये गीत। आवाज है आशा भोसले की, गीत को लिखा है शहरयार ने, संगीत है खयाम का, फिल्म का नाम है उमराव जान।

साथियों, कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश सुनिए। आप सभी दोस्तों की पसंद पर खत लिखे हैं आपने। शैलू बाजार जिला वाशिम से नारायण गवार गुरु, सरला गवार गुरु, सचिन खाडेकर, दक्ष, आयुष, पूर्वा, निर्मोही और आधिराज ने, रिधोरा से बाबूलाल बोराखडे, गोकुला बोराखडे और मंगेश बोराखडे, दुर्ग रायगढ़ से गेंदालाल श्रीवास, कुशल और गेंदू भाई, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव, मीका, बलविंदर बीरक, जय तेग बीरक और मीका बीरक, रामना हड़दी से मोहम्मद आरिफ, फातिमा अरफा और एमएच शरीफ, जलगांव सोमनाथ से आपने खत लिखा है डॉक्टर नामदेव भुतेकर, अभिषेक भुतेकर, कार्तिक और अश्विनी भुतेकर, संभाजी नगर महाराष्ट्र से वैष्णवी जगदाड़े, हर्षुल साउंगी, संभाजी नगर भाव सिंह पूरा से वैभव और गौरव लोखंडे, और बदनापुर से मेघराज, युवराज कोलते, रिधोरा देवी और रुद्र कोलकर ने ये पत्र लिखे हैं। साथियों, लीजिए सुनिए अपनी पसंद का ये फरमाइशी गीत लता मंगेशकर की आवाज में। गीतकार हैं साहिर लुधियानवी, संगीतकार हैं रवि, फिल्म का नाम है आंखें।

साथियों, आप जो खत हमें लिखते हैं उसमें साफ साफ अक्षरों में लिखें ताकि आपका नाम पता और फरमाइश पढ़ने में हमें आसानी हो। आपको बता दें, आज के मन चाहे गीत कार्यक्रम में हमें सहयोग मिला आकांक्षा विश्वकर्मा और चंचल वर्मा से। मन चाहे गीत कार्यक्रम में आज मैं थी आपके साथ सलमा सैयद, और विविध भारती से कार्यक्रम मन चाहे गीत की प्रस्तुत करता है तेजश्री कामले।

0: आज के नाट्य तरंग कार्यक्रम में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के बांग्ला उपन्यास चोखेर बाली का रेडियो नाट्य रूपांतरण आंख की किरकिरी का दूसरा भाग सुनवाया जाएगा। रूपांतरकार एवं निर्देशक नंदलाल शर्मा।
1: कौन? तुम?
2: क्या पढ़ रही हो? जरा देखूं तो?
1: कुछ नहीं, ऐसे ही।
2: देखूं तो सही। अच्छा, विष वृक्ष पढ़ रही हो? और मैं तो समझा कि कोई गुप्त चीज होगी।
1: मेरे पास गुप्त क्या हो सकता है?
2: जैसे बिहारी की कोई चिट्ठी।
1: क्या क्या कहा तुमने?
2: अरे मैं तो परिहास कर रहा था।
1: छोड़ो मेरा हाथ। परिहास किसका कर रहे थे? यदि उनकी मित्रता के योग्य होते तो तुम्हारा परिहास मैं सह लेती। तुम्हारा मन छोटा है, मित्रता करने की शक्ति ही नहीं तुम में।
2: मैं तुम्हारे पांव पड़ता हूँ।
3: महिंदा, ओह, बड़े समय में आ गया, किंतु ज्यादा देर नहीं रुकूंगा। केवल एक बात कहने आया हूँ। मैं काशी गया था, जानता नहीं था कि भाभी वहां है। बिना जाने उनके सामने जाकर अपराधी हुआ, पर उनसे क्षमा मांगने का अवसर नहीं मिला, इसीलिए तुमसे क्षमा मांगने आया हूँ। मेरे मन को ज्ञान अज्ञान में यदि किसी पाप ने स्पर्श किया हो तो उसके लिए उन्हें किसी तरह का दुख ना सहना पड़े। बस
2: मैंने तो ना तुमसे दोष स्वीकार करने को कहा है ना स्वीकार करने को, तब तुम क्षमा मांगकर साधु बनने क्यों आए हो?
3: मैं
1: बिहारी लाला जी, तुम कुछ मत कहो। इस आदमी ने जो कहा है उससे इसी के मुंह पर कलंक लगा रहेगा।
3: अच्छा, मैं जाता हूँ।
1: लाला जी, लाला जी, मुझसे तुम्हें क्या कुछ भी नहीं कहना? यदि तिरस्कार करने की बात हो तो तिरस्कार करो। लाला जी, लाला जी, कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो। लाला जी, लाला जी,
2: हट जाओ मेरे सामने से।
3: अरे अरे, तुम्हारे बाएं हाथ की कोहनी से खून बह रहा है। लाओ फिरो, मैं अभी पट्टी बांध देता हूं।
1: कुछ मत करो, गिरने दो खून।
2: कैसी बात कर रही हो? पट्टी बांधकर अभी एक दवा देता हूं, दर्द जाता रहेगा और घाव शीघ्र अच्छा हो जाएगा।
1: नहीं, इस दर्द को बना रहने दो, मुझे अच्छा नहीं करा है।
2: मैंने अधीर होकर लोगों के सामने तुम्हें अपदस्त किया, इसके लिए मुझे क्षमा करो।
1: क्षमा किस लिए? अच्छा किया। मैं क्या किसी से डरती हूँ? जो लोग थक्का देकर चोट पहुंचाकर छोड़ जाते हैं वे ही क्या मेरे सर्वस्व हैं? और जो पांव पकड़ कर रखना चाहते हैं वे कोई नहीं।
2: तो तुम मेरे प्रेम को कभी नहीं ठुकराओगी?
1: नहीं, मैं उसे माथे पर लगाकर रखूंगी।
2: चुन्नी, काशी से लौटने के बाद तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा हो गया है।
4: और तुम कैसे रहे?
2: अच्छा ही था। सुनो, मैं कॉलेज जा रहा हूँ।
4: आज इतनी जल्दी?
2: हाँ, कुछ आवश्यक कार्य है। अच्छा, चलता हूँ। महेंद्र, तू ये क्या कर रहा है? कभी तेरा मन आशा की ओर भागता है, कभी विनोद की ओर। आशा जब जब तेरे पास आती है तो उसकी ओर उपेक्षा का भाव रखता है और विनोदनी के पीछे पीछे भागता है। तुझे क्या मालूम कि उस सरल हृदय पर क्या बीतती होगी? लेकिन आज ना तो भोजन के समय और ना उसके बाद ही आशा आई। मैं तो सोच रहा था कि अपने प्यार दुलार से उसकी सारी वेदना को दूर कर दूंगा। आशा को अब भी मैं कितना प्यार करता हूं, वो बहुत कम स्त्रियों के भाग्य में होता है।

0: विनोदनी, आशा और विनोदनी दोनों के लिए मेरे हृदय में स्थान है और दोनों में से किसी को भी छोड़ने की जरूरत नहीं। ओह, ये मौसम, ये चांदी रात, लेकिन विनोदनी मुझसे दूर नहीं। नहीं नहीं, मैं भी उससे मिलूंगा। चलो उसके कमरे में। विनोद, विनोद बिस्तर बिछा है, विनोद ने कहा है?
1: कौन?
0: मैं हूं, मैं।
2: अरे महेन, इतनी रात को तू यहां कैसे? महेन, विनोदनी, महेन बहू को छोड़ इतनी रात के यहाँ क्या करने आया था?
1: मुझे क्या मालूम, शायद किरकिरे के साथ कुछ खटपट हो गई होगी। आज भी समय से पहले कॉलेज चले गए, ना हमसे कुछ बोले ना कुछ कहा। चलो उनके कपड़े निकाल दो। अरे चिट्ठी देखो तो किसकी है? ये तो विनोदनी यानी किरकिरे की चिट्ठी, इनके नाम। हे भगवान, जरा पढ़ो तो। कल रात तुमने जो कुछ किया
3: उससे भी क्या तुम्हारी तृप्ति नहीं हुई? आज फिर नौकरानी के हाथ गुप्त चिट्ठी क्यों भेजी?
1: चिट्ठी,
3: वो अपने मन में क्या सोचती होगी? मुझे क्या तुम जगत में किसी के आगे मुंह दिखाने लायक नहीं रखोगे? तुम मुझसे चाहते क्या हो? प्रेम? तुम्हारी ये भिक्षा वृत्ति क्यों है? जन्म से तुम केवल प्रेम पाते आ रहे हो, तब भी तुम्हारे लोभ का अंत नहीं है? जगत में मुझे प्रेम करने और पाने का कोई स्थान नहीं, इसी से मैं खेल खेल कर प्रेम का खेत मिटा लिया करती हूं। जब तुम्हारे पास अवसर था तब उस मिथ्या खेल में तुमने भी साथ दिया, किंतु खेल की छुट्टी क्या कभी समाप्त नहीं होती? अब घर में तुम्हारी पुकार हुई है, अब धूल झाड़ कर घर जाओ। मेरे तो घर नहीं है। हाँ, मन ही मन अकेले बैठकर खेलती रहूंगी, तुम्हें नहीं बुलाऊंगी।
1: हे भगवान, हे भगवान, ये क्या हो गया? क्यों? क्या क्या ये हमारा संपूर्ण सर्वनाश है?

0: आज माँ ने मुझे रोज की तरह अभी तक आवाज नहीं दी, बात क्या है? चलो मैं स्वयं ही उनके पास भंडारे में जाती हूँ। माँ, माँ, माँ, जान पड़ता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। बात भी है ऐसी है, उस रात देखो ना एकदम पागल की तरह खड़े हो गए, मुझे तो फिर नींद ही नहीं लगी। शायद शायद किरकिरी के साथ कुछ खटपट हो गई होगी, फैसले के लिए मुझे धर पकड़ना चाहा। रात भर सब्र कहाँ, आपके लड़के में माँ और चाहे हजार गुण हो पर धैर्य तो लेश मात्र भी नहीं है, इसीलिए अक्सर मेरे से उनका झगड़ा हुआ करता है।
1: बहू तुम झूठ बक रही हो, मुझे आज कोई बात अच्छी नहीं लग रही।
0: मुझे भी आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा माँ, तुम्हारे मन को चोट लगेगी इसीलिए झूठी बातों से तुम्हारे लड़के के गुणदोष ठगने की चेष्टा कर रही थी, किंतु जो हो गया उसे ठगा नहीं जा सकता।
1: अपने बेटे के दोष गुण मुझे मालूम है, परंतु परंतु तुम ऐसी मायावी हो ये मैं नहीं जानती थी।
0: कोई किसी को नहीं जानता माँ, अपने मन को ही क्या सब जानते हैं। तुमने क्या कभी अपनी बहू से द्वेष करके इस मायावनी से अपने लड़के का मन बहलाने की इच्छा नहीं की?
1: अभागिन, बेटे के बारे में तो माँ पर अपवाद रखती है, तेरी जीभ क्यों नहीं गिर जाती?
0: माँ, हम सब मायावनी की जाति की हैं, मेरे अंदर क्या माया थी ये मैं ठीक नहीं जानती।

0: तुम जान गई। तुम में जो माया है उसे तुम नहीं जानती, मैं जान गई। माया थी अवश्य, अन्यथा ऐसी घटना ही न होती। मैंने कुछ जाने कुछ अनजाने जाल बिछाया और तुमने भी कुछ जानकर कुछ अनजाने बिछाया था। हमारी जाति का धर्म ही ऐसा है।
1: और भागिन तू
2: विनोद,
0: जाओ मेरे कमरे से, तुम चले जाओ।
2: क्यों, क्या किया है मैंने?
0: क्या किया है? डरपोक, कायर, तुम्हें क्या करने की शक्ति है? ना तुम प्रेम करना चाहते हो, ना कर्तव्य निभाना, फिर मुझे क्यों लोगों के सामने नष्ट किया चाहते हो?
2: मैं तुम्हें प्यार नहीं करता, ये कह रही हो?
0: हाँ, मैं यही कह रही हूँ। लुका चोरी ढकना उघाड़ना, कभी इधर कभी उधर, तुम्हारी चोरों जैसी प्रवृत्ति देखकर मुझे घृणा होती है। अभी अच्छा नहीं लगता, मुझे अच्छा नहीं लगता, जाओ यहाँ से।
2: तुम मुझसे घृणा करती हो विनोद?
0: हाँ, घृणा करती हूँ। बिहारी लाला जी।
2: अरे भाभी, आप कैसे?
0: यहाँ तुम्हारा आत्मीय स्त्रियों में कोई नहीं है?
2: आत्मीय भी नहीं, पराई भी नहीं। बुआ है, सुदेश के मकान में रहती है।
0: तुम अपने देश के मकान में मुझे ले चलो।
2: तुम्हें क्या कह के वहां ले चलूंगा?
0: दासी कह के, मैं वहां घर का सब काम काज करूंगी।
2: ये बात मन में उठी कैसे?
0: महेंद्र मुझसे प्रेम करता है।
2: ये बात कोई नई नहीं है कि दोबारा सुनने की इच्छा हो।
0: मेरी इच्छा भी नहीं।
2: महेंद्र जिस रास्ते पर चला जा रहा था, उसे उससे किसने हटाया?
0: मैंने, अपने हृदय की आग से मैंने महेंद्र का घर जलाया है। मैंने समझा था कि मैं उससे प्रेम करती हूँ, पर वो मेरी भूल थी।
2: प्यार करने वाली क्या इस प्रकार आग लगा सकती है?
0: वो तुम्हारे शास्त्रों की बात है, अभी उसे समझकर चलने की बुद्धि मुझ में नहीं है। सुनो लाला जी, मैं निर्लज्ज होकर कह रही हूँ, तुम ही मुझे बचा सकते हो। महेंद्र मुझे चाहता है पर अंधा है, मुझे समझता नहीं। एक बार मुझे लगा था तुम मुझे समझ गए हो, शायद तुमने मुझ पर श्रद्धा भी की थी। सच कहना, छिपाना नहीं।
2: हाँ, की थी।
0: तुमने भूल नहीं की थी, किंतु यदि समझने ही लगे थे, श्रद्धा ही करने लगे थे, तो वहीं क्यों रुक गए? मुझे प्रेम करने में तुम्हें क्या बाधा थी? मैं आज निर्लज्ज होकर तुमसे कह रही हूं, तुमने भी मुझे प्यार क्यों नहीं किया? मेरा चला भाग्य, तुम भी आशा के प्रेम में थी। नहीं, तुम क्रोध न कर सकोगी, मैं कोई बात नहीं छुपाऊंगी। तुम आशा को प्यार करते हो, ये बात जब तुम स्वयं नहीं जानते थे, तब भी मैं जान गई थी। आशा में तुमने क्या देखा, मैं समझ नहीं पाती। विधाता के पुरुष को आंख के साथ अंतर्दृष्टि कुछ भी नहीं देते, तुम लोग क्या देखकर भूल जाते हो?
2: भाभी, अब तुम जो सुनाओगी सुनूंगा, पर जो बात कहने की नहीं है वो ना कहो, यही मेरी प्रार्थना है।
0: लाला जी, मैं जानती हूं तुम्हें कहां पीड़ा हो रही है, किंतु जिसकी श्रद्धा मुझे मिली थी और जिसका प्रेम पाने पर मेरा जीवन सार्थक हो जाता, उसके पास इस रात मैं संपूर्ण भय और लज्जा छोड़कर आई हूं। उसमें मेरे मन की कितनी वेदना छिपी है, जरा इस पर विचार कर धीरज धरो। मैं सच कह रही हूं लाला जी, यदि तुम आशा को प्रेम ना करते तो मेरे द्वारा उसका सर्वनाश कभी नहीं होता।
2: आशा का क्या हुआ, तुमने उसके साथ क्या किया?

0: महेंद्र सब कुछ छोड़कर कल ही मुझे साथ ले घर से निकल जाने को तैयार है।
1: नहीं, ये किसी तरह नहीं हो सकता, किसी तरह नहीं।
0: महेंद्र को आज कौन रोक सकता है?
1: तुम।
0: किसके लिए रोकूं? तुम्हारी आशा के लिए? मेरा अपना सुख दुख क्या कुछ नहीं? तुम्हारी आशा का भला हो, तुम्हारे महेंद्र के घर गृहस्थी का भला हो, इसके लिए मैं अपने समस्त दावों को छोड़ दूं? इतनी भली मैं नहीं हूं, धर्मशास्त्र की पोथियां मैंने इतनी नहीं पढ़ी हैं। मैं जो छोड़ूंगी उसके बदले मुझे क्या मिलेगा?
1: सुनो, मैं भी तुमसे एक बात स्पष्ट कहता हूं कि ये सब जो तुमने कहा है उसका अधिकांश तुम्हारा नहीं है। छोटे दर्जे के नाटक उपन्यास तुमने पढ़े हैं और उससे ही चुराया हुआ है। तुम अगर नितांत अभूत बालिका रहती तो भी संसार में प्रेम से वंचित न रहती। नाटक की नायिका स्टेज पर शोभा देती है, घर में उसे लेकर काम नहीं चल सकता।
0: तुम मुझे क्या करने को कहते हो?
1: असाधारण कुछ न करो, साधारण स्त्रियों की शुभ बुद्धि जो कहती है वही करो। देश चले जाओ, मैं जनाने डिब्बे में बैठा कर तुम्हें देश तक पहुंचा दूंगा।
0: तो आज की रात यहीं रह जाऊं?
1: नहीं, मुझे अपने ऊपर इतना विश्वास नहीं।
0: बस इतनी दुर्बलता बनाए रखना लाला जी, पत्थर की देवता की तरह बिल्कुल पवित्र ना हो जाना। किसी बुरे से प्यार करके सरा बुरे बने रहना।
1: विनोद, मैं
0: जीवन सर्वस्व जानती हूँ, जानती हूँ कि सदा के लिए तुम मेरे नहीं हो सकते, किंतु आज एक मुहूर्त के लिए मुझे प्यार करो, उसके बाद मैं अपने उसी वन जंगल में चली जाऊंगी और किसी से कुछ न चाहूंगी। मरण पर्यंत मन में रखने लायक तुम कुछ तो दे दो मुझे, कुछ तो दो।
1: रात 1 बजे पैसेंजर ट्रेन जाती है।
0: मैं उसी गाड़ी से चली जाऊंगी। मैंने तुमसे प्रार्थना की थी कि तुम मुझे चिट्ठी अवश्य लिखना। मैं रोज तुम्हारी चिट्ठी पाने की प्रतीक्षा करती हूँ। तुम मेरे विचारक हो, मैं तुम्हें प्रणाम करती हूँ। तुम्हारी 2 लाइन की चिट्ठी ही मेरे निर्वासन में मेरा आहार है। कहते हैं एकाग्र मन से जिसे पुकारा जाता है वह अवश्य आता है। मैं भी तुम्हें पुकार रही हूँ। मेरा जीवन सूना है, इस सूनेपन में एक बार तुम आ जाओ, एक क्षण के लिए आ जाओ। तुम्हें आना ही होगा, मैं किसी तरह तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। तुम्हें आना ही होगा, तुम आ जाओ, एक क्षण के लिए आ जाओ। तुम्हें आना ही होगा, तुम्हें आना ही होगा। आ गए प्रभु।
1: आ गया विनोद।
0: तुम चले जाओ यहां से, मैं कहती हूं चले जाओ यहां से, चले जाओ यहां से।
1: मैं इतना कायर नहीं कि तुम्हें इस लोक निंदा की आग में छोड़कर चला जाऊं यहां से। तुम्हें ले ही जाऊंगा, उसके बाद मुझे छोड़ देने की इच्छा हो तो छोड़ देना। मैं कुछ भी बाधा नहीं बनूंगा। मैं तुम्हें छूकर कसम खाता हूं कि तुम जो इच्छा करोगी वही होगा। मैंने अविश्वास के कितने ही काम किए हैं, परंतु आज मेरा विश्वास ना करो। चलो, मैं सवारी लेकर आया हूं।
0: चलो, मैं चलती हूं।
2: माँ,
0: लाला जी जरा जल्दी चलकर माँ को देखिए, बड़ा कष्ट हो रहा है उन्हें।

0: माँ प्रणाम माँ।
1: बहुत दिनों से तुझे देखा नहीं रे, तू है तो अच्छी तरह।
0: माँ तुमने अपनी बीमारी का समाचार क्यों नहीं दिया, सुनकर मैं एक क्षण भी रुक सकता था।
1: खोकू, अरे क्या मैं जानती नहीं,
0: माँ
1: तुझे सिर्फ पेट पे नहीं रखा रे, अन्यथा तुझसे बढ़कर दुनिया में मेरा कौन है रे।
0: माँ
1: बहुत दुबला हो गया रे, तेरे देख रेख करने वाला कोई नहीं, अब तो बहू ले आ, मछली बहू।
2: हाँ हाँ जी जी,
1: इसका भार तुम पर रहा, इसे सुखी रखना।
2: न्यारी जरा बाहर तो आ।
0: कहो काकी।
2: तुझे नहीं मालूम क्या, महेंद्र विनोदनी को लेकर कहीं चला गया है। एक बार महेंद्र को तो बुला नहीं लाएगा, और देरी करना उचित नहीं है।
0: अच्छा काकी, तुम माँ की पथ्य और दवा का ख्याल रखना। काकी काकी, महेंद्र का उद्धार मैं करूंगा।
3: विनोद, ये क्या तुमने फूलों से अपनी बेकी गूंथी, गले में भी फूलों का हार, ये सादा मोटे कपड़े, सारा कमरा, ये बिछौना, सब तरफ फूल ही फूल, क्या तुम मेरा इंतजार कर रही हो? ये बिछौना जी चाहता है।
4: नहीं नहीं, तुम जाओ, इस बिछौने पर मत बैठना।
3: तो फिर ये श्रृंगार किसके लिए किया है?
4: जिनके लिए किया है वे मेरे हृदय के भीतर हैं।
3: कौन है वो? बिहारी?
4: उनका नाम तुम मुंह से न लो।
3: उसी के लिए तुम मेरे साथ इधर उधर घूमती हो?
4: हाँ, उन्हीं के लिए।
3: उसका पता ठिकाना जानती हो?
4: किसी न किसी तरह जान ही लूंगी।
3: मैं किसी भी तरह जानने नहीं दूंगा।
4: न जानने दोगे ना सही, पर मेरे हृदय से उन्हें किसी भी प्रकार निकाल न सकूंगी।
3: ओ, तुम मर क्यों ना गई? तुम्हारे मरने से कितना मंगल होता।
4: जब तक बिहारी की आशा है मैं मर नहीं सकती।
3: अगर तुम मेरी नहीं हुई तो बिहारी की भी नहीं हो सकती, समझी?
4: मैं कहती हूँ चले जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से।
3: मेरी माँ रो रही है, मेरी स्त्री रो रही है, उनके आंसू मुझे दूर से ही जला रहे हैं। तुम्हारे मरे बिना मुझे उनके आंसू पहुँचने का अवसर नहीं मिलेगा।
4: मैं कहती हूँ तुम अपने घर जाओ, जाओ यहाँ से, तुम्हारा कुछ भी नहीं है यहाँ, कुछ भी नहीं। ओ, तुम नहीं मानोगे क्यों मुझे बार बार तंग करने के लिए आ जाती हो तुम।
0: महेंद्र, महेंद्र,
4: महेंद्र नहीं है, वो शहर गया है।
0: अच्छा मैं चलता हूँ।
4: तुम्हारे पांव पड़ती हूँ, तुम्हें थोड़ी देर बैठना होगा।
0: कहो क्या कहना है?
4: तुम जो कुछ मन में समझ रहे हो वो बात नहीं है। इस घर को किसी कलंक ने नहीं छुआ है। ये फूल तुम्हारी ही पूजा में सूख गए हैं। तुम्हें यही बैठना होगा। बैठो।
0: लो, बैठ गया।
4: तुमने दया पूर्वक मुझे ये स्थान दिया है, और दूर रहकर भी मैं इसकी रक्षा करूंगी। अच्छा बताओ, मैंने काम से जो पत्र लिखा था उसे तुमने खोलकर उत्तर दिए बिना महेंद्र के हाथ वापस क्यों कर दिया?
0: मुझे तुम्हारा कोई पत्र नहीं मिला, और ना ही महेंद्र के हाथों मैंने कोई चिट्ठी वापस की।
4: अच्छा अब समझ में आया। सुनो, मैं सब बातें तुमसे कहती हूँ, विश्वास करोगे तो अपना सौभाग्य मानूंगी, ना करोगे तो तुम्हें दोष ना दूंगी।
0: ना ना ना, तुम्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं, बिना कुछ कहे ही मैं तुम्हारा विश्वास करता हूँ।

0: मैं खुद तुमसे घृणा नहीं कर सकता, बस अब तुम एक शब्द भी मत कहो।
1: तो भी बताए बिना जी न सकूंगी, मैंने तुम्हें मन में रखा है, इसलिए पवित्र बनी रही। आज मैं तुम्हारे चरणों को छूकर कहती हूँ, मेरा मूल्य नष्ट नहीं हुआ है, मेरा मूल्य नष्ट नहीं हुआ है।
2: अच्छा, तो अब रंग भूमि से महेंद्र का प्रस्थान और बिहारी का प्रवेश।
3: सुनो महेंद्र, तुम्हें विनोदनी का अपमान करने का अधिकार नहीं है, मैं उससे विवाह करूंगा। और सुन लो महेंद्र, तुम्हारी माँ मृत्युशैया पर पड़ी है, उसके बचने की कोई आशा नहीं है। मैं आज रात की गाड़ी से विनोदनी को लेकर चला जाऊंगा।
2: ठीक है, मैं जाता हूं।
1: सुनो, ये बात तुम्हारे मुंह से निकली कैसे? मेरा उपहास कर रहे हो?
3: नहीं, मैं सचमुच तुमसे विवाह करूंगा।
1: इस पापिष्ठा के उद्धार के लिए?
3: नहीं, मैं तुमसे प्रेम करता हूं इसलिए।
1: बस यही मेरा चरम पुरस्कार है, इतना जो तुमने स्वीकार किया है उससे अधिक मुझे कुछ न चाहिए। मिलने पर भी वो रहेगा नहीं, धर्म उसे कभी सहन नहीं करेगा।
3: क्यों नहीं करेगा?
1: जी, ये बात सोचने पर भी लज्जा होती है। मैं विधवा हूं, निंदिता हूं, समस्त समाज में तुम्हें लांछित करूं ये कभी नहीं होगा।
3: किंतु विनोदी, मैं तुम्हें प्यार करता हूं।
1: सुनो, दूसरे जन्म में तुम्हें पाने के लिए तपस्या करूंगी, इस जन्म में और कोई आशा नहीं करती। मुझसे विवाह करके तुम सुखी ना हो सकोगे, तुम्हारा गौरव नष्ट हो जाएगा, मैं भी संपूर्ण गौरव खो दूंगी। तुम सदा से निर्लिप्त और प्रसन्न रहते आए हो, आज भी वो ही बने रहो। मैं अन्नपूर्णा काकी के साथ काशी चली जाऊंगी।
3: भाभी, न जाने इस जिंदगी में फिर आपसे मिलना हो या ना हो, मैं तुम्हारी कोई निशानी अपने पास रखना चाहता हूँ।
1: जी।
3: भाभी, मैं क्या तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता?
1: तुम तो बहुत पहले ही मुझे तो दे चुके हो, वो मेरे शरीर का भूषण है, उसे मरते दम तक कोई नहीं ले सकता, मुझे और कुछ नहीं चाहिए।
3: मैं समझा नहीं, मैंने ऐसा तुम्हें क्या दिया है?
1: भूल गए लाला जी, क्या देखो?
3: अरे, ये तुम्हारे हाथ में चोट का निशान।
1: हाँ लाला जी, एक दिन गुस्से में घृणा के साथ तुमने मुझे धक्का दिया था ना, मेरे हाथ में चोट लगी, उस खाब का ये निशान उसी दिन से मेरी आत्मा का आभूषण बन चुका है।
3: भाभी,
1: लाला जी, भगवान तुम सबको सदा सुखी रखे, सदा सुखी रखे।

आंख की किरकिरी। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के बांग्ला उपन्यास चोखेर बाली के इस रेडियो नाट्य रूपांतरण का दूसरा और अंतिम भाग अभी आपने सुना। रूपांतरकार एवं निर्देशक नंदलाल शर्मा। ये हमारे आकाशवाणी जयपुर केंद्र की प्रस्तुति थी। इसी के साथ आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम संपन्न होता है।

आज हम एक ऐसे विषय उठा रहे हैं जिसमें स्पष्ट रूप से हमने से कई लोगों की रुचि है, कार्य और जीवन में संतुलन। स्वस्थ जीवन शैली के लिए रणनीतियां, चाहे आप यात्रा पर हो, व्यायाम कर रहे हो या बस एक शांत पल का आनंद ले रहे हो, आइए अपने पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन के बीच समंजस स्थापित करने के ठोस तरीके पर गौर करें। जिस दुनिया में हम रहते हैं उसके इस भवंडर में काम और जीवन के बीच उस मधुर स्थान को छूना एक तेज रफ्तार ट्रेन पकड़ने की कोशिश करने जैसी महसूस हो सकता है, लेकिन आप जानते हैं कि क्या ये सिर्फ एक पहेली से कहीं अधिक है। ये हमारी भलाई को बरकरार रखने और हमारी खुशी के स्तर को ऊपर रखने के लिए एक महत्वपूर्ण घटक है। जब तक ये प्रोग्राम खत्म न हो आप आराम से बैठ जाइए, क्योंकि हम कुछ व्यावहारिक रणनीतियों को उजागर करने जा रहे हैं। ये केवल आपकी सामान्य युक्तियां नहीं है, ये कार्य प्रतिबद्धताएं और व्यक्तिगत पूर्ति को संतुलित करने का नाजुक नृत्य के माध्यम से शानदार ढंग से चलने के लिए आपके भरोसेमंद रोड मैप की तरह है। तो चलिए शुरू करते हैं और इस संतुलन क्रिया को थोड़ा और अच्छा संतुलन बनाते हैं। तो अब दोस्तों इस तथ्य पर हाँ कहकर शुरुआत करें कि उस आदर्श संतुलन तक पहुंचना एक बार की मंजिल के बजाय निरंतर चलने वाला साहसिक कार्य की तरह है। इसे एक यात्रा के रूप में देखें, न कि एक पड़ाव के रूप में। चाल एक ऐसी लाए कि खोज करना है जो आपके लिए क्लिक करती है, कुछ ऐसा जो आपको अपने व्यक्तिगत जीवन और जुनून को बढ़ावा देने के साथ साथ उन पेशेवर कर्तव्यों को पूरा करने देता है। ये सब उस जगह को खोजने के बारे में है जहां आपका काम और व्यक्तिगत दुनिया समंजस स्थापित करती है, एक ऐसा माहौल बनाती है जो विशिष्ट रूप से आपका है। हाँ प्रिय श्रोता, काम में आपके समय का एक बड़ा हिस्सा लग जाता है और ऐसा महसूस होता है जैसे व्यक्तिगत गतिविधियां आपके शेड्यूल में लुका छुपी खेल रही है। तो आइए इस बारे में बात करें कि आत्म देखभाल कैसे करें, क्योंकि आप व्यस्त कार्यक्रम के बीच है, तरोताजा और विश्राम के उन क्षणों के हकदार है। तो आइए दोस्तों एक गेम चेंजर पर जूम इन करें, वह है सीमाएं निर्धारित करना। नॉनस्टॉप डिजिटल कनेक्शन के इस युग में काम उस दोस्त की तरह हो सकता है जो अपने स्वागत से ज्यादा देर तक रुकता है। काम के घंटे और व्यक्तिगत समय के बीच एक रेखा खींचना अपना खुद का जादुई मंत्र रखना जैसा है। यह अराजकता में संरचना लाता है और उस भयावह राक्षस के खिलाफ ढाल के रूप में कार्य करता है। दोस्तों हम सीमाएं तय करने की बात कर रहे हैं। आप जूम कॉल, ईमेल और कार्य से निपटने के एक दिन पूरा करते हैं। आप सोशल मीडिया पर लगातार स्क्रॉल करने के बजाय आप विराम कर सकते हैं। ये सीमाएं निर्धारित करने का जादू है, ये घोषणा करने के बारे में है, ठीक है काम करो, आपकी बारी है, अब ये व्यक्तिगत समय है। ये न केवल आपके निजी जीवन को काम के बोझ तले दबने से बचाता है बल्कि आपके मस्तिष्क को भी वह आवश्यक विश्राम देता है जिसका वो हकदार है। काम और फैमिली के बीच तालमेल रखना ही वर्क लाइफ बैलेंस कहलाता है मेरे दोस्तों। इस तालमेल के बिगड़ने से काफी कुछ बिगड़ सकता है, इसीलिए इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। फिट एंड फाइन रहने के लिए लाइफ में वर्क लाइफ बैलेंस का होना बेहद जरूरी है। कामयाबी के लिए घंटों घंटों तक मेहनत करना ठीक माना जाता है, लेकिन खुशहाल और हेल्थी लाइफ के लिए काम और फैमिली के बीच बैलेंस बनाइए, इसे वर्क लाइफ बैलेंस कहा जाता है। सरल शब्दों में कहे तो काम और फैमिली के बीच तालमेल रखना ही वर्क लाइफ बैलेंस है। आप प्रायोरिटीज फिक्स करें मेरे दोस्तों, प्राथमिकता तय करें। एक समय में एक ही काम करना चाहिए, इसके लिए सबसे पहले प्रायोरिटीज तय करना पड़ेगा। जो काम पहले जरूरी है उसे पहले करना चाहिए और गैर जरूरी कामों को बाद में करें। इससे पर्सनल लाइफ के लिए समय मिल जाता है। काम में जो छुट्टियां मिले उसे सही तरह मैनेज करें, जिससे घर के किसी जरूरी इवेंट मिस न हो। बात समझनी चाहिए कि जिंदगी में जो समय आ रहे हैं वो बीत जाएंगे और दोबारा नहीं आएंगे। फैमिली के साथ दोबारा टाइम भी नहीं मिलेगा, इसीलिए ऑफिस के काम के साथ साथ अपनी फैमिली और पर्सनल लाइफ को भी मैनेज करें। हर किसी के पास एक निश्चित समय है, इसीलिए टाइम को मैनेज करना सीखे। अगर एक काम निश्चित समय पर नहीं कर पा रहे हैं तो किसी दूसरे की मदद ले, इसके लिए

कभी भी हिचकिचाए नहीं। इससे काम आसानी से हो जाएगा और थकान भी आप पर हावी नहीं होगा। ऑफिस और फैमिली के लिए वक्त निकालते निकालते खुद को समय देना न भूले। अपनी हेल्थ के लिए खुद के लिए समय निकालना चाहिए। इस वक्त में जो काम आपको खुशी दे वही करें। इससे आप खुद को और दूसरों को खुश रख पाएंगे। हर चीज को पहले से प्लान करके चले, स्पेशली फॉर वर्किंग वुमेन। इस बात का ख्याल रखना जरूरी है कि आप अपनी पूरी दिनचर्या की सही प्लानिंग करें। इसके लिए आपको सही तरीके से टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट की सबसे पहली शर्त यह है कि आपको वक्त बर्बाद करने के बजाय इसको आपको फोकस करने के लिए यूज करना चाहिए। अपने बच्चों की रूटीन और फिर ऑफिस पहुंचकर वहां के कामों को पूरा करने का प्लान पहले ही करना चाहिए। हर काम का प्राथमिकता तय करें, जैसे कि मैंने आपने पहले बोला कि प्रायोरिटाइज योर वर्क। अपना होमवर्क समय पर करें, अपने लिए कुछ समय निकालें, जीवन साथी से खुलकर बात करें। वर्किंग वुमेन होने के नाते आपकी जिंदगी बिल्कुल सहज और सामान्यता तरीके से चले। इसके लिए आपको अपने जीवन साथी की मदद लेनी चाहिए। उसे हिचक तोड़कर सारी बातें करें और दोनों मिलकर घर परिवार की सारी जिम्मेदारियों को आपस में बांट लें। इससे आपको परेशानी नहीं होगी और काम भी आसानी से मिल बांट कर हो जाएगा। घर का काम ऑफिस, ऑफिस का काम घर पर न लाए। ये भी सुखी जीवन जीने का मूल मंत्र है कि घर के काम को कभी भी ऑफिस में न लाए। प्रोफेशनल की तरह बर्ताव करें और ऑफिस के काम को भी कभी घर पर न लेकर जाए। ऑफिस का सारा काम वही खत्म करके आए। जो महिला घर को और ऑफिस दोनों मैनेज करती है, उनके दिमाग में कई सारे बातें चलती रहती है। इससे इन्हें तनाव भी अधिक होता है। इससे कई बार डिप्रेशन के शिकार भी होते हैं। इसके लिए इन बातों का रखे ध्यान जो मैं आपको बोलने जा रहा हूँ। दोस्तों, जिंदगी में हर बात को बहुत अधिक गंभीरता से न लिया करें। किसी भी चीज के बारे में दिन भर सोचते न रहना। सकारात्मक चीजें करें और नेगेटिव बातों को दिमाग में लेने की कोशिश न करें। दिन में कम से कम समय ही सही मेडिटेशन जरूर कीजिएगा। काम को बाद में करने में भरोसा न छोड़ो। इससे आप अपने दिमाग को शांत रखकर अपने मेंटल हेल्थ को खुद मैनेज कर सकते हैं। कहने को ये बात आम लगती है, लेकिन ये सच है। घर परिवार और ऑफिस के चक्कर में कई बार हम खुद को पूरी तरह से भूल जाते हैं, लेकिन सेहत का ध्यान रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। आपका शेड्यूल कितना भी व्यस्त क्यों ना हो, अपनी सेहत के लिए थोड़ा वक्त जरूर निकाले। सुबह व्यायाम करने से दिन भर आपका दिमाग और शरीर अच्छा रहेगा। ये भी बेहद जरूरी है कि बड़ी खुशियों का इंतजार न करें। वक्त मिलते ही कम दिनों के लिए सही वेकेशन पर जरूर जाइए। कई परिवार के साथ घूमे और कभी बाहर खाने पर चले जाए या कभी फिल्म देखने जाए। कुछ नहीं तो नहीं, अपने घर के आसपास वाले पार्क में जाके वॉक कर लीजिए, अपने दोस्तों से मिलिए, कुछ अच्छा सा काम जो आपको अच्छा लगे करने में, जैसे कि आपके हॉबीज रहे होंगे, आर्ट, पेंटिंग, स्कल्पटिंग, ड्राइंग, म्यूजिक, डांस, जो भी आपको पसंद है ये सब आप कर सकते हैं और अपने आप को खुश रखिए। विद दिस लवली इन्फॉर्मेशन, दिस इज योर आरजे चेतन साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। आई विल गेट बैक टू यू इन आवर नेक्स्ट प्रोग्राम। टिल देन हैव अ ग्रेट टाइम। बाय। आप एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर द्वारा निर्मित और प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे सुन रहे हैं। अगर आप हमें लिखना चाहते हैं या कॉल करना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com।

0: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे।
1: लगा कि ये अलग ताप के नाटक हैं, इनके तेवर बहुत अलग हैं और आपने उसमें अपना बहुत कुछ झोंक दिया था और ये उम्मीद की जा रही थी कि इस डायरेक्टर के तत्व जल्दी चुक जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। वो क्या चीज थी जो लगातार आपको आगे प्रेरित करती रही और दूसरा दलित थिएटर मूवमेंट को आप लगातार जिंदा रखे रहे?
2: दलित थिएटर मूवमेंट की बात तो थी, जैसे मैंने कहा कि दो नाटक में तो मैं उसका हीरो था
1: जी,
2: नायक की भूमिका में था।

0: बाद दिल्ली जाने के बाद एक्चुअल उस मूवमेंट से मेरा संबंध थोड़ा सा विरल हो गया, कम हो गया, लेकिन मैं जो नाटक करता रहा
1: यस,
0: उसमें वो तत्व जो है, मतलब मैंने जिस काम के लिए मैं नाटक में आया था, मैं आज तक उसको भूला नहीं हूं। मैं नाटक में क्यों हूं ये मुझे बहुत अच्छी तरीके से मालूम है, मुझे कौन सा नाटक करना है ये भी मुझे बहुत अच्छी तरीके से मालूम है, मुझे कौन सा नाटक नहीं करना है कितना भी पैसा दे दो वो भी मुझे अच्छी तरीके से मालूम है। तो इसलिए मेरे नाटकों के जो विषय है, चाहे वो जुलवा है या जाने मन है, मुझे लगता है जिन लोगों की अभिव्यक्ति को, जिन लोगों की जिंदगी को, जिन लोगों के दबेपन को आवाज नहीं मिली है, मुझे लगता है उनको मैं अपने नाटक का विषय बनाता हूं।
1: हमेशा हाशिए पर जो लोग हैं,
0: हाँ, हाशिए पे जो लोग है, जो गांव के बाहर है, गांव के अंदर के भी नाटक किए मैंने, पर जो ज्यादातर जो विषय चुने मैंने वो गांव के बाहर है, उनको गांव में एंट्री नहीं है। अब देखिए झुलवा जोगते जोगतीनी पर है, एक झुंझ वार्याशी एब्सोल्युटली डायरेक्ट ये मेन स्ट्रीम कंटेंट था कि किस तरीके का भ्रष्टाचार पूरे सत्ता कारण में हो रहा है और उसमें इनोसेंट टैलेंट का बलि कैसे चढ़ाया जाता है, और वो भी जो जर्नलिस्ट है। उसके बाद मैंने नाटक किया दूसरा सामना जो सतीश आलेकर जी ने लिखा, जो हमारी ये शुगर सहकार मूवमेंट है उसके अंदर किस तरीके से फिर वही दलित का बलि कैसे चढ़ाया जाता है। पहला सामना तो जो था वो फिल्म थी, उसका सिक्वेल था जो लिखा गया कि जो दलित का बेटा है जो आईएएस है और आज वो अपर कास्ट का है क्योंकि उसको अडॉप्ट किया गया और उसको मालूम नहीं, और एक दिन अचानक उसको मालूम हो जाता है कि वो जिस जाति से और जिस संस्कार को बिलोंग करता है उसका है ही नहीं, जो भी आईएएस होने के बावजूद भी वो तो है दलित। उसके बाद जो टूटना है उसका, वो टूटना विक्रम गोखले वो रोल करते थे और दूसरा विनय आप्टे करते थे और तीसरा इला भाटे का पहला नाटक था
1: जी।
0: तो ये उस नाटक में भी वही बात अलग किस्म से थी, नाती गोती था, एक मिडिल क्लास फैमिली में एक एबनॉर्मल बच्चा पैदा होने के बाद उस फैमिली की वाताहत कैसे होती है, उस फैमिली की जिसको हम मराठी में वाट कैसे लग जाती है और उसके ऊपर क्या सॉल्यूशन है, इस तरीके का विषय था
1: जी।
0: जाने मन का बिल्कुल किन्नरों के जीवन पे विषय था उसका, लड़ी नजरिया पे डेमोक्रेसी की कैसी हम लोगों ने 12 बजा दिए हैं उस कॉन्सेप्ट के, और हम अपने तरीके की डेमोक्रेसी कैसे लाद रहे हैं, ये विषय था। तो जितने भी विषय हैं टी फुलरानी तक, रणांगण एक ऐसा विषय था कि ये भारतीय आदमी जीतता क्यों नहीं है, क्या ऐसे उसमें खून में, संस्कार में, उसके जीवन में ऐसा क्या है, ऐसा कौन सा वो विष घोला है जिसकी वजह से वो एक दूसरे को कोऑपरेट ही नहीं करता, ये बेदिली है, ये धोखा देना है, ये भारतीय स्वभाव में कैसे, और उसके बाद ज्यादा तो मराठी में कैसे हैं, पानीपत का थर्ड वॉर हम हारे क्या जीते, इसको लेकर वो सारा का सारा असेसमेंट था भारतीय मन का, भारतीय स्वभाव का, बिल्कुल बहुत तटस्थता से किया हुआ और जो नाटक बहुत अंतर्मुख करता था
1: जी,
0: और जिसके 700-750 शो, मतलब दैट वाज सपोज टू बी फर्स्ट 70 mm प्ले ऑन मराठी स्टेज,
1: बिल्कुल,
0: जिसमें भानु अथैया गांधी फिल्म के लिए जिनको ऑस्कर मिला था, उन्होंने जीवन में पहली बार नाटक के लिए कॉस्ट्यूम किए,
1: वाह,
0: मंगेश पाड़गांवकर जी ने गाने लिखे,
1: क्या बात है,
0: ये ऐसे ऐसे दिग्गज, पहले कुसुमाग्रज गाने लिखने वाले थे पर उनकी तबीयत ठीक नहीं रही, फिर उसके बाद फिर हमने मंगेश पाड़गांवकर जी से गाने लिखवाए, अनंत अम्मेम्बल ने उसमें म्यूजिक किया, ये सारा का सारा मुझे लगता है कि वो भी एक अलग किस्म का विषय था। तो लेट्स पीढ़ी दर पीढ़ी हम ये कह रहे कि हमारे पास जीतने का जज्बा क्यों नहीं है, जीतने के बाद भी हमारे आसपास क्या है कि दिल्ली मराठों ने जीतने के बाद भी उस समय मराठों को दिल्ली के गद्दे पे नहीं बिठाया, हमारे नेता ने क्या थी उसके पीछे की सोच, क्योंकि उससे पहले ही हमारे कारोबारियों ने दिल्ली पंजाब के राजा को भेज दी थी
1: जी।
0: तो ये जो है एक दूसरे के ऊपर कुरघोड़ी करने का स्वभाव है, एक तरीके से धोखा देने का स्वभाव है, कभी भी कोई भी आदमी एक दूसरे से बेदिली करने का स्वभाव जो है, इसको उस नाटक में क्या कहते हसीये पे रखा था, और वो एक नाटक लोगों को लगा था पानीपत थर्ड यू आर जैसे हार गए वैसे ये नाटक भी बहुत जोर से गिरेगा, उसकी आवाज सुनने के लिए सारे कान बेताब थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उस नाटक ने जो खौफ है मराठी मानस में कुछ भी

0: हुआ तो पानीपत हुआ बोलते हैं हम उसका, डिजास्टरस एक्सपीरियंस इज पानीपत। तो उस पानीपत शब्द से हमने, उस नाटक ने लोगों को बाहर निकालने का काम किया। पानीपत वॉज नॉट डिजास्टर बट इट वॉज द बिगेस्ट वॉरफेयर प्लेड बाय मराठाज हेल्प ऑफ अदर पीपल इन इंडिया, और जिसमें मुसलमान भी थे
1: जी।
0: तो ये भूमि पे प्यार करने वाले लोगों का जो एक गठ्ठा था, वो मरते दम तक एक दूसरे के लिए लड़ते रहे, मरते रहे, उसकी कहानी थी ये रणांगण।
1: क्या बात है। और फिर ती फूल रानी आया,
0: उसके बाद ती फूल रानी आया, उसके बाद ये मध्यम व्यय आयोग किया। जब एकेडमी ऑफ थिएटर आर्ट्स का पहला प्रोडक्शन कौन सा किया जाए, तो हमने कहा चलो परंपरा से शुरू किया जाए। कालिदास भास ये पहला नाटककार माना जाता है, तो हमने उनके मध्यम व्यय आयोग से शुरू किया। उसमें भी मुझे हिडम्बा है वो मुझे दिखाई दी, मैं क्योंकि केरल में रहा था, द्रविड़ में मातृसत्ता कुटुंब पद्धति है और आर्य में पितृसत्ताक है, तो उनकी जो प्रेम की कहानी है भीम की और हिडम्बा की और उनका बेटा जो घटोत्कच है, मुझे लगा कि जो औरत हमारे स्वार्थ से परे हैं, स्वार्थ के अड़े आती हैं, जो भी है, हम किसी को डेरोगेटिव टर्म इस्तेमाल करना चाहते हैं उसको हम हिडम्बा बोल देते हैं। अरे यार उसके हिडम्बा के क्या चक्कर में आता है, मतलब देखने में वो खूबसूरत भी हो तो जो हमारे स्वार्थ के आड़े आता है उसका कैरेक्टर असेसिनेट करने का हमारा पुराना स्वभाव है।
1: जी जी जी,
0: उस स्वभाव को पकड़कर वो नाटक बनाया हुआ है। और फिर आर्य और अनार्य के बीच की जो राजनीति है वो जेंडर बेस्ड भी है, वो क्लास बेस्ड भी है, वो हर तरीके की राजनीति है। और वो जब सवाल पूछती है भीम को, और बेटा सवाल पूछता है कि आप कहाँ गए थे, बच्चा पैदा होने से लेकर बच्चा बड़ा होने तक, वॉरियर होने तक वो वापस आके देखा नहीं उन्होंने, उसके बारे में जो सवाल पूछती है बोलती है कि अगर होती मैं आर्य स्त्री तो क्या होता आपका यही उत्तर।
1: वाह,
0: तब तो राजदरबार बैठते, तब तो तहकीकात होती, चर्चाएं होती, न्याय मंडली बैठती, न्याय होता। चूंकि मैं आर्य नहीं हूं इसलिए आपको लगा कि यू कैन इग्नोर मी। तो इस तरीके के मुझे लगता है बहुत बुनियादी जो सवाल है हमारे ही समाज के विसंगति के, वो कहीं ना कहीं मेरे नाटक उठाते हैं। और वो केवल कोई सेंसेशन क्रिएट करने के लिए नहीं उठाते हैं, मुझे लगता है वो अंतर्मुख करने के लिए उठाते हैं। क्योंकि नाटक का मूल जो स्वभाव है वो किसके लिए नाटक करना है
1: जी,
0: नाटक केवल लोगों को हा हा हू हू करके जाओ घर में,
1: केवल मनोरंजन,
0: केवल मनोरंजन के लिए नाटक नहीं, मनोरंजन तो रुलाना भी है। नौ रसों में से कोई ना कोई एक रस ऑडियंस के मन में पैदा करना नाटक का मूल रस है, मूल स्वभाव है, मूल चिंतन है, मूल भाव है। हम ये कहते हैं कि नाटक इसीलिए करते हैं ताकि हम समाज को उसका आईना दिखाए।
1: बिल्कुल,
0: उसमें विसंगतियां क्या है, संगतियां क्या है, अच्छा क्या है, अच्छा क्या नहीं है, वो आईना दिखा के हम समाज में एक अच्छा समाज कैसे हो, कल्याणकारी समाज कैसे हो, ये करने के लिए, एक आशावादी दृष्टिकोण देने के लिए नाटक होता है। वो हमेशा ऐसा नहीं है कि व्यवस्था के खिलाफ कोई विद्रोह बार बार दिखाने के लिए नहीं है
1: जी,
0: पर वो विसंगतियां हैं, जो विरोधाभास है, वो सारा तो दिखाना नाटक का काम है ना। सिनेमा नहीं करेगा, नाटक नहीं करेगा, साहित्य नहीं करेगा, पेंटिंग नहीं करेगी तो कौन करेगा।
1: बिल्कुल, यहां एक गाने की जगह बनाते हैं।
0: क्या बात है।

0: समाज को समृद्ध भी करना है, संवेदनशील भी करना है और आगे अच्छा समाज बनाने के लिए सोच के लेवल पर अग्रेसर भी बनाना है। इसके लिए ये मुझे लगता है कला दालन है।
1: बिल्कुल,
0: ये संस्कृति का दालन यही है कि वो आपको एनरिच करता है
1: जी,
0: एक आपके दायरे का विस्तार करता है, सोच का विस्तार करता है, आपकी दिमाग में जो दीवारें आपने बनाई है उसको ढाने का काम करता है, क्योंकि आखिरी इंसान और आप दोनों एक ही है, क्योंकि आप एक भूमि के हैं।
1: बिल्कुल,
0: आप एक हैं क्योंकि नैसर्गिक अधिकार आपको दोनों को एक ही दिया है और जिसका नाम है शांति से जीना। मुझे लगता है वो नाटक का मूल पर्पज है। अब वो पर्पज हम किस एंगल से दिखाए वो आपका तरीका है। अगर हम बीरबल की एंगल से दिखाए तो बीरबल वही करता था जो अकबर को विसंगतियों का, विरोधाभास का वो आईना ही तो दिखाता था। वो भी नाटक ना करे तो कौन करेगा, वो भी सिनेमा ना करेगा तो कौन करेगा। इसीलिए मुझे लगता है कि कोई भी व्यवस्था में नाटक का रोल यही होता है, व्यवस्था को अपना मन खुला होकर। इसीलिए एक कहावत है ना कि एक ऐसा कहते हैं कि अगर किसी भी समाज को आपको समझना है, मान लीजिए आप यूरोप गए या किसी भी समाज में, कोई भी देश में चले गए, आपको उस समाज को फास्ट समझना है तो आप जाके उसके 5-6 नाटक देख लीजिए।
1: क्या बात है,
0: उस समाज का आकलन उस 5-6-7-8 नाटकों में से जो आपको जितने जल्दी मिलेगा उतना एक साल भर रहने से नहीं मिलेगा। क्योंकि वो आईना दिखाता है। अगर ये सच्चाई है तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये निराशावाद है, ये तुलनात्मक फैसिलिटी का कम आंकना है एक दूसरे को, ये जो दीवारें खड़ी करना है इंसान इंसान में, वो चाहे धर्म की है, जाति की है, परंपरा की है, वर्ण की है, वर्ग की है, कुल की है, परिवार की है, इससे क्या बनने वाला है
1: जी?
0: इससे कुछ नहीं बनने वाला। अगर हमें एक स्ट्रेंथफुल देश बनाना है, विश्वगुरु बनाना है, तो हमें सारे समाज की सारी क्षमताओं को साथ लेकर इस देश का जब विकास करेंगे तो हमें किसी के सामने हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। आप हमें विश्वगुरु बनाइए
1: जी। एनसीपीए में एक रिकॉर्ड आपने कायम किया था, एक ही दिन में 3 अलग अलग भाषाओं के नाटक हुए।
0: ये मध्यम व्यायोग नाटक जो था, इसको मैंने हमारे एकेडमी के विद्यार्थियों के लिए एज अ डेमो ऑफ क्लासिकल इंडियन थिएटर किया था। उसके बाद एक 10-12 शो के बाद वो खत्म हो गया और मैं भूल गया उस नाटक को। ये 2004 में किया था, 5 साल में वो बैच निकल गई, उसके बाद भूल गए। कुछ सालों बाद जैसे मैंने कहा कि भास ने जो लिखे हुए नाटक में जो अधूरे छोड़े हुए थ्रेड्स है उसका कहीं ना कहीं मुझे हंट आउट करने लगे। बेटा भी पूछ रहा है और माता भी पूछ रही हिडम्बा भीम को, वो सारे सवाल बाद में दिखाई देने लगे। और मैंने कहा कि यार ये बहुत इंटरेस्टिंग नाटक हो सकता है, इसका नया संस्करण तैयार करना पड़ेगा, ये रंगावृति नई तैयार करनी पड़ेगी, जहां भास रुके हैं उसके आगे भी तो हम नाटक को ले जा सकते हैं। इसको लेके हमने वो नाटक करने की बात सोची, पहले मराठी में करते हैं, फिर करते करते पता चला हम हिंदी में क्यों ना करें इसको।
1: क्या बात है,
0: तो हमने हिंदी में उसका ट्रांसलेशन करके उसकी शुरुआत की। फिर ऐसा लगा कि यार ये हिंदी मराठी तो

0: ठीक है, लेकिन जो कुछ मराठी या हिंदी भाषी लोग हैं, जिसको जब तक आप अंग्रेजी में कुछ नहीं करते तब तक वो आपको समझना नहीं चाहते, अपनी संस्कृति को समझना नहीं चाहते, उनके लिए हम अंग्रेजी क्यों ना करें।
1: अब तीन भाषाएं हो गई
0: तो तीन भाषाओं में हमको लगा कि एक ही टीम के साथ करें, नहीं तो बड़ी सर्कस हो जाती। तो इसीलिए सारे मराठी स्पीकिंग एक्टर्स है मूलतः, उसी को हिंदी भी सिखाई, उसमें से बहुत सारे लोगों को अंग्रेजी आती थी, कुछ लोगों को बिल्कुल नहीं आती थी, तो वो अंग्रेजी भी हमारी इंडियन इंग्लिश है। तो ये सारे तीनों भाषाओं में 3 जुलाई 2011 को एनसीपीए के एक्सपेरिमेंटल थिएटर में इस नाटक को लेके हमने सोचा कि इसका शुभारंभ करेंगे
1: जी,
0: और तीनों नाटक एक ही दिन में ओपन करेंगे, एक ही टीम, एक ही डेट, एक ही थिएटर।
1: वाह।
0: तो हमने दोपहर 2 बजे मराठी में नाटक ओपन किया, वही नाटक प्रिया बावरी, उसके 3 अलग-अलग नाम जानबूझ के रखे, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाता कि मराठी कौन सा है, हिंदी कौन सा है। दोपहर 4:30 बजे हमने वही से नाटक किया मोहे पिया हिंदी में, और शाम को 7 बजे वही नाटक किया हमने ओ माय लव इस नाम से, वही नाटक तीनों भाषाओं में, सेम फॉर्म, सेम कॉस्ट्यूम, एवरीथिंग इज सेम, भाषा अलग है, गाने अलग है, सब अलग है।
1: गजब।
0: और ये विश्व रिकॉर्ड बन गया, और आज तक वो विश्व रिकॉर्ड ऐसे ही है, अभी तक किसी ने तोड़ने की कोशिश नहीं की उसको, तो हम ही शायद तोड़ने की कोशिश करेंगे कि इसको और एक भाषा में, गुजराती में करके 4 भाषाओं में एक ही दिन कर लेंगे। तो इसको लेकर ऐसा काम हो गया, और उस नाटक ने पूरे देश में गजब ढा दिया
1: जी।
0: मराठी में हमने 150-200 शो किए, हिंदी में अभी भी वो चल रहा है मोहे पिया, अभी 300 शो होने को आए अलग से हिंदी में
1: जी,
0: वो कभी हम सेलिब्रेट करेंगे आने वाले कुछ दिनों में। अंग्रेजी के भी हमने 70-75 शो किए, तो हम ये 15 दिन की नोटिस पे हम किसी भी भाषा में ये नाटक कर सकते हैं।
1: क्या कमाल है।
0: हाँ, तो अभी बहुत सारे भारत भवन में भी, दिल्ली में भी संगीत नाटक अकादमी है या और कोई है, वो चाह रहे कि ये इस तरीके का एक प्रयोग हम दिल्ली में भी करें या और शहरों में भी करें, इस तरीके के आमंत्रण न्योते आ रहे हैं, अब हम उसके ऊपर भी सोच रहे हैं।
1: एक और कमाल है आपका, एनएसडी के दोनों अवार्ड्स आपको मिले।
0: जैसे एक संगीत, क्योंकि हमारे देश में एक ही अवार्ड था जो संगीत नाटक अकादमी का पुरस्कार मिलने के बाद एक आपका रुतबा माना जाता था, कि आपके योगदान को माना जाता था। मैं ये अनुपम खेर जी चेयरमैन थे, तब उन्होंने मुझे सोसाइटी का मेंबर बनाया। उसी समय हमने ये कहा कि भाई पूरे देश को, संगीत नाटक अकादमी तो पूरे देश को लेकर काम करती है, अब उसमें ज्यादातर अलग अलग भाषाओं में एनएसडी के लोगों का भी कंट्रीब्यूशन बहुत है, पर अवार्ड देते समय ये तो ध्यान में रखा जाएगा कि भाई हर साल एनएसडी एल्युमिनाई को तो वहां अवार्ड नहीं दिया जाएगा ना।
1: जी,
0: दूसरे भी भाषाओं के लोग है, और भी लोग है जिन्होंने भारतीय थिएटर को जिंदा रखा है, और उनका कॉन्ट्रीब्यूशन भी उतना ही स्वाभिमान पूर्वक है। तो हमें ये काम करना चाहिए, हमें 2 अवार्ड स्टार्ट करने चाहिए, नहीं तो बूढ़ा होने तक, जब तक उसको 2 आदमी उठा के पकड़ के ले जाते तब उसके बाद अवार्ड देके उसका इंस्पिरेशन क्या है
1: जी।
0: तो हमने एक सुझाव दिया था कि भाई ऐसे 2 अवार्ड, एक 50 साल के ऊपर जो रंगकर्मी ने आउटस्टैंडिंग काम किया है एनएसडी के एल्युमिनाई ने, उसको एक अवार्ड दिया जाए, और 50 के नीचे जो भी नया हो 20-25 साल से लेके, उस रेंज में एक अवार्ड दिया जाए, ताकि एनएसडी जब एल्युमिनाई को अवार्ड देगी तो वो भी राष्ट्रीय पुरस्कार है
1: जी,
0: तो हम एनएसडी के एल्युमिनाई को ही इंस्पायर करें, ज्यादा से ज्यादा लोग थिएटर करते रहें, काम करते रहें। तो फिर वो सोसाइटी ने मंजूर कर लिया, और एक युवा जो आवास पुरस्कार था उसको मनोहर सिंह स्मृति पुरस्कार के हैसियत से उसका नाम दिया, और जो दूसरा था जो सीनियर को मिल रहा है वो बीवी कारण स्मृति पुरस्कार
1: जी,
0: और हम भूल गए वो सोसाइटी में, फिर उन्होंने कोई कमेटी वगैरह बिठा दी, और पहला ही जो पुरस्कार डिक्लेयर किया कि जो सीनियर कैटेगरी में पुरस्कार जो दिया गया बीवी कारण पुरस्कार, वो रतन थियाम जी को दिया गया,
1: आपके गुरु।
0: हाँ, हमारे गुरु मतलब
1: जी।
0: और दूसरा जो पुरस्कार युवा रंगकर्मी का पुरस्कार, तो वो अमन केंद्रे को दिया गया।
1: क्या बात है।
0: तब तक के लिए योगदान के लिए। तो ये सिलसिला चलता रहा, और जब मैं एनएसडी छोड़ने के बाद, मतलब मेरा टर्म खत्म होने के बाद, 2-3 साल वो अवार्ड दे नहीं पाए थे कई कारणों की वजह से, उसके बाद 2-4 साल नहीं दे पाए थे।
2: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders

0: लेकिन एक रिकॉर्ड और भी तो है कि वहीं पढ़ के वहीं के डायरेक्टर भी बने
1: जी,
0: और एक तूफानी कार्यकाल आपने किया जिसमें बहुत वाइब्रेंट काम वहां।
1: यस, मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मेरे पहले भी कई सारे, मतलब जब बीवी कारंद भी वहीं पढ़े थे वो डायरेक्टर हुए थे, ही वाज फर्स्ट एग्जांपल
0: जी।
1: उसके बाद बीएम शाह तो एनएसडी में नहीं पढ़े थे, लेकिन रतन थियाम हो गए, पर उन्होंने अपना डायरेक्टर का कार्यकाल पूरा नहीं किया, पर हुए वो भी। मोहन महर्षि हुए, पर उनके कार्यकाल छोटे छोटे रहे, मोहन महर्षि 2 साल के लिए रहे। उसके बाद कीर्ति जैन रही, उसके बाद अंकुर जी रहे
0: जी।
1: तो ये सारे जो थे वो वहीं पढ़े और वहीं डायरेक्टर हो गए। पर महाराष्ट्र का ये पहला रंगकर्मी था जिसको सम्मान पूर्वक वहां पर विद्यार्थी के हैसियत से नहीं, पर बाहर के कंट्रीब्यूशन के हैसियत से आमंत्रित किया गया एज डायरेक्टर ऑफ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, जो वहां पढ़ा था और उसके बाद डायरेक्टर बना, कि महाराष्ट्र के इतिहास में ये तो दर्ज हो ही जाएगा। पर वहां के इतिहास में भी जो बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्टर ने कंट्रीब्यूट किया, उसमें से थोड़ा बहुत नाम तो ले ही लेंगे लोग, ऐसा लग रहा है। तो इसीलिए भी वो कार्यकाल वाइब्रेंट रहा, ऐसा लोग अब कह रहे हैं। तब तो क्या होता है कि कोई भी कार्यकाल का महत्व योगदान रजिस्टर होने के लिए बीच में काल जाना चाहिए होता है, थोड़ा समय देना पड़ता है। तो अब लोग कह रहे हैं कि दैट वाज वन ऑफ द गोल्डन पीरियड ऑफ द नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। वो इतना ही था कि मैं बहुत ईमानदारी से काम करने गया था, जितना संभव है 24 घंटे

0: से 36 घंटा कैसे हो सकता है। ये कोशिश करके मुझे लगता है कि वहां की खूबसूरती, मतलब कैंपस की खूबसूरती, कैंपस का आर्टिस्टिक होना, एकेडमिक जो हमारी गतिविधियां हैं उसको पुख्ता करना, जितनी विद्यार्थियों की समस्याएं हैं उसको पहले सुनना, क्योंकि अल्टीमेटली नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा बाकी चीज़ों के लिए नहीं, पहले विद्यार्थियों के लिए बनी हुई है
1: जी,
0: वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर उसमें क्या क्या, मैं था तब उस समय में कौन सा माहौल था, फिर क्या खामियाँ थी, क्योंकि मैं यहाँ मुंबई विश्वविद्यालय में 10 साल एकेडमी ऑफ थिएटर आर्ट्स खड़ा कर चुका था, तो यहाँ क्या प्लस पॉइंट्स है, वो सारे उसमें ढालते ढालते ढालते ढालते एक बहुत स्ट्रॉन्ग एकेडमिक स्ट्रेंथ वाले विद्यार्थी पैदा हो, ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को एक्टिंग में काम मिले, जो एक्टर्स है डायरेक्शन में, डायरेक्टर को स्पेशलाइजेशन 3 कर दिए, 2 ही थे, एक एक्टिंग था और डिजाइन एंड स्टेज टेक्निक्स था, तो इसमें से डायरेक्शन हटाता तो वो डिजाइनर को ही डायरेक्ट करने के लिए बोल देते थे, तो मैंने कहा ये उसके साथ न्याय नहीं हो रहा है ना, डायरेक्टर एक सेपरेट टेम्परामेंट है, वो अलग स्वभाव है, डिजाइनर एक अलग स्वभाव है, एक्टर एक अलग स्वभाव है, तो सिलेक्शन से ही फिर हमने वो सारा माहौल बदलने की कोशिश की और तीनों स्पेशलाइजेशन वापस शुरुआत करके, तो एक ही साथ एक बैच के साथ दो दो नाटक करने से एक्टर को काम मिलना शुरू हो गया, और जो एक्टर भी और डायरेक्टर भी, तो दोनों को भी ये कॉन्फिडेंस मिलना, और डिजाइनर कॉमन होते थे, उनको तो दो दो प्रोडक्शन में काम करने का मौका मिलता था, फिर उनको अपना डिप्लोमा प्रोडक्शन तो करना ही करना है, तो इस तरीके से मुझे लगा कि एकेडमिक माहौल बहुत स्ट्रांग बन गया, फैकल्टी जितनी संभवतः देश की और दुनिया की लाने की कोशिश की गई, तो ये सारा है। उसके साथ साथ उसका विस्तार किया, जो लोग कहते थे कि वो नेशनल नहीं बचा है, उसका थोड़ा सा स्वभाव दिल्ली के आसपास का बना है, तो हमने कहा ऐसा नहीं है, हम उसको डिसेंट्रलाइज कर लेते हैं, मतलब एकेडमिक एक्टिविटी तो रहेगी लेकिन उसका विस्तार हो। मतलब मेरे दिमाग में ये था कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा केवल एल्यूमिनाई को ये ना लगे कि ये हमारी संस्था है, पर जो भी थिएटर कर रहा है, वो चाहे एमेटर थिएटर कर रहा है, चाहे प्रोफेशनल कर रहा है, चाहे पैरेलल कर रहा है, चाहे एक्सपेरिमेंट कर रहा है, चाहे मूवमेंट की हैसियत से थिएटर कर रहा है, चाहे चिल्ड्रन थिएटर कर रहा है, कोई भी किस्म का थिएटर कर रहा है, फार्मर का कर रहा है, कामगारों का कर रहा है, वो हर किसी को कोने में खड़े हुए किसी खेत में थिएटर करने वाले आदमी को ये लगना चाहिए कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा मेरी है,
1: वाह,
0: और मैं वहां जा सकता हूं, या वो मुझ तक पहुंच सकती है और मुझे लाभ दिला सकती है, वो ट्रेनिंग के लेवल पर हो, फेस्टिवल के लेवल पर हो, इसीलिए ट्रांसपेरेंसी इन सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्शंस इन फेस्टिवल्स यहां से हो, क्वालिटी इज द ओनली क्राइटेरिया।
1: यस,
0: मैं हमेशा ये कहता था, भारत रंग महोत्सव हो या कोई भी फेस्टिवल हो, चाहे जिसने बचपन हो, बाल संग हो, कोई भी हो, या हमारे आदि क्या कहते हैं, ये क्लासिकल थिएटर का फेस्टिवल हमने शुरू किया, नॉर्थ ईस्ट में अलग फेस्टिवल शुरू किए, इस सब में एक ही था, क्वालिटी इज इन सेंटर। मैं ये कहता था भारंगम में कि अगर कल को मेरे पिताजी का नाटक आता है और यहाँ कंसीडर करने के लायक नहीं है, तो उस डीवीडी को फेंक दो और तोड़ दो, कोई पर्सनैलिटी नहीं, कोई मेरा नहीं है, कोई तेरा नहीं, कोई किसी का नहीं है, जो थिएटर क्वालिटी का काम करता है वो हम सबका है।
1: क्या बात है।
0: और उसको ही सेंटर में रख के कोशिश यही की गई कि 5 साल उस NSD का जो क्वालिटेटिव माहौल है उसको भी एनहांस करने की कोशिश की गई, बहुत विनम्रता के साथ ये सब कह रहा हूं। दूसरा मुझे लगा कि जो विस्तार होना चाहिए था उसका, जैसे बंगलोर में हमारा एक सेंटर था पर वो रिसोर्स सेंटर बन के रह गया, तो हमने कहा ये तो कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, तो उसको कन्वर्ट किया 1 साल के ट्रेनिंग प्रोग्राम में, और वहां बच्चों को स्कॉलरशिप देके अब वहां 20 बच्चे हर साल पढ़ते हैं। जो एक सेंटर नया क्लासिकल थिएटर में, जो हमारी धारणा थी कि एक संस्कृत शैली का थिएटर जो करना चाहता है, सीखना चाहता है, कहीं और से थिएटर सीख के आया और उसको स्पेशलाइजेशन करना है, उसके लिए मौका ढूंढना चाहिए, रखना चाहिए, इसलिए वाराणसी में 1 साल का कोर्स शुरू किया, सेंटर शुरू किया, और वो क्लासिकल इंडियन ड्रामा सीखने के लिए
1: जी।
0: जो सिक्किम का सेंटर था वो 1 साल का था, हमने कहा इसको 2 साल करिए, फिर उसको 2 साल करने का सारा जो कुछ था उसको करने की कोशिश की। एक त्रिपुरा में था, वो केवल टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए था, तो हमने कहा नहीं है, वो केवल टीचर्स ट्रेनिंग जो थिएटर एजुकेशन में निर्माण करना इतना ही उसका काम नहीं है, आर्टिस्ट

0: निर्माण करना भी उसका काम होना चाहिए, थिएटर प्रैक्टिस भी होनी चाहिए, प्रैक्टिशनर भी निर्माण करे और हम टीचर भी निर्माण करे। इसी के लिए वो सेंटर, और दोनों सेंटर नॉर्थ ईस्ट कन्फाइंड हो कि वहाँ के लोगों के लिए बनाएं, तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उस 7 और 8 स्टेट को होना चाहिए। तो इस तरीके से मुंबई सेंटर का जो लेआउट था वो पूरा सैंक्शन करके रखा था। जम्मू कश्मीर में भी अभी अभी सेंटर खुल गया मेरे आने के बाद, तो ये सारी बहुत अच्छी चीज़ें वहाँ करने का मौका मिला। फिर थिएटर ओलंपिक्स एक सबसे बड़ी जो मतलब भारत रंग महोत्सव को तो हमने ये तो किया ही किया, पर एक दिन मुझे अचानक पता चला कि थिएटर ओलंपिक्स नाम की कोई एक चीज होती है। तो जब मैंने उसका इतिहास ढूंढने की कोशिश की तो जो पहले ओलंपिक होता था जो स्पोर्ट्स का है उसमें स्पोर्ट्स भी होता था, उसमें थिएटर भी होता था, म्यूजिक भी होता था, डांस भी होता था, विजुअल आर्ट्स भी होती थी, ये सब मिलके ओलंपिक होता था।
1: ओके
0: पर आगे चलकर स्पोर्ट्स वाले ने उस प्लेटफॉर्म को हाईजैक किया और ये सब पीछे छूट गए। फिर थिएटर के कुछ लोग इकट्ठा आ गए और उन्होंने कहा कि यार हम इसका हिस्सा थे, एक अच्छा प्लेटफॉर्म हमारे हाथ से गया। तो कुछ विद्वानों ने, थिएटर के रंगकर्मियों ने ये तय किया कि हम अपना थिएटर ओलंपिक्स क्यों ना शुरू करें, और फिर वो शुरू किया। पहला वो ग्रीस में हुआ और ये मुझे पता चला फिर बाद में तुर्की में हो गया, फिर कहीं जापान में हो गया, चाइना में हो गया, कनाडा में, यहाँ वहां हो गया, और 8वां होना है ये मुझे पता चला। तो मैंने अपने सोसाइटी से कहा कि भाई ये ओलंपिक अगर हमें मिलता है तो हमको लेना चाहिए। फिर हमारी मिनिस्ट्री है जो केंद्र सरकार की, उनको कहा तो उनकी परमिशन ले ली और 8वां थिएटर ओलंपिक्स भारत में हो इसके लिए हमने कमिटी से रिक्वेस्ट की। तो उन्होंने कहा हमें आके आपका इंफ्रास्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। तो हमने बुलाया उनको, आइए, न्योता दिया, वो आए, सब देख लिया, दिल्ली देखा, मुंबई देखा, ये 2-4 जगह देखा, और उन्होंने कहा नहीं है, ओलंपिक होने लायक तो यहाँ है सारा इंफ्रास्ट्रक्चर और NSD कैन हैंडल इट, क्योंकि इंटरनेशनल फेस्टिवल तो हैंडल करती ही है। तो फिर उन्होंने वो हमको मौका दिया और सौभाग्य की बात है कि 51 दिन का तो 8वां थिएटर ओलंपिक्स हो गया जो 17 राज्यों में हुआ, जम्मू कश्मीर से लेके त्रिवेंद्रम तक और इधर मणिपुर और गुवाहाटी से लेके आसाम से लेके इधर अहमदाबाद तक, मुंबई, बंगलोर, चेन्नई, भोपाल, जयपुर, कोलकाता, भुवनेश्वर, ये सारे उसके सेंटर थे। 17 सेंटर में 51 दिन में हमने 450 नाटक, 32 देशों का पार्टिसिपेशन, ये मेजर नाटक जो मेन थिएटर में किए उसी को यूथ से जोड़ने के लिए हमने 300 कॉलेज और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के 300 नाटक सेलेक्ट करके, मतलब उसमें भी 1100 नाटक आए थे, एक कमेटी ने 300 नाटक सेलेक्ट किए, वो 300 शो और फोक, ट्राइबल और स्ट्रीट प्लेयर्स जो है हमारे संस्कृति के आधार स्तंभ, वो कव्वाली से लेके सारा कुछ, तो उनके 600-650 शो,
1: तो ये तो कितने,
0: ये लगभग 1500 शो, 1500 शो हमने उसमें 51 दिन में किए और जिसमें 25-26 हजार आर्टिस्ट इन्वॉल्व हो गए देश के और दुनिया के।
1: तो बहुत भव्य आयोजन,
0: बहुत हो गया। ये ऐसा माना गया कि ये भारत के इतिहास का नहीं, रंग जगत के इतिहास का नहीं, नाटक जगत के इतिहास का नहीं है, दुनिया के इतिहास का, नाटक जगत के इतिहास का सबसे बड़ा इवेंट किसी ने किया हो तो भारत देश ने किया, और वो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने किया और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने किया।
1: वाह वाह,
0: ये मुझे लगता है उसका इम्पैक्ट हुआ। और एक बहुत अच्छी बात है, जितने नाटक वाले थे हमने 125 डायरेक्टर को इनवाइट किया जिन्होंने भी कुछ कंट्रीब्यूट किया जिस किसी भी भाषा में, उनको हमने हाथ जोड़ के विनम्रता पूर्वक इनवाइट किया कि भाई आप अपना बेस्ट प्रोडक्शन लेके इसमें शामिल हो जाइए। अब 125 तो नहीं हो पाए लेकिन 105 इनवाइटेड डायरेक्टर ने उसमें नाटक किए।
1: वाह,
0: कॉम्पिटेटिव फेस्टिवल में हमने कहा था कि उसमें 1200 नाटक आ गए, उसमें से 250 नाटक चुन लिए गए और विदेशी नाटक 32 देशों के नाटक आ गए। तो ऐसा मिलाकर ये दुनिया का सबसे बेहतरीन और सबसे बड़ा इवेंट हो चुका है, और इतना बड़ा क्वालिटेटिव थिएटर फेस्टिवल मुझे लगता है कि दुनिया के इतिहास में पहली बार हुआ। उसके बाद तो एक्टिविटी चलती रहती है, तो ये भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है भारत के लिए और सौभाग्य से नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के लिए, और उसका

0: सिनेमा के आकर्षण से आप कैसे बचे रहे अपने पूरे जीवन काल में?
1: नहीं, मुझे मालूम था कि मुझे पहले अपनी स्पेस नाटक में पैदा करना जरूरी है, क्योंकि मेरी जगह है। मैं कहीं भी जाऊं, भूला भटका हो जाऊं, पर गिरने के बाद मुझे अपनी एक जगह चाहिए, वो पुख्ता जगह तैयार होना जरूरी था। पर वो क्या हो गया कि मैं एकेडमिक से डिस्कनेक्ट नहीं हो पाया पहले से ही।
0: जी जी,
1: एनएसडी हो गया, रिसर्च हो गया, आके एनसीपीएम में 10 साल, फिर वही एसोसिएट हो गया, फिर मुंबई यूनिवर्सिटी में 10 साल हो गया। जब भी मैंने थिएटर से फिल्म की तरफ जाने की कोशिश की, रंग देवता ने किसी न किसी बहाने मुझे वापस खींच लिया।
0: वहां नहीं जाना है,
1: वहां जाने नहीं दिया। मतलब ऐसी कोई परेशानियां या उस तरीके की अपॉर्चुनिटी सामने खड़ी की कि आपको वहां जाने की आवश्यकता नहीं है, तुम यहीं और ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करो। मतलब मैं जाने मन नाटक किया और रणांगण किया, दो बहुत मेजर प्लेस थे मेरे हिसाब से, एक ही साल के आसपास किए मैंने। और ये तय किया था कि आप 5 साल में नाटक नहीं करूंगा, तब भी ये नाटक चलते रहेंगे और नाम गूंजता रहेगा, तो अब मैं फिल्म करूंगा। तो कोई एक प्रोड्यूसर उस समय मुझसे बहुत बड़ा मेगा इवेंट करना चाह रहे थे फिल्म में, और मेगा कंटेंट पे वो बजट लेके बैठे हुए थे। तो उसी दरमियान डॉक्टर भालचंद्र मुणगेकर, जो वाइस चांसलर थे मुंबई विश्वविद्यालय के, बाद में प्लानिंग कमीशन के मेंबर हो गए, फिर राज्यसभा के मेंबर हो गए, तो उन्होंने एक कमेटी स्थापन की। उस कमेटी में मुझे भी लिया गया और बोले कि 35 साल से मैंने देखा हिस्ट्री, मुंबई विश्वविद्यालय में नाटक का विभाग हो, इसके लिए इतनी कमेटियां हो गई, इतना हो गया, पर आज तक वो हो नहीं पाया। उसमें जब्बार पटेल थे, दामू केंकरे थे, मैं था, उसके बाद रघुवीर तड़ाशीलकर थे, जयंत पवार, ऐसे 7-8 लोग थे। उन्होंने कहा कि अब मुझे कोई कमेटी बिमिटी, आपकी कमेटी है अंतिम है, अब आपको 4 महीने के अंदर मुझे ये विभाग शुरू करना।
0: अरे गजब,
1: आप जो जो चाहिए बताइए मुझे क्या चाहिए। तो पहले उन्होंने कहा एक सिलेबस दे दो, तो हमने कहीं यहाँ वहां से कटिंग पेस्टिंग करके एक सिलेबस दे दिया उनको, जो उन्होंने अकेडमी काउंसिल में पारित कर लिया, मैनेजमेंट काउंसिल में पारित कर लिया कि हमको ये डिपार्टमेंट खोलना है। 4थे महीने में उन्होंने डिपार्टमेंट खोल दिया।
0: वाह वाह वाह वाह,
1: वो 4 महीना मेरे पीछे पड़े रहे कि तुमको इसका हेड होना है। तो मैंने मना कि मुझे तो जाना है, मैं तो सिनेमा करने वाला हूँ।
0: कोई मेगा प्रोजेक्ट है?
1: हाँ, मेगा प्रोजेक्ट है। और फिर उन्होंने जब्बार पटेल जी को, दामू केंकरे जी को, ये सारे हमारे दोस्तों को बोला कि नहीं, इसको राजी करो। तो फिर वो होते होते फिर सुशील कुमार शिंदे जी तक बात पहुंच गई, और एक दिन उनका भी फोन आ गया कि वैसे भी हमारे यहाँ ट्रेनिंग सेंटर अच्छा नहीं है मुंबई में, तो इसीलिए अगर वो सही आदमी के हाथ में नहीं जाएगा तो फिर ये आप लोग रोते रहोगे। तो वो जो कह रहे

0: मुनगेकर, उसकी बात मानो। और मैं आपको महाराष्ट्र की जनता की ओर से बोल रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ कि एक दो तीन साल दे दो, दो दिन तीन तीन घंटा चार घंटा दे दो, बाकी अपना काम करते रहो। तो मैंने कहा कि ऐसा नहीं होता है सर, एक इंस्टीट्यूशन खड़ा करना है तो आप, मैं आपको बता देता हूँ, 10 साल रात दिन काम करेंगे तभी खड़ा होगा। बोले जो भी है कर लो और इसको फाउंडेशन करके फिर बाद में छोड़ के जाओ। तो अब इतने सारे रंगकर्मी भी हैं, राजनेता भी हैं और मित्र भी हैं, ये सारे मेरे नाटक देखने वाले भी थे, तो सभी की ओर से, चारों ओर से वो लगा कि आपको करना चाहिए। फिर हमने कहा कि चलो यार इसको 2 साल के बाद प्रोजेक्ट को करते हैं, वह 3 साल के बाद फिल्म को, तो वो स्वीकारना पड़ा। और एक बार वो स्वीकारने के बाद 2003 में मैंने उसको स्वीकारा, 13 कब आया मुझे समझ में नहीं आ रहा।
1: जो दो तीन साल
0: सोचा था। और रात दिन मैं सुबह 8:15 बजे पहुंचता था, रात को 12 बजे घर पहुंचता था।
1: अरे बाप रे।
0: पर चूंकि वो उतनी इन्वॉल्वमेंट से किया, इसलिए एक नेशनल लेवल का 10 साल में एक इंस्टीट्यूशन खड़ा हो गया, और जहां पर लोग पढ़ने के लिए ज्यादा पसंद करते थे बजाय के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जाए। तो जो सारा का सारा फ्लो था वो वहां से मुंबई की तरफ मुड़ गया, क्योंकि अल्टीमेटली मुंबई में जाना है सबको, मतलब ज्यादातर लोगों को, अपवाद तो बहुत है। तो फिर 2 साल में पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री भी मिल रही है।
1: जी जी।
0: तो ये भी जिसको एकेडमिक्स में जाना है उसके लिए ये भी और एक शॉर्टकट हो गया। और वो सारे लोगों को हम बुलाते थे जो बाहर जाके, जिनके साथ इनको काम करना है, चाहे वो फिरोज अब्बास खान है, चाहे दिनेश ठाकुर है, चाहे रमेश तलवार है, एमएस सत्यू साहब है, जब्बार पटेल है, डॉक्टर लागू है, नीलू फुले जी हैं, विजया मेहता जी है, जितने भी मराठी, हिंदी, अंग्रेजी, और परेश रावल जी है, नसीरुद्दीन शाह है, मैं ऐसा कोई छोड़ा ही नहीं हमने जिनको बुलाया नहीं। तो एक तरीके का वो अड्डा बनते बनते वो एक इंस्टीट्यूशन खड़ा हो गया, वो भी एक अपने आप में एक यूनिक, यूनिवर्सिटी के पूरे प्रेशर में, सेटअप में वो खड़ा करना भी अपने आप में एक चैलेंज था, बट आई एंजॉयड दैट आल्सो। और एक बहुत अच्छे, एक से एक बेहतर प्रोडक्शन भी हो गए। ये मध्यम व्यायोग तो उसी के लिए किया था। फिर ईडीपस किया, 2 मंजिला सेट लगा के। मेरे बाद और भी डायरेक्टर्स ने भी काम किया, विजय केंकरे ने किया, चंद्रकांत कुलकर्णी ने आके काम किया, पुरुषोत्तम बेर्डे ने किया, रंजीत कपूर ने आके काम किया, अंकुर जी ने आके काम किया, इतने सारे। और ये पहला विभाग है पूरे देश में यूनिवर्सिटी के मर्यादा में कि पहले साल हमने अपना नेशनल फेस्टिवल शुरू किया।
1: वाह वाह वाह।
0: राष्ट्रीय वसंत नाट्य महोत्सव।
1: जी।
0: इसमें ऐसा कोई डायरेक्टर नहीं है कि जिसको हमने इनवाइट नहीं किया। पूरे हर एक, रतन थियाम मणिपुर से 2 बार आ गए, बंसी कौल आ गए, उसके बाद रैना साहब आ गए, उसके बाद रुद्र प्रसाद सेन गुप्ता आ गए, मतलब कोई भी, साउथ का बी जयश्री आ गई, अहमदाबाद से फलाना आ गया, सौम्या जोशी आ गए, इतने सारे पुराने भी डायरेक्टर्स और नए भी डायरेक्टर्स, सबको वहां लाया। ऐसे प्रोडक्शन हम चुन चुन के लाते थे कि जो अदरवाइज मुंबई में देखने सुनने को मिलेंगे नहीं, तो वो लंबी लाइन में खड़े होकर लोग अंदर जाते थे, और वो माहौल भी देखा हमने। और सारा का सारा विद्यार्थी ऑर्गेनाइज करते थे, हम सिर्फ उसके पीछे खड़े रहते थे।
1: वाह वाह।
0: कि अंत में अगले जनरेशन के रिस्पॉन्सिबल लोग बनाने का काम वो यज्ञ जैसा हो रहा था। तो वो भी एक अपने आप में मुझे लगता है कि मिसाल है, जो माहौल दिल्ली में मैं ले गया वो यहीं बनाया हुआ था।
1: जी।
0: क्या करने से बच्चे के जीवन में परिवर्तन होता है, वो सारा का सारा वहां, तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उसमें एड ऑन क्या करते हैं, यहाँ पर क्या कम पड़ा था, क्या ज्यादा था। तो मुझे लगता है कि वो सारा जो एकेडमिक्स है उससे मेरी कहीं दोस्ती नहीं टूटी, जो प्रैक्टिसेस है उसमें मेरी कोई दोस्ती नहीं टूटी, तीसरा है मेरा रिसर्च का स्वभाव अभी तक वैसा ही है, चौथा है दुनिया भर का जो हो रहा है उसका कॉग्निजेंस रखना कि क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो भी एक अपने आप में दिलचस्प बातें थी। मुंबई में जो जो भी आता था, जो किसी भी देश से आए, वो एकेडमी ऑफ थिएटर आर्ट्स में आए बिना जा नहीं सकता था।
1: जी जी।
0: ऐसा कुछ हमने, चाहे ब्रिटिश काउंसिल हो, चाहे अमेरिकन सेंटर हो, चाहे जर्मन सेंटर हो, रशियन सेंटर हो, छोटे से छोटे देश का कोई भी रंगकर्मी आता था वो मुझे पता चलता था, क्योंकि वो नेटवर्क था, दोस्ती थी इन लोगों से, जो दिल्ली में भी बहुत काम आया मुझे बाद में आगे चल के। तो इसकी वजह से ये भी खड़ा हो गया। और अभी तक मैं जब तक था, मुझे लगता है 8 बार राष्ट्रीय वसंत नाट्य महोत्सव हुआ, 8 या 9 बार।
1: जी।
0: तो उसमें भी हमारे बच्चों को दुनिया भर का बेहतर नाटक देखने को मिलता था। कोई नॉर्वे से आ रहा है, एक कोई आदिवासी ग्रुप थिएटर लेके उसका परफॉर्मेंस हम वहां करते थे।
1: बाबा
0: मतलब ऐसा नहीं है, कोई से भी कोई भी आए और हमको पता चले कि हम उसको हाथ जोड़ के पकड़ के लाते थे और जितना भी संभव है हमारी अपनी इसमें सुविधा देना उतना करते थे, क्योंकि एक क्लोज थिएटर कुसुमाग्रज जो भाषा सभागृह है वो हमारे हाथ में था और एक ओपन एयर थिएटर हमने हमारे लिए हमारे इंजीनियर से कंस्ट्रक्ट करवा लिया था, उससे बेहतर थिएटर तो आज इस देश में कहीं नहीं है। ओपन एयर थिएटर में जाइए, माहौल है कि यहाँ बैठे बैठे आप करियों का आस्वाद ले सकते हो।
1: सही है, सही है। तो सिनेमा के जो आपके सपने है, आपकी धारा को,
0: तो इसीलिए सिनेमा मतलब अभी भी ऐसा नहीं कि मैं सिनेमा नहीं करूंगा, मुझे लगा था कि यहाँ पर एक स्पेस बननी चाहिए, आपकी जगह बननी चाहिए, और ये मेरा स्वभाव नहीं कि इसको छोड़ के उसको पकड़ो और उसको पकड़ के उसको ताड़ो। मुझे लगा कि ये जहां काम करना है, जहां आनंद आ रहा है और हर बार आप अपनी डिस्कवरी कुछ कर रहे हो, मतलब अभी तक मैं कोई ऐसा प्रोडक्शन नहीं किया कि मैं अपने आप को रिपीट कर पाऊं, तो अभी भी ऐसा लग रहा है कि नहीं मुझे अभी कुछ नया नाटक करना चाहिए।
1: जी जी,
0: सिनेमा का भी सपने आते हैं कि भाई मुझे ऐसा सिनेमा करना है कि जैसे पहले नाटक ने देश को हिला दिया, वैसे मैं कम से कम पहले फिल्म में दुनिया को हिला दूं। ऐसा कोई कंटेंट मैं ढूंढ रहा हूं, ऐसा कोई कहने का तरीका ढूंढ रहा हूं, ताकि वो माध्यम में जाने के बाद लोगों को ये ना बुलाए मेरा कुछ देखो।
1: जी जी जी,
0: वो अपने आप इतना बोलना चाहिए कि यार आई शुड गो एंड सी दैट फिल्म।
1: तब तक इस धारा को ऋत्विक आगे बढ़ा रहे हैं।
0: ऋत्विक के 2 या 3 सिनेमा आ गए हैं और तीसरा ही पिछले हफ्ते में उसके सिनेमा का फिल्म फेस्टिवल में एक स्क्रीनिंग हुआ है।
1: जी जी,
0: उसके पहले उसका ड्राई डे एक सिनेमा रिलीज हो गया है। अभी रिसेंटली एक बहुत इंपॉर्टेंट सिनेमा है जो उतना अंडरलाइन होना चाहिए था, उतना नहीं हो पाया पर आगे चलकर होगा, सरगम नाम का सिनेमा है और बहुत यूनिक स्टोरी पे बनाया है और उसका खासियत यह है कि गिरीश कारनाड जी का आखिरी सिनेमा है जिसमें गिरीश कारनाड जी ने स्वतः काम किया है।
1: जी,
0: और वो मराठी सिनेमा है और वो बहुत अच्छा रोल किया है गिरीश कारनाड जी ने, और ऋत्विक और गिरीश कारनाड जी आमने सामने हैं।
1: वाह वाह वाह,
0: ऋत्विक प्रमुख भूमिका में, नायक की भूमिका में है और वो ऐसा लगता है खलनायक है लेकिन वो है ही नहीं।
1: जी,
0: तो ये सारा जो मुझे लग रहा है कि ये जो धरोहर है या ये जो थ्रेड्स है या जर्नी है वो तो आगे चलती रहेगी। ऋत्विक अपने तरीके से वो थिएटर भी कर रहा है और सिनेमा में भी काम कर रहा है और भी कुछ वो करना चाह रहा है जो कभी बोलता है कभी नहीं बोलता है।
1: अच्छा क्या तो बात है,
0: ये तो चलते रहेगा सिलसिला, पर सिनेमा भी करूंगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आई हैव रेजिस्टेंस अबाउट सिनेमा, आई एम वेरी हैप्पी विथ सम एक्सप्रेशंस। सिनेमा में भी लोग बहुत यूनिक काम कर रहे हैं और भारतीय सिनेमा में भी कर रहे हैं
1: जी,
0: पर वो मेन स्ट्रीम में नहीं है।
1: जी,
0: मेन स्ट्रीम जो हमारा व्यावसायिक सिनेमा है उसमें बहुत रेयरली आपको लगता है कि यार ये ठीक है।
1: जी,
0: इसलिए मैं सेंसर बोर्ड का बोर्ड मेंबर भी हूँ, तो वो इसीलिए हूँ कि मैं सिनेमा देखते रहता हूँ
1: हर तरह की
0: सिनेमा देखते।
1: जी, वामन केंद्रीय जी, आपकी तमाम अगली अभिव्यक्तियों का हमें इंतजार रहेगा और इस लंबी बातचीत में बहुत आनंद आया। सबसे अच्छी बातचीत वो होती है जिनमें अगली बार की बातचीत की गुंजाइश बनी रहे।
0: जी जी जी,
1: मुझे लगता है इस बातचीत को यहाँ विराम देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया,
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका यूनुस जी और विविध भारती का मुझे यहाँ बुलाने के लिए और इतना सारा गपशप करवाने के लिए।
1: बहुत शुक्रिया,
0: थैंक यू, धन्यवाद।
2: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे जाने माने रंगकर्मी, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के पूर्व निदेशक और शिक्षाविद पद्मश्री वामन केंद्रे से यूनुस खान की बातचीत। आज आप सुन रहे थे इस कार्यक्रम का 4th और अंतिम भाग। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में संपादन सहयोग मनीषा सिंह, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले।

असंख्य दीपक सजा लेती है और चांद चुपके से आसमान की चौखट पर आ बैठता है, तो उसकी चांदनी इस जमी के साथ साथ प्रेम करने वालों के दिलों पर भी उतरती है। वो हर धड़कन से कहती है, सच्चा प्रेम आकाश की तरह असीम है और चांद की तरह हर अंधेरी रात में झिलमिलाती रोशनी का समंदर बनकर लौट आता है।

ये जो रात का रोशन चांद है ना, इसने ना जाने कितनी मोहब्बतों को जन्म लेते देखा है, कितनी ही आंखों में सपने सजाए हैं, कितनी ही दुआओं को अपने उजाले में पनाह दी है। वो जानता है कि प्रेम शब्दों से नहीं, खामोशियों से लिखा जाता है, और चांदनी वही खामोशी है जो दिल से दिल तक बिना आवाज पहुंच जाया करती है।

अंतराल के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं छाया गीत। कभी ये चांद किसी के चेहरे का रूप बन जाता है, तो कभी किसी की याद का। कभी वो मिलन की रात का गवाह होता है, तो कभी जुदाई की लंबी रातों का हमसफर। मगर उसकी चांदनी हर बार यही कहती है, मोहब्बत दूरियों से नहीं हारती, वो तो इंतजार से और भी गहरी हो जाती है।

प्रेम भी चांद की तरह है, वो हर दिन एक सा नहीं रहता। कभी पूर्णिमा की उजली मुस्कान बनकर जीवन को आलोकित कर देता है, तो कभी अमावस्या की खामोशी में भीतर ही भीतर धड़कता रहता है। पर जैसे चांद बादलों भरी रात में भी कभी खोता नहीं, बस कुछ समय के लिए आंखों से ओझल हो जाता है, वैसे ही सच्चा प्रेम भी परिस्थितियों के बादलों में छिप सकता है, लेकिन मिटता कभी नहीं।

कहते हैं इश्क अगर सच्चा हो तो प्रेमियों की आंखों में चांद उतर आता है और चांदनी उनकी मुस्कान में खिल उठती है। मोहब्बत अगर चांद है तो विश्वास उसकी चांदनी है। चांद कभी कभी बादलों में छिप जाता है मगर चांदनी का एहसास हमेशा के लिए दिल में बस जाता है। जैसे सच्चा प्रेम दूर होकर भी दिल के आंगन को रोशन करता रहता है।

0: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। तराने नए पुराने कार्यक्रम लेके हम हाजिर होंगे बस थोड़ी ही देर में।
1: एवरी ग्रेट जर्नी बिगिंस विद पीपल कमिंग टुगेदर टू लिसन टू लर्न टू इमेजिन व्हाट्स पॉसिबल। दिस इज द ब्रिक्स 2026, अ मोमेंट वेयर लीडर्स इनोवेटर्स बिजनेसेस एंड कम्युनिटीज फ्रॉम द ब्रिक्स नेशंस कम टुगेदर टू स्ट्रेंथन पार्टनरशिप्स। India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.

0: सर्वांसाठी सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदीजींचा संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: आतापर्यंत या योजनेत 9,50,00,000 अधिक लाभार्थी सामील झाले आहेत। तुम्ही देखील 18 ते 40 या वयोगटातील असाल तर मासिक अटल पेन्शन सहित योजनेच्या अन्य 3 हमी लाभांबद्दल माहिती मिळवण्यासाठी तुमच्या बँक शाखेशी संपर्क साधा।
2: तरानी नए पुराने कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज कार्यक्रम में आपके साथ है आपकी दोस्त प्रीति शर्मा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं आशा भोसले के गाए कहो ना प्यार है फिल्म के इस गाने के साथ।

0: टेलीविजन के जाने माने नाम, जिनके लिए अभिनय एक काम नहीं समर्पण है।
1: जब मैं तैयारी करना शुरू करता हूँ, वहीं से मेरे अंदर एक नया इंसान जन्म लेता है। वो एक एक्टर विनीत रैना है। जैसे ही वो मेकअप अपने ऊपर चढ़ाता है तो वो किरदार बन जाता है जो आज पूरा दिन उसको प्ले करना है। उसका विनीत रैना से कोई लेना देना नहीं है।
0: कभी चॉकलेटी हीरो, कभी खूंखार विलेन, तो कभी परम दिव्य साईं।
1: साईं बाबा तक पहुंचना मेरे ख्याल से किसी के बस में नहीं है।
0: विविध भारती पर आ रहे हैं अपने अभिनय और जीवन की कहानी लेकर जाने माने अभिनेता विनीत रैना। जरूर सुनिए सेलुलॉइड के सितारे मंगलवार 8 सितंबर शाम 4 बजे और 9 सितंबर सुबह 10 बजे देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा और कार्यक्रम चल रहा है तराने नए पुराने।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

तराने नए पुराने कार्यक्रम का शेष भाग आप सुनेंगे समाचारों के बाद। यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। थोड़ी ही देर में समाचार होंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। गृह मंत्री अमित शाह ने वर्ष 2029 तक भारत को नशा मुक्त बनाने के लिए अगले 3 वर्षों रूपरेखा तैयार जारी की है। उन्होंने मादक पदार्थों के खिलाफ देशव्यापी समन्वित अभियान चलाने का आह्वान किया। गोवा में गृह मंत्रालय की बैठक में श्री शाह ने कहा कि वर्ष 2019 से सरकार ने मादक पदार्थों की तस्करी पर कार्रवाई, खुफिया जानकारी साझा करने, वित्तीय जाँच और पुनर्वास के उपायों को मजबूत किया है।
1: 2029 तक भारत को नशा मुक्त बनाने के लिए एक रोड मैप बना है। 26 से 29 को हमने मिशन मोड अवधि के रूप में चिन्हित किया है, समय सीमाएं तय की है, 4 स्तंभों पर हमारा रोड मैप

0: संध्या के बाद अपने निर्धारित कार्यक्रम से एक दिन पहले ही गोवा से दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। श्री शाह कल गोवा पहुंचे थे। दिल्ली में हुए हादसे के मद्देनजर गोवा भाजपा मुख्यालय में उनका निर्धारित कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है। श्री शाह को कल 28वीं पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल होना था और गोवा पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस कलंकर प्रदान करना था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से बड़े सपने देखने और दुनिया का नेतृत्व करने का आह्वान किया है। वे कल दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह को संबोधित कर रहे थे।
1: भारत की ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म्स क्यों नहीं हो सकती? हमारी अकाउंटिंग फर्म, हमारी लीगल फर्म, हमारी फाइनेंशियल फर्म, ये सब ग्लोबल लीडर्स क्यों नहीं बन सकती? हम गर्व से कहते हैं कि आज भारतीय दुनिया की टॉप कंपनीज को लीड कर रहे हैं। अगर भारतीय दुनिया की टॉप कंपनियों को लीड कर रहे हैं तो भारतीयों की बनाई कंपनियां दुनिया को क्यों लीड न करें?
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज दुनिया भारत की तेज आर्थिक वृद्धि और नीतिगत बदलावों की सराहना कर रही है। उन्होंने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत की 7.8% की तिमाही आर्थिक वृद्धि देश की क्षमता को दर्शाती है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि शिक्षा का उद्देश्य केवल रोजगार की तैयारी नहीं बल्कि जिम्मेदार नागरिक तैयार करना भी होना चाहिए। गुवाहाटी में गीता नगर कॉलेज के स्वर्ण जयंती समारोह में उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, अनुसंधान और चरित्र निर्माण देश की प्रगति के लिए जरूरी है। उपराष्ट्रपति ने उच्च शिक्षा में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी को नारी शक्ति का प्रतीक बताया। श्री राधाकृष्णन आज से असम के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की तैयारियां तेज हो गई हैं। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 12 और 13 सितंबर को भारत मंडपम में आयोजित होगा। कोयला मंत्रालय ने मीडिया की उन खबरों का खंडन किया है जिसमें कहा गया है कि केंद्र से कोयले की पर्याप्त आपूर्ति नहीं होने के कारण पंजाब के ताप विद्युत संयंत्रों में कम बिजली उत्पादन हो रहा है। मंत्रालय ने कहा है कि कोल इंडिया लिमिटेड पंजाब सहित पूरे देश में बिजली उत्पादन के लिए निर्बाध कोयला आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। विदेश मंत्रालय ने समान क्षेत्रफल वाले विश्व मानचित्र को लेकर भारत का रुख स्पष्ट किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में समान क्षेत्रफल वाले मानचित्र से जुड़े प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया है। न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी को बंबई उच्च न्यायालय का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति ने कल उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी। वे बंबई उच्च न्यायालय के 50वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। पुरुष डबल्स में फाइनल में भारतीय जोड़ी ने चीन के हे जी टिंग और रेन जियांग यू को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। तराने नए पुराने कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाजों में। फिल्म का नाम है दिल तो पागल है।

0: इस गाने के साथ ही तराने नए पुराने कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: तराने नए पुराने।

0: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: आज आप इसमें सुनेंगे एस हजारा सिंह का इलेक्ट्रिक गिटार. रात्रि 8 बजे हवा महल में सुनिए प्रहसन मलाई वाला दही. मूल कन्नड़, लेखक एम गोविंद, निर्देशक पुरुषोत्तम धारवेकर. चित्रलोक का समय रहेगा रात्रि 8:15 पर. रात्रि 9 बजे सुनिए आपके लिए आज के फनकार. आप सुनेंगे रात्रि 9:30 पर. कार्यक्रम केंद्रित है अभिनेता राकेश रोशन पर. प्रस्तुति मनीषा जैन की. रात्रि 10 बजे सुनिए छाया गीत. आलेख और स्वर यूनुस खान का. प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी. टलती जाए रात आप सुनेंगे रात्रि 10:30 पर. और रात्रि 11 बजे सुनिए विविधा. ये थे आज प्रसारित होने वाले

कार्यक्रम। आइए अब आपको बता दें कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। कल सुबह 6:05 पर सुनिए वंदनवार, सुबह 6:30 और शाम 6:30 पर सुनिए कार्यक्रम विवरण झरोखा में। रामचरित मानस आप सुनेंगे सुबह 6:35 पर। कल प्रसारित होगा भाग 304। सुबह 6:45 पर सुनिए संगीत सरिता श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परम्परा किराना घराना भाग 7। कलाकार हैं गायिका डॉक्टर शकुंतला भरने, प्रस्तुति अनुश्री पाठक। इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण होगा शाम 6:45 पर। भूले बिसरे गीत आप सुनेंगे सुबह 7:00। 7:30 पर सुनिए हम है राही प्यार के। सुबह 8:15 और दोपहर 2:00 सुनिए त्रिवेणी, आलेख और स्वर मंजरी वर्मा का, प्रस्तुत कविता अनुश्री पाठक। चित्रलोक आप सुनेंगे सुबह 8:30 पर। आज के फनकार का समय रहेगा 9:30। कार्यक्रम केंद्रित है निदेशक PL संतोषी पर, प्रस्तुत कविता रमेश गोखले। सुबह 10:00 पिटारा में सुनिए उजाले उनकी यादों के, इस पर सुनिए नाट्य निदेशक शिक्षाविद और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय NST नई दिल्ली के पूर्व निदेशक पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्र से यूनुस खान की बातचीत का चौथा भाग, संपादन सहयोग योगिता जाधव, प्रस्तुति तेजश्री कामले। रंग तरंग आप सुनेंगे सुबह 11:00 और रात्रि 11:00। यादों की महफिल सजेगी दोपहर 12:05 पर। दोपहर 1:00 कार्यक्रम होगा सुरीला सफर। सदाबहार नगमे आप सुनेंगे दोपहर 2:30 पर। दोपहर 3:00 कार्यक्रम होगा सखी सहेली, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। दोपहर 4:00 पिटारा के अंतर्गत सेहतनामा में सुनिए पोषण, इस विषय पर आहार विशेषज्ञ और न्यूट्रिशनिस्ट अदिति प्रभु से ममता सिंह की बातचीत का पहला भाग, तकनीकी सहयोग मंगेश सांगले, प्रस्तुति तेजश्री कामले। 6 गीत आप सुनेंगे शाम 5:00। 5:30 पर सुनिए तराने नए पुराने संध्या रंजन, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 6:35 पर। जयमाला का प्रसारण होगा शाम 7:00। 7:45 पर सुनिए इंद्रधनुष के अंतर्गत एक ही फिल्म से, कल की फिल्म है ताज महल। हवा महल का समय रहेगा रात्रि 8:00। कल हवा महल में सुनिए झलकी सेल्फी, लेखन और निर्देशन HS व्यास। चित्रलोक आप सुनेंगे रात्रि 8:15 पर। रात्रि 9:00 सुनिए आपके लिए आज के फनकार, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 9:30 पर। कार्यक्रम केंद्रित है PL संतोषी पर, आलेख और स्वर जी श्याम का, प्रस्तुत करता रमेश गोखले। गीत आपको सुनवाएंगे रात्रि 10:00, आलेख और स्वर सलमा सैयद का, प्रस्तुत करता राघवेंद्र नेगी। और ढलती जाए रात आप सुनेंगे रात्रि 10:30 पर। ये थी रूपरेखा आज के शेष और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की झरोखा के अंतर्गत। ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम संध्या रंजन।

अभी आपने मुकेश की आवाज में सुना संत ज्ञानेश्वर फिल्म का गाना, गीत भरत व्यास का था, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। आइए अब सुनते हैं महेंद्र कपूर और साथियों की आवाज में जाग उठा इंसान फिल्म का गाना, गीत इंदिवर का है, संगीत राजेश रोशन का।

0: नमस्कार। इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे। इनसे बातचीत की जयंत पात्रीकर ने। आइए अब सुनते हैं इस श्रृंखला की छठवीं कड़ी।
1: नमस्कार श्रोताओं, स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना इस श्रृंखला में आज की कड़ी में डॉक्टर शकुंतला भरणे जी से हम पूछते हैं कि किराना घराने की आज किस विशेषता की बात होने वाली है, ये जो गायकी है इसका निरालापन किस अंदाज में आप आज बताने वाली हैं।
2: इस किराना घराने की

0: जो खासियत है
1: जी,
0: ये
1: जी.
0: सब उनके जो गुण है इंटरकनेक्टेड है. आज हम सोचेंगे मिंड का सुंदर प्रयोग इस घराने में कैसे
1: मिंड का प्रयोग. वाह वाह.
0: मिंड आप जानते हैं, एक स्वर से दूसरे पर स्वर पर जाते हुए उसका जो बीच में विदाउट एनी गैप

0: ऐसा जो
1: एक सुर से दूसरे सुर पर जाते हुए बिना रुके जो ये निरंतरता बनी रहती
0: है। निरंतरता उसकी जो मेलोडी जो है
1: उसे मिंड कहते हैं। वाह,
0: इस घराने की गायकी में एक स्वर से दूसरे स्वर तक बिना टूटे अत्यंत सहज और मधुर ढंग से पहुंचने की एक शैली को विशेष महत्व दिया जाता है। स्वरों का कोमल और प्रवाहपूर्ण मेल ये भी इसकी खासियत है। मीन के माध्यम से स्वर आपस में इस प्रकार जुड़ते हैं कि गायन में निरंतरता और मधुरता बनी रहती है। यही किराना घराने की गायकी को अत्यंत और आकर्षक बनाता है। राग का भाव अधिक प्रभावी बनता है। मीन के प्रयोग से राग के सूक्ष्म भाव और स्वर सौंदर्य स्वाभाविक रूप से प्रकट होते हैं।
1: जी,
0: श्रुति का सुंदर प्रदर्शन भी हम कर सकते हैं मीन के द्वारा। स्वरों के बीच जो स्थित सूक्ष्म श्रुतियों का भी प्रभावी प्रयोग हमारे घराने में किया जाता है।
1: जी जी,
0: इसमें गायकी में नजाकतता और एक परिष्कार
1: अच्छा
0: आता है। विलंबित लय में मीन का विशेष प्रभाव जो होता है कि किराना घराने में विलंबित लय होने के कारण कलाकार को मिंड का विस्तार पूर्वक प्रयोग करने का अवसर मिलता है, इसलिए वो बहुत ही नजाकतदार लगती है। इससे प्रत्येक स्वर का सौंदर्य पूर्ण रूप से उभर कर सामने आ जाता है।
1: जी,
0: सुंदर मिंड प्रस्तुत करने के लिए स्वर पर गहरा एकदम डीप ऐसा नियंत्रण, श्वास का संतुलन और नियमित रियाज तो हमें यहाँ आवश्यक है। इसलिए मिंड इस घराने की उच्च कोटि की स्वर साधना का प्रमाण मानी जाती है।
1: जी,
0: मेरे गुरुजी
1: जी
0: विदुषी डॉक्टर गंगूबाई हनगल मिंड गायकी तो उनकी खासियत थी।
1: अच्छा,
0: जिन रागों में मिंड है वही राग वो गाती थी ज्यादा। शुद्ध कल्याण, बागेश्री, दरबारी कानड़ा,
1: अच्छा
0: रागेश्री, ऐसे राग आज हम उन्हीं का गाया हुआ थोड़ा सा बागेश्री सुनेंगे। उनकी आवाज पहले बहुत पतली थी
1: जी।
0: और वो सब गाती थी, भावगीत गाती थी, गजल गाती थी, ठुमरी गाती थी।
1: अच्छा,
0: उसके बाद टॉन्सिल्स हो गए
1: जी, जी।
0: और टॉन्सिल्स के वजह से उसका जो ट्रीटमेंट हुआ वो बोल नहीं पाती थी।
1: ओ।
0: बाद में उनकी जो आवाज हो गई वो एकदम थोड़ी पुरुषी
1: अच्छा
0: आवाज हो गई, वजन खरज वाली आवाज
1: अच्छा।
0: और वो गाना जो उनका हो गया वो और भी अच्छा हो गया
1: अच्छा।
0: लोगों को पसंद हुआ और क्लासिकल ही उनका ज्यादा लोगों को पसंद हो गया। और उसने सोचा कि अभी तो लाइट गाने में मतलब नहीं है
1: अच्छा।
0: इसीलिए वो क्लासिकल ही

0: बागेश्वरी राग में बहुत सारे गाने हैं
1: जी,
0: बहुत ही प्यारा राग है, लेकिन गंगूबाई जी बागेश्वरी में पंचम नहीं लगाती थी, बाकी सब लोग पंचम लगाते, और पंचम का जो सुरीलापन और ये जो नजाकत है, ये पंचम बिना लगाए भी उनकी जो गायकी है वो बहुत ही अच्छा दिखता था उन्हें।
1: तो ये किस तरह का प्रयोग है, एक्सपेरिमेंट है कि आरो आरो के जो स्वर है किसी राग के चलन में, उसमें से कोई एक स्वर न लगाए बिना भी वो उसको राग का जो है प्रस्तुतिकरण हो सकता है?
0: पंचम का महत्व बागेश्वरी में नहीं है वैसा भी।
1: अच्छा,
0: पंचम का महत्व मा पधा मा गा सारे ऐसा होता है
1: जी,
0: और ये राग का सौंदर्य बढ़ाता है इसीलिए लेते हैं, लेकिन पंचम का इतना इम्पोर्टेंस मध्यम लगा के ही वो बागेश्वरी ज्यादा गाते हैं।
1: अच्छा,
0: और वो बोलती थी पंचम का कुछ काम ही नहीं, इसीलिए मैं पंचम नहीं लेती, और ये जगह नहीं लेती थी वो। ऐसा है।
1: तो क्यों ना इस राग पर आधारित एक गीत सुन लिया जाए।
0: बहुत ही गाने हैं, लेकिन मेरा बहुत ही प्यारा गाना है वो अनारकली फिल्म का, जाग दर्द इश्क जाग।
1: बहुत सुंदर गीत है, आइए।

स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना। अभी आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की 6वीं कड़ी। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे, इनसे बातचीत की जयंत पात्रीकर ने, तबला संगत रोहिदास परब, हारमोनियम पर संगत दी ऋषित होनावरकर ने। श्रोताओं, इस श्रृंखला के लिए तकनीकी सहयोगी भावना सिंदल, संपादन सहयोगी झरना सोलंकी और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

ये विविध भारती का मुंबई केंद्र है। ठीक 7 बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिसे हम मुंबई केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

फौजी दोस्तों, अदम्य अद्भुत अकल्पनीय शूरवीरता से परिपूर्ण नायक दिगेंद्र कुमार का जन्म राजस्थान के सीकर जिले के नीम का थाना तहसील के एक गांव में एक जाट परिवार में हुआ था। दिगेंद्र बचपन से ही सैन्य माहौल में पले और बड़े हुए। उनके नाना स्वतंत्रता सेनानी रहे थे तो पिता भारतीय सेना के वीर जवान थे। वर्ष 1947-48 के युद्ध के दौरान दिगेंद्र के पिता शिवदान सिंह के जबड़े में 11 गोलियां लगी थीं। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी थी, यानी वीरता और जांबाजी तो दिगेंद्र के खून में दौड़ती थी। अपने पिता से प्रेरित होकर दिगेंद्र कुमार 2 राजपूताना राइफल्स में भर्ती हो गए थे। फौजी दोस्तों, दिगेंद्र कुमार की शूरवीरता इतनी अद्भुत और अदम्य थी कि राजपूताना राइफल्स में भर्ती के 2 साल बाद, यानी वर्ष 1985 में दिगेंद्र कुमार को श्रीलंका के जंगलों में प्रभाकरण के खिलाफ अभियान के लिए गई इंडियन पीस कीपिंग फोर्स में भेजा गया। इस अभियान के दौरान एक ही दिन में दिगेंद्र ने आतंकियों को मार गिराया, दुश्मन के गोला बारूद का ठिकाना नष्ट किया और उनके कब्जे से पैरा ट्रूपर्स को छुड़ा लिया। इसके अलावा जब वो अपने जनरल के साथ गाड़ी से जा रहे थे तो रास्ते में पुल के नीचे से कुछ आतंकियों ने जनरल की गाड़ी पर हैंड ग्रेनेड फेंका। दिगेंद्र ने बड़ी बहादुरी से उस ग्रेनेड को कैच कर लिया और वापस आतंकियों की ओर उछाल दिया, जिससे बहुत से आतंकी

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। अद्भुत साहस और वीरता के साथ इतने आतंकियों के साथ लोहा लेने के बाद दिगेंद्र कुमार को कुछ साल के बाद कश्मीर के कुपवाड़ा में भेज दिया गया। कुपवाड़ा में भी उन्होंने आतंकियों का काम तमाम करना जारी रखा। अपनी निर्भीकता और जांबाजी के लिए उन्हें सेना मेडल से सम्मानित किया गया। इसके लगभग एक साल के बाद यानी वर्ष 1993 में दिगेंद्र कुमार ने हजरत बल दरगाह को आतंकियों के चंगुल से आजाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। फौजी दोस्तों, ये निर्भीक और बेबाक जांबाज योद्धा यही नहीं रुका, अभी तो उसे अपनी मातृभूमि के लिए और भी बहुत कुछ करना था। परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमी पर बैठकर क्या आसमान देखता है। हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है।

ये इस जांबाज योद्धा की वीरता के अद्भुत किस्से ही थे जिन्होंने उन्हें एक नया नाम दे दिया, कोबरा। अब तक दिगेंद्र कुमार नाइक दिगेंद्र कुमार कोबरा के नाम से जाने जाने लगे थे। वर्ष 1999 के आते आते तो नायक दिगेंद्र कुमार कोबरा सेना के बेहतरीन कमांडो में गिने जाने लगे थे। वर्ष 1999 वही साल था जब दुश्मन ने धोखा देकर भारत की कुछ महत्वपूर्ण चोटियों पर अपना जबरन कब्जा जमा लिया था। ये चोटियां इतनी ऊंचाई लिए हुए थीं कि दुश्मन को इसका बहुत फायदा था। यही वजह थी कि इन पर वापस नियंत्रण पाना भारतीय सेना के लिए इतना आसान नहीं था। बहुत ऊंचाई और दुर्गम रास्तों की वजह से ये लड़ाई दुनिया की सबसे मुश्किल लड़ाइयों में से एक थी, लेकिन दुश्मन के सामने भारत के वीर थे जिनके शौर्य और वीरता के आगे बड़ी से बड़ी मुश्किल भी सिर झुका लेती है। साहिल के सुकून से किसे इनकार है, लेकिन तूफान से लड़ने में मजा और ही कुछ है।

0: फौजी दोस्तों, विशेष जयमाला के अंतर्गत आप सुन रहे हैं शौर्य गाथा। मिलते हैं एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
2: Suphalam Malayaj Sheetalam Shasya Shyamalam Mataram Vande Vande Mataram।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। फौजी दोस्तों, विशेष जयमाला के अंतर्गत आप सुन रहे हैं महावीर चक्र से सम्मानित जाबाज नायक दिगेंद्र कुमार की शौर्य गाथा। फौजी दोस्तों, 15,000 फीट की ऊंचाई पर तोलोलिंग की पहाड़ी को आजाद कराने के लिए नायक दिगेंद्र कुमार की जबरदस्त प्लानिंग ने तत्कालीन आर्मी चीफ वीपी मलिक को भी आश्चर्यचकित कर दिया था। इससे पहले इस पहाड़ी को आजाद कराने के 3 प्रयास किए जा चुके थे जो असफल हो गए थे। कारगिल की लंबी लड़ाई के दौरान पहली विजय दिलाने वाले थे नायक दिगेंद्र कुमार। कारगिल की लड़ाई के दौरान अपनी जमीन वापस पाने के लिए भारतीय सेना ने जो ऑपरेशन शुरू किया था उसे नाम दिया गया था ऑपरेशन विजय। आर्मी चीफ वीपी मलिक ने नायक दिगेंद्र कुमार की युद्ध की जबरदस्त प्लानिंग सुनकर तो

शिवलिंगी की पहाड़ी पर फिर से कब्जा करने की जिम्मेदारी दो राजपूताना राइफल्स को सौंप दी। अब दो राजपूताना राइफल्स का दल पूरी बहादुरी के साथ तोलोलुंगी की पहाड़ी की तरफ बढ़ रहा था और इस दल की अगुवाई कर रहे थे मेजर विवेक गुप्ता। इस दल में नायक दिगेंद्र कुमार भी थे। करीब 14 घंटे तक चट्टानों पर खड़ी चढ़ाई करने के बाद ये जाबाजों का दल तोलोलुंगी की पहाड़ी पर पहुंचा, जहां पर दुश्मन देश ने 11 बंकर बना रखे थे। जैसे ही ये दल आगे बढ़ा, दुश्मन देश के सैनिकों ने भीषण गोलीबारी करनी शुरू कर दी। इतनी भीषण गोलीबारी और उस पर खराब मौसम, दल को आगे बढ़ने में बहुत मुश्किल हो रही थी। इसी बीच नायक दिगेंद्र कुमार ने आगे बढ़ने के लिए अपना हाथ पत्थर के बीच डाला और दुश्मन की फायर करती हुई मशीन गन की बैरल उनके हाथ आ गई। इसके बाद उन्होंने एक ग्रेनेड निकालकर बंकर के अंदर फेंका, जिससे पूरा बंकर पूरी तरह से नष्ट हो गया।

इनगने भीषण आग उगलने लगी और इस भीषण फायरिंग की चपेट में मेजर विवेक कुमार गुप्ता और कुछ भारतीय सैनिक आ गए और वो वहीं देश के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो गए। इतनी भीषण फायरिंग में दल की अगुवाई कर रहे मेजर विवेक गुप्ता और कुछ सैनिकों की शहादत हो जाने के बाद भी नायक दिगेंद्र कुमार ने अपना हौसला नहीं खोया। इस गोलियों की बरसात में दिगेंद्र कुमार को 5 गोलियां लगी, लेकिन ये गोलियां भी उनके हौसले को ठंडा नहीं कर सकी, बल्कि उनके गुस्से की आग को और भड़का गईं और उनके जीतने की जिद को और बढ़ा गईं। दिगेंद्र ने आगे बढ़ना जारी रखा और साथ ही वो आगे बढ़ते हुए दुश्मन के बंकरों पर ग्रेनेड फेंककर उनको तबाह करते जा रहे थे। जब अपने बचे हुए सैनिकों के साथ दिगेंद्र आगे बढ़ रहे थे, तभी अचानक पीछे से हमला हुआ और उनके कुछ साथी सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गए। लेकिन ये कोई आसान शिकार नहीं थे, बल्कि ये तो माँ भारती के शूर वीर रणबांकुरे थे, जिनकी वीरता का लोहा तो पूरी दुनिया मानती है। दिगेंद्र कुमार और उनके साथियों ने 30 हमलावरों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब कुछ दवाइयों और दर्दनाशक इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हुए दिगेंद्र और उनके साथी लगातार आगे बढ़ते गए। बहादुरी के साथ आगे बढ़ते हुए दिगेंद्र और उनके साथियों ने सभी 11 बंकर तबाह और बर्बाद कर दिए। 11 के 11 बंकर तो तबाह हो गए, लेकिन दिगेंद्र के साथी सैनिक भी इस भयंकर युद्ध में शहीद हो गए। और सुबह होते होते दिगेंद्र के आखिरी साथी सरदार सुमेर सिंह राठौर को भी गोली लग गई। अब नायक दिगेंद्र कुमार ने अपने साथी की मशीन गन उठाई और पहाड़ी की तरफ आगे बढ़ना जारी रखा। उसी वक्त दिगेंद्र के सामने अचानक से दुश्मन देश की सेना का मेजर आ गया। जैसे ही दुश्मन देश के मेजर से दिगेंद्र का आमना सामना हुआ तो दिगेंद्र ने गोली चलाई, लेकिन तभी दुश्मन देश के मेजर ने अपने पिस्तौल से गोली चला दी जो दिगेंद्र के लगी, लेकिन अब तक उसकी पिस्तौल की गोलियां खत्म हो चुकी थीं और वो मेजर दिगेंद्र पर झपट पड़ा और लड़ने की कोशिश करने लगा। लेकिन नायक दिगेंद्र कुमार ने उस दुश्मन देश के मेजर की गर्दन को मजबूती से पकड़ लिया और अपना खंजर निकालकर दुश्मन देश के उस मेजर की गर्दन काट दी। भारत के बहादुर सैनिकों ने अपनी बहादुरी और जांबाजी से एक बार फिर से देश के हिस्से में विजय लिख दी थी। सुबह सुबह बुरी तरह घायल, लेकिन देश के दुश्मनों को मौत के घाट उतार देने के बाद भारत के इस शूरवीर नायक दिगेंद्र कुमार ने तोलोलिंग की पहाड़ी पर देश की आन बान और शान तिरंगे को लहराकर देश के दुश्मनों को ये संदेश दिया कि भारत के जांबाज सैनिक देश की रक्षा में खड़े हैं और उनके होते कोई देश की तरफ आंख उठाकर देखने की जरूरत नहीं कर सकता। और इस शूरवीर जांबाज योद्धा नायक दिगेंद्र कुमार को उनके शौर्य और अद्भुत अदम्य अकल्पनीय साहस और वीरता के लिए सम्मानित करते हुए देश के दूसरे सबसे बड़े गैलेंट्री अवार्ड महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। जोश में आते हैं दरिया की रवानी की तरह, खून दुश्मन का बहा देते हैं पानी की तरह, रण में बिफरे हुए शेरों की तरह लड़ते हैं, साफ कर देते हैं दुश्मन को जिस युद्ध में ये पड़ते हैं।

फौजी दोस्तों, एक सैनिक अपने देश के प्रति अपने कर्तव्य के सामने और कुछ याद नहीं रखता, फिर चाहे वो अपना परिवार ही क्यों ना हो। इस कर्तव्य को निभाते हुए एक सैनिक के लिए देश सर्वोच्च सर्वोपरि होता है। फौजी साथियों, विशेष जयमाला के अंतर्गत आप सुन रहे थे देश के दूसरे सबसे बड़े गैलेंट्री अवार्ड महावीर चक्र से सम्मानित नायक दिगेंद्र कुमार कोबरा की शौर्य गाथा। शोध, आलेख और स्वर आरती श्रीवास्तव का, संपादन मनीषा सिंह और विविध भारती की ओर से इसे प्रस्तुत किया तेजश्री कांबले ने। अब दीजिए इजाजत, जय हिंद।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: किसने कहा है कि शोधन एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
1: शोधन ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे की शोधन आ गई सुबह सुबह, मुझे गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग, ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।
2: कभी इस पग में।

0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।
1: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आइए अब सुनते हैं इंद्रधनुष में साज और आवाज। इसमें आज आप सुनेंगे एस हजारा सिंह का इलेक्ट्रिक गिटार। आज की फिल्में हैं सट्टा बाजार और छलिया।

0: अभी आपने लता मंगेशकर और हेमंत कुमार को सुना, फिल्म का नाम था सट्टा बाजार। बोल गुलशन बावरा के थे, धुन कल्याण जी आनंद जी की।
1: टेलीविजन के जाने माने नाम, जिनके लिए अभिनय एक काम नहीं, समर्पण।

0: है।
1: जब मैं तैयारी करना शुरू करता हूँ वहीं से मेरे अंदर एक नया इंसान जन्म लेता है, वो एक एक्टर विनीत रैना है। जैसे ही वो मेकअप अपने ऊपर चढ़ाता है तो वो किरदार बन जाता है जो आज पूरा दिन उसको प्ले करना है। उसका विनीत रैना से कोई लेना देना नहीं है।
0: कभी चॉकलेटी हीरो, कभी खूंखार विलेन, तो कभी परम दिव्य साईं।
1: साईं बाबा तक पहुंचना मेरे ख्याल से किसी के बस में नहीं है।
0: विविध भारती पर आ रहे हैं अपने अभिनय और जीवन की कहानी लेकर जाने माने अभिनेता विनीत रैना। जरूर सुनिए सेलुलॉइड के सितारे मंगलवार 8 सितंबर शाम 4 बजे और 9 सितंबर सुबह 10 बजे देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।

अभी आप सुन रहे थे इंद्रधनुष के अंतर्गत साज और आवाज कार्यक्रम में एस हजारा सिंह का इलेक्ट्रिक गिटार। अब ये कार्यक्रम समाप्त होता है।

0: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार
3: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
4: Every great journey begins with people coming together to listen to

चित्रलोक कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज कार्यक्रम में आपके साथ है आपकी दोस्त प्रीति शर्मा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं रांझना फिल्म के इस गाने के साथ। इसे गाया है शिराज उप्पल और जसविंदर सिंह ने। गीत इशाद कामिल का है, संगीत ए आर रहमान का।

0: टेलीविजन के जाने माने नाम जिनके लिए अभिनय एक काम नहीं समर्पण है।
1: जब मैं तैयारी करना शुरू करता हूँ वहीं से मेरे अंदर एक नया इंसान जन्म लेता है, वो एक एक्टर विनीत रैना है। जैसे ही वो मेकअप अपने ऊपर चढ़ाता है तो वो किरदार बन जाता है जो आज पूरा दिन उसको प्ले करना है। उसका विनीत रैना से कोई लेना देना नहीं है।
0: कभी चॉकलेटी हीरो, कभी खूंखार विलेन, तो कभी परम दिव्य साईं।
1: साईं बाबा तक पहुंचना मेरे ख्याल से किसी के बस में नहीं है।
0: विविध भारती पर आ रहे हैं अपने अभिनय और जीवन की कहानी लेकर जाने माने अभिनेता विनीत रैना। जरूर सुनिए सेल्यूलॉइड के सितारे मंगलवार 8 सितंबर शाम 4 बजे और 9 सितंबर सुबह 10 बजे देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: आइए अब सुनते हैं नील एंड निक्की फिल्म का गाना। सलीम मर्चेंट और श्वेता पंडित की आवाजों में, गीत इशाद कामिल का है, संगीत सलीम सुलेमान का।

0: चित्रलोक कार्यक्रम का शेष भाग आप सुनेंगे ब्रेक के बाद।
1: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
0: लोक में आपका फिर से स्वागत है, सुनिए ये संदेश।
2: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
3: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

आइए अब सुनते हैं श्रेया घोषाल की आवाज़ में हमारी अधूरी कहानी फिल्म का गाना। गीत रश्मि विराग ने लिखा है, संगीत दिया है जीत गांगुली ने।

आइए अब सुनते हैं एक पहली लीला फिल्म का गाना। इसे गाया है मीत ब्रदर्स अनजान और अरिजीत सिंह ने। गीत कुमार का है, संगीत मीत ब्रदर्स अनजान का।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं वैष्णवी। मुख्य समाचार। दिल्ली के सत्यनिकेतन इलाके में बहुमंजिला इमारत ढहने से 3 लोगों की मौत, जबकि 11 लोग सुरक्षित निकाले गए। अब भी कई लोगों के फंसे होने की आशंका, बचाव अभियान जारी। गृहमंत्री अमित शाह ने वर्ष 2029 तक भारत को नशा मुक्त बनाने के लिए 3 वर्षों की रूपरेखा जारी की। मादक पदार्थों के नेटवर्क को समाप्त करने की ये रणनीति 4 स्तंभों पर आधारित। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने युवाओं से स्वस्थ और अनुशासित जीवन जीने तथा नशीले पदार्थों से दूर रहने का आग्रह किया। सोशल मीडिया के रचनात्मक उपयोग का भी आह्वान किया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने देश के बढ़ते स्टार्टअप इकोसिस्टम को महानगरों से आगे ले जाने का आह्वान किया। विज्ञान, स्टार्टअप तथा उद्योग के बीच मजबूत संबंध बनाने पर बल दिया। और भारत की पुरुष डबल्स जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपना पहला खिताब जीता। और अब समाचार विस्तार से। नई दिल्ली के सत्यनिकेतन इलाके में आज दोपहर एक बहुमंजिला इमारत ढहने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका है। अब तक 11 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घटनास्थल का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि हादसे के लिए जो भी जिम्मेदार पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
1: 11 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। जो भी व्यक्ति इसके जिम्मेदार हैं, चाहे वो बिल्डिंग का मालिक है या अधिकारी है, क्योंकि बिल्डिंग पुरानी थी और इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन का रेनोवेशन का काम चल रहा था। बेसमेंट में किसी प्रकार की खुदाई चल रही थी, जिसके कारण से पिलर जो है वो हिला और वो पूरी बिल्डिंग ढह गई। पीजी के नाते ये बिल्डिंग काम कर रही थी, बच्चे इसके अंदर थे और लगातार सभी एजेंसी काम कर रही है। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है इन बच्चों की पहले जान बचाई जाए। दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा, ये बिल्कुल निश्चित रूप में कह रही हूँ।
0: दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू भी घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और जरूरतमंदों तक हर संभव सहायता पहुंचाई जाएगी। एनडीआरएफ के महानिरीक्षक एनएस बुंदेला ने बताया कि एनडीआरएफ की 2 टीमें मौके पर बचाव कार्य में जुटी हैं।
2: 2 टीमें करीब 70 लोग हैं जो वहां पर काम कर रहे हैं, जहां पर और विक्टिम्स को

0: हमने आइडेंटिफाई किया है और इसमें हमने अपने कैनाइंस भी इस्तेमाल कर रहे हैं, हम कटिंग इक्विपमेंट है, टेक्निकल इक्विपमेंट को भी इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी तक 4 लोगों को एनडीआरएफ की टीम ने फायर सर्विस, दिल्ली पुलिस और जो भी लोकल कम्युनिटी है वहां पर इन्फॉर्मेशन दे रही है, असिस्टेंस दे रही है, सबके कोऑपरेशन से हमने 4 विक्टिम्स को निकाला है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने दिल्ली में इमारत ढहने की घटना पर दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि अधिकारी घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं तथा हादसे से प्रभावित लोगों की मदद की जा रही है। गृहमंत्री ने कहा कि स्थानीय प्रशासन और एनडीआरएफ आपसी समन्वय से राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं, घायलों को हर संभव चिकित्सा सहायता दी जा रही है। श्री शाह ने हादसे में घायल सभी लोगों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। रक्षा मंत्री ने कहा कि दुख की इस घड़ी में उनकी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ है, उन्होंने घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। श्री नड्डा ने स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। उन्होंने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक और केंद्र सरकार के अस्पतालों को हर संभव चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए। इस बीच श्री शाह ने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली पुलिस आयुक्त और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ के महानिदेशक से बात कर स्थिति की जानकारी ली। गृहमंत्री ने कहा कि स्थानीय प्रशासन और एनडीआरएफ आपसी समन्वय से राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं, घायलों को हर संभव चिकित्सा सहायता दी जा रही है। श्री शाह ने हादसे में घायल सभी लोगों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। इसके अतिरिक्त श्री शाह अपने निर्धारित कार्यक्रम से एक दिन पहले ही गोवा से दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। श्री शाह कल गोवा पहुंचे थे। दिल्ली में हुए हादसे के मद्देनजर गोवा भाजपा मुख्यालय में उनका निर्धारित कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। श्री शाह को कल 28वीं पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल होना था और गोवा पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस कलर प्रदान करना था। इससे पहले गोवा में गृह मंत्रालय की बैठक में श्री शाह ने वर्ष 2029 तक भारत को नशा मुक्त बनाने के लिए अगले 3 वर्षों की रूपरेखा भी जारी की है।
2: 4 स्तंभों पर हमारा रोड मैप विजन डॉक्यूमेंट है। एक इंटेलिजेंस और ऑपरेशन आधारित एनफोर्समेंट, दूसरा प्रीकर्सर और सिंथेटिक ड्रग पर नियंत्रण, तीसरा डिमांड और हार्म रिडक्शन और चौथा क्षमता निर्माण और समन्वय।
1: श्री शाह ने कहा कि वर्ष 2019 से सरकार ने मादक पदार्थों की तस्करी पर कार्रवाई, खुफिया जानकारी साझा करने, वित्तीय जांच और पुनर्वास के उपायों को मजबूत किया है।
2: 2004 से 14 जो कांग्रेस का शासन था उसमें ड्रग की मात्रा 26 लाख किलोग्राम और आज वो बढ़कर 14 से 26 में 1,19,00,000 किलोग्राम से ज्यादा पकड़ा गया। उसका मूल्य 1,89,000 करोड़। 14 से 26 में 48,66,000 किलो ड्रग डिनिस्ट करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 9,50,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने युवाओं से सोशल मीडिया का रचनात्मक उपयोग का आह्वान किया है। उन्होंने नशीले पदार्थों से दूर रहने और अपने दोस्तों को भी नशे से दूर कर रहने के लिए भी प्रेरित करने का

0: वहन किया है। असम के गुवाहाटी में गीतानगर कॉलेज के स्वर्ण जयंती समारोह में श्री राधा कृष्णन ने कहा कि विद्यार्थियों को जिम्मेदार फैसले लेने और अपने समय, स्वास्थ्य तथा भविष्य की रक्षा पर ध्यान देना चाहिए।
1: Our thoughts, our thinking, our actions should be controlled by one single factor, that is our own brain. Drugs should not determine what we should think. Our brain should determine what we should think and act. That's why wherever I am going, I am always saying, say no to drugs. Not only you should not take the drugs, you should not allow your friends, family members also should not take drugs.
0: असम के विकास का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 5 वर्षों में राज्य की अर्थव्यवस्था में 45% की वृद्धि हुई है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए पूर्वोत्तर सहित हर राज्य और क्षेत्र का समावेशी विकास जरूरी है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने देश के तेजी से बढ़ते स्टार्टअप इकोसिस्टम को महानगरों से आगे ले जाने और विज्ञान, स्टार्टअप तथा उद्योग के बीच मजबूत संबंध बनाने पर बल दिया है। कोलकाता में राइज कॉन्क्लेव के उद्घाटन में डॉ. सिंह ने कहा कि दूसरे और तीसरे स्तर के शहरों में नवाचार की क्षमता को पहचानने की जरूरत है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in और हमारी न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है।
2: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ एआई तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
4: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: ये आकाशवाणी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत तेजी से आर्थिक शक्ति बन रहा है। देश व्यापार, वाणिज्य और उद्योग क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है और मध्य प्रदेश भी इस विकास यात्रा में आगे बढ़ रहा है। डॉ. यादव 3 दिन की दुबई यात्रा पर आज संयुक्त अरब अमीरात पहुंचे। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि यात्रा का उद्देश्य मध्य प्रदेश में अधिक निवेश और नए उद्योग आकर्षित करना है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। क्षेत्र में बढ़ते सैन्य टकराव के बीच दोनों देश एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने कहा कि उसकी एयरोस्पेस फोर्स ने कई बैलिस्टिक मिसाइलों से एक अमेरिकी विमानवाहक पोत और एक विध्वंसक पोत को निशाना बनाया। ईरान ने इन हमलों को दिन में अमेरिका द्वारा ईरानी तेल टैंकरों पर किए गए हमलों की जवाबी कार्रवाई बताया। मध्य प्रदेश सरकार ने सागर जिले में संदिग्ध जहरीली और अवैध शराब के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर आबकारी विभाग के 3 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। एक अन्य अधिकारी को जिले से हटाकर मुख्यालय से संबद्ध कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में वन्य जीवों के शिकार के खिलाफ चल रहे अभियान में स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स ने बाघों के शिकार के आरोपी शेरू पारधी उर्फ शेरू सिंह को शहडोल के ब्योहारी से गिरफ्तार किया है। शेरू पारधी कटनी का रहने वाला है और करीब 1.5 साल से फरार था। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के राज्यों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार कल आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बिहार, झारखंड, कर्नाटक, उड़ीसा, उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। इस बीच उत्तर प्रदेश में कई नदियां अब भी उफान पर हैं और 24 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं।
5: शाहजहांपुर जिले में गंगा और रामगंगा नदियों का जलस्तर खतरे के निशान के करीब है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज चित्रकूट में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण और रामघाट का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने 800 बाढ़ प्रभावित परिवारों को राहत सामग्री वितरित की और बेघर परिवारों को भूमि आवंटन प्रमाण पत्र दिए। इस बीच मौसम विभाग ने राज्य के पूर्वी हिस्से में अगले 4 दिनों तक और पश्चिमी जिलों में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: उधर बिहार के कई हिस्सों में बाढ़ के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। गंगा, गंडक और कोसी समेत कई प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए निचले इलाकों में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। चीन के शेंजेन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने चाइना मास्टर्स बैडमिंटन का खिताब जीत लिया है। पुरुष डबल्स फाइनल में भारतीय जोड़ी ने चीन के हे जी टिंग और रेन जियांग यू को हराया। इस वर्ष ये उनका दूसरा सुपर 750 और कुल मिलाकर चौथा खिताब है। सात्विक चिराग की जोड़ी इस टूर्नामेंट में 2023 और 2025 में उपविजेता रही थी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली के सत्यनिकेतन इलाके में बहुमंजिला इमारत ढहने से 3 लोगों की मौत, जबकि 11 लोग सुरक्षित निकाले गए। अब भी कई लोगों के फंसे होने की आशंका, बचाव अभियान जारी। गृहमंत्री अमित शाह ने वर्ष 2029 तक भारत को नशा मुक्त बनाने के लिए 3 वर्षों की रूपरेखा जारी की। मादक पदार्थों के नेटवर्क को समाप्त करने की ये रणनीति 4 स्तंभों पर आधारित। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने युवाओं से स्वस्थ और अनुशासित जीवन जीने तथा नशीले पदार्थों से दूर रहने का आग्रह किया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने देश के बढ़ते स्टार्टअप इकोसिस्टम को महानगरों से आगे ले जाने का आह्वान किया। और भारत की पुरुष डबल्स जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके लिए। सभी सुनने वालों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं महेंद्र कपूर और साथियों के गाए फिल्म पेंटर बाबू के इस गाने के साथ। इसे लिखा है मनोज कुमार ने, संगीत उत्तम सिंह और जगदीश खन्ना का है।

0: टेलीविजन के जाने माने नाम, जिनके लिए अभिनय एक काम नहीं समर्पण है।
1: जब मैं तैयारी करना शुरू करता हूँ, वहीं से मेरे अंदर एक नया इंसान जन्म लेता है। वो एक एक्टर विनीत रैना है। जैसे ही वो मेकअप अपने ऊपर चढ़ाता है तो वो किरदार बन जाता है जो आज पूरा दिन उसको प्ले करना है। उसका विनीत रैना से कोई लेना देना नहीं है।
0: कभी चॉकलेटी हीरो, कभी खूंखार विलेन, तो कभी परम दिव्य साईं।
1: साईं बाबा तक पहुंचना मेरे ख्याल से किसी के बस में नहीं है।
0: विविध भारती पर आ रहे हैं अपने अभिनय और जीवन की कहानी लेकर जाने माने अभिनेता विनीत रैना। जरूर सुनिए सेल्यूलॉइड के सितारे मंगलवार 8 सितंबर शाम 4 बजे और 9 सितंबर सुबह 10 बजे देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: आइए सुनते हैं आशा भोसले और कुमार सानू की आवाजों में दिल का क्या कसूर फिल्म का गाना। गीत समीर का है, संगीत नदीम श्रवण का।

0: संगीतकार उत्तम सिंह एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गडले
0: जो संगीत की साधना में बीता एक विराट जीवन की कहानी
1: दिल तो पागल है दिल दीवाना है।
2: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी हुई थी।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ
3: चिट्ठी ना कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में वंश फिल्म का गाना। इसे लिखा है समीर ने, संगीत से सवारा आनंद मिलिंद ने।

0: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
1: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
0: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना सुबह और शाम 6:45 पर सिर्फ विविध भारती पर।
2: कुमार सानू और अलका याग्निक को सुनिए। फिल्म का नाम है हम सब चोर हैं। गीत है नवाब आरजू का, संगीत बप्पी लहरी का।

गाने के साथ ही प्रीति शर्मा को कार्यक्रम आपके लिए समाप्त करने की दीजिए अनुमति और आप सुनते रहिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। आज के फनकार, ये प्रोग्राम आप सुनेंगे बस कुछ ही पलों में।
1: एवरी ग्रेट जर्नी बिगिंस विद पीपल कमिंग टुगेदर टू लिसन, टू लर्न, टू इमेजिन व्हाट्स पॉसिबल। दिस इज द ब्रिक्स 2026, अ मोमेंट वेयर लीडर्स, इनोवेटर्स, बिजनेसेस एंड कम्युनिटीज फ्रॉम द ब्रिक्स नेशंस कम टुगेदर टू स्ट्रेंथन पार्टनरशिप्स। India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
2: मैंने इसे बहुत बहुत प्यार किया है। जब पहली बार मुझे मालूम हुआ कि पिक्चर फेल हो गई, तो मुझे महसूस हुआ मेरे कोई बहुत अजीज, बहुत प्यारी सहेली सीढ़ियों से गिरकर जख्मी हो गई। और जब मुझे इसी फिल्म पर अवार्ड मिला, तो मेरी समझ में नहीं आया कि मैं इसे कहाँ संभालूं, किसे दिखाऊं।
3: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती।

6 सितंबर 1949 को मुंबई में जन्मे राकेश रोशन, संगीतकार रोशनलाल नागरत के पुत्र और संगीतकार राजेश रोशन के भाई हैं और ऋतिक रोशन के पिता हैं। और अब तो राकेश रोशन का नाम फिल्म इंडस्ट्री के बड़े निर्माता निर्देशकों में शुमार होता है। लेकिन पिता संगीतकार रोशन के अचानक देहांत के बाद राकेश रोशन के लिए अपने करियर को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया। ऐसे में उनकी मदद के लिए आगे आए निर्माता निर्देशक मोहन कुमार। इन्होंने कई प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स को राकेश रोशन का नाम सजेस्ट किया एक्टिंग के लिए और आखिर 1970 में फिल्म घर घर की कहानी से राकेश रोशन की एक्टिंग की कहानी शुरू हुई।

गाना जो अभी आपने सुना, अभिनेता जलाल आगा पर फिल्माया गया था। इस फिल्म घर घर की कहानी में राकेश रोशन सपोर्टिंग रोल में थे। बतौर अभिनेता उन्होंने अधिकतर सपोर्टिंग रोल्स ही किए। सोलो हीरो के रूप में उनकी कम ही फिल्में आईं, लेकिन जो भी आईं वो भी यादगार रहीं और उनका संगीत तो सुपर डुपर हिट रहा।

0: इन दोनों ही फिल्मों में हालांकि मुख्य भूमिकाओं में देवता में संजीव कुमार थे और जख्मी में सुनील दत्त, लेकिन राकेश रोशन ने अपनी उपस्थिति बहुत ही पुरजोर तरीके से जाहिर की। उसके बाद फिल्म खट्टा मीठा में गोविंदिया गोस्वामी के साथ इनका ये गीत आज भी लोगों का दिल जीत लेता है।
1: ये सब तो ठीक है, लेकिन मैं बात पूछता हूँ,

ऐसी ही और भी फिल्में हैं। इनमें एक फिल्म याद आती है, फिल्म खूबसूरत। हालांकि फिल्म में टाइटल रोल रेखा का था, लेकिन राकेश रोशन और रेखा की जोड़ी ने बहुत ही कमाल अभिनय किया।

ऐसी और भी फिल्में हैं जिनमें राकेश रोशन अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहे, लेकिन इससे राकेश रोशन खुश नहीं थे। इसीलिए 1980 में राकेश रोशन ने स्थापित की अपनी फिल्म निर्माण संस्था फिल्म क्राफ्ट और फिल्म बनाई आप।

ये फिल्म कामचोर सुपर डुपर हिट रही। इस फिल्म को राकेश रोशन ने प्रोड्यूस किया था और यहीं से शुरू हुआ राकेश रोशन की फिल्मों में क शब्द का कमाल। यहां से आगे राकेश रोशन ने जो भी फिल्में बनाई उनका शुरुआती अक्षर क रहा और अब तो राकेश रोशन एक ब्रांड बन गए। राकेश रोशन ने 1987 में निर्देशन की कमान भी संभाल ली। फिल्म थी

खुदगर्ज की सफलता के बाद राकेश रोशन सफलता की गारंटी माने जाने लगे। खून भरी मांग 1988 में रेखा के साथ, फिर किशन कन्हैया 90 में, किंग अंकल, करण अर्जुन, कोयला और इसके बाद कुछ वर्षों तक बतौर अभिनेता कुछ फिल्मों में कभी कभार नजर आए। लेकिन सन 2000 में बिग बैंग के साथ आए, अपने बेटे को लेकर ऋतिक रोशन के साथ कहा, कहो ना प्यार है।

इस फिल्म कहो ना प्यार है की सफलता को तो सभी जानते हैं और ये भी जानते होंगे कि बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में इस फिल्म का नाम है क्योंकि इसे सबसे ज्यादा अवार्ड्स मिले। इसके बाद राकेश रोशन ने जितनी भी फिल्में बनाई सभी ने सफलता का एक नया मकाम हासिल किया। यहाँ ये भी बता दें आपको कि खूबसूरत फिल्म में रेखा के साथ अभिनय करने वाले राकेश रोशन ने अपनी दोस्ती को निभाया और रेखा को कोई मिल गया और क्रिश जैसी फिल्मों में बहुत ही दमदार भूमिका दी। तो अब वो फिल्में जिन्होंने सफलता का इतिहास रचा, कोई मिल गया।

0: फिल्मकार राकेश रोशन पर केंद्रित इस कार्यक्रम के लिए शोध आलेख और स्वर अमरकांत का और प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन।
1: आज के फनकार।

0: वज्रदंती। वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
1: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान। पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: छाया गीत में आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं ऐसे फिल्मी गाने जिनके 2 संस्करण हैं और सुनने के कौतूहल, आश्चर्य और आनंद के लिए हमने इन दोनों संस्करणों को किसी अप्रत्याशित मोड़ पर जोड़ दिया है। सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। आंखों की कोरों से बरसता है दुख, छा जाते हैं उदासी के बादल और घनघोर घटाएं भिगो देती हैं सब कुछ। कभी कभी आसमान की मुंडेर से बजता है उदासी का वायलिन।

हम अभी हाजिर हुए। जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार।

क्या किसी स्केल से नापा जा सकता है प्यार? कैसे कहें कि सही सही बयां हो जाए प्यार? अल्फाज नाप में जैसे कुछ कम पड़ जाते हैं, कई बार अल्फाज की बजाय खामोशी से काम लेना मुनासिब होता है।

जैसे आसमान पर चमके थोड़ी देर सूरज और फिर गुम हो जाए बादलों की ऊट में, जैसे पत्ते पर ठहरे पानी की बूंद और हवा का झोंका आकर उसे ढुलका दे, जैसे होंठों पर तैरे एक सूक्ष्म मुस्कान और फिर छा जाए गहरी उदासी, इतनी थोड़ी सी खुशी, इतना थोड़ा सा साथ।

आज के छाया गीत में थे ऐसे गाने जिनके दो संस्करण हैं और सुनने के आश्चर्य, कौतूहल और आनंद के लिए हमने किसी अप्रत्याशित मोड़ पर इन दोनों संस्करणों को आपस में जोड़ दिया था। फिल्मों के नाम आपको बता दें।

0: फिल्म महबूबा, आनंद बख्शी, राहुल देव बर्मन। फिल्म शर्मीली, नीरज सचिन देव बर्मन।
1: हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं।
0: फिल्म कुदरत, मजरूह सुल्तानपुरी, राहुल देव बर्मन। आज का छाया गीत इतना ही, इजाजत दीजिए यूनुस खान को, नमस्कार।
2: नहीं कॉस्मेटिक

0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सेल

0: संगीतकार उत्तम सिंह, एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गडले,
0: जो संगीत की साधना में बीता, एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती थी।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी ना कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: संगीत सरिता कार्यक्रम में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना। हाँ।

0: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
1: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
0: अवश्य सुनिए।

0: एक सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला
1: स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना
0: सुबह और शाम 6:45 पर
1: सिर्फ विविध